महेंद्र कपूर के गाए इस भक्ति गीत के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस।

बार माता कौशल्या ने शिशु को स्नान करा पालने में सुला दिया। जब स्वयं स्नान आदि से निवृत्त होकर रसोई में पहुंची तो वहां राम को भोजन करते पाया। चकित हुई, अभी थोड़ी देर पहले ही तो उन्हें पालने में पढ़ाया था। दौड़कर पालने के पास पहुंची तो पुत्र को वहां सोया देखा। उसी क्षण उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखाया। अगणित सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, अनेक पर्वत, नदियां, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान आदि अद्भुत दृश्य देखकर, जिनके बारे में कभी सुना भी न था, माता को आश्चर्यचकित तथा डरी हुई देखकर श्री राम ने पुनः शिशु रूप धारण कर लिया। माता ने परम ब्रह्म का वो रूप देख उनकी स्तुति करने में भी अपने को असमर्थ पाया।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4,398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साधारण सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से उभरकर किसी राजनीतिक वंश के समर्थन के बिना देश के सर्वोच्च निर्वाचित पद पर पहुंचना भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों और सामाजिक गतिशीलता का प्रेरणादायक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इस अवधि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का तेजी से विस्तार, बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का विकास, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में उल्लेखनीय सुधार तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। विनिमय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे सभी बंदरगाहों के संचालन को एक एकीकृत इकोसिस्टम में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह पहल आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और दुनिया भर के गंतव्यों के लिए निर्बाध रूप से आगे की यात्रा कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि भारत की हब एंड स्पोक विमानन योजना की शुरुआत वाराणसी से होती है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात और विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉ जयशंकर कुलतारंता वार्ता में भाग लेंगे। वे फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने निर्धारित 50 ओवरों में 6 विकेट पर 277 रन बनाए, जबकि जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 7 गेंद शेष रहते 269 रन पर सिमट गई। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल 21 जून को खेला जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब आइए आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के। से थोड़ी देर बाद यानी 7:10 पर श्रोताओं आप सुनेंगे सुगम संगीत में गजलें। लोकगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा 7:20 पर और 7:35 पर आप सुन सकते हैं बांग्ला गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुरांजलि। स्वास्थ्य चर्चा, इस कार्यक्रम का प्रसारण समय होता है सुबह के 7:50 पर। सुबह 8 बजे समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया जाएगा और यहीं से आप सुनेंगे 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज। प्रादेशिक समाचार का प्रसारण समय होता है सुबह के 8:30 पर, जो कि रिले किया जाता है आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 8:45 पर आप आनंद लेते हैं फिल्म संगीत का। सुबह 9 बजे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया जाएगा। 9:05 पर कार्यक्रम सुरंजना में आज आप सुनेंगे एक ही फिल्म से गाने। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति होगी। सुबह 10 बजे हिंदी में समाचार, 10:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 10:10 पर विश्व दर्पण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। 10:20 पर आप आनंद ले सकते हैं फिल्म संगीत का। सुबह 11 बजे और दोपहर 12 बजे श्रोता सुनते हैं हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। 11:05 का हमारा समय होता है कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर का और दोपहर 12:05 पर आप सुनते हैं भावगीत। 12:30 का हमारा समय होता है शास्त्रीय संगीत का। दोपहर के 1 बजे हिंदी में समाचार, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 1:10 पर प्रादेशिक समाचार का प्रसारण होगा। 1:20 और दोपहर 2:30 पर श्रोता सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। दोपहर के 2 बजे मिड डे न्यूज, 2:15 पर दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया जाएगा और 2:55 पर आप सुनते हैं प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से। अपराह्न के 3 बजे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण होगा और 3:30 पर आप सुन सकते हैं सुगम संगीत में गजलें। 3:45 पर लोकगीतों का कार्यक्रम लेकर हम आपके साथ होंगे। संध्या 4 बजे एवं 5 बजे समाचार मुख्यांश आकाशवाणी रांची से प्रसारित किया जाएगा। 4:02 पर आज के दिन हमारे श्रोता सुनते हैं नाटक किया रूपक। 4:30 पर फिल्म संगीत का प्रसारण होगा। संध्या 5:02 पर युवा साथियों को संबोधित कार्यक्रम युवाणी प्रसारित किया जाएगा। 5:30 पर आप सुनते हैं कल कारखाने। संध्या 6 बजे हिंदी में समाचार, 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 6:20 पर संस्कृत में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किए जाएंगे। 6:10 पर झारखंड के लोकगीत लेकर हम आपके साथ होंगे। 6:30 पर घर गृहस्थी कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी। संध्या 7 बजे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से प्रसारित किया जाएगा और यहीं से आप सुनेंगे 7:10 पर जिले में आजकल। 7:15 का समय होता है बांग्ला कार्यक्रम का। 7:45 पर आज के दिन हमारे श्रोता सुनते हैं कार्यक्रम जिज्ञासा। रात्रि 8 बजे फिल्म संगीत का प्रसारण होगा। 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी दिल्ली से और रात्रि 9 बजे न्यूज़ एट नाइट और 9:15 पर स्पॉटलाइट आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया जाएगा। रात्रि 10 बजे उड़िया कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी। 10:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किए जाएंगे और 11:10 पर हमारी आज की सभा सम्पन्न होगी।

श्रोताओं, अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब आइए सुनवाते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत के सफर में स्वागत है आपका। इस कार्यक्रम में आज सुनवा रहे हैं आपको फनकार गुलाम अली की गाई गजल।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गुलाम अली की गाई गजलें। इसी के साथ हमारा आज का सुगम संगीत का ये सफ़र अब यहीं पूरा होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.4 MHz। और अब लीजिए सुनवाते हैं लोकगीतों का कार्यक्रम। लोकगीतों के आज के इस कार्यक्रम में आप आनंद लेंगे क्षितिज मिश्रा और साथियों के गाए मैथिली गीत का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे क्षितिज मिश्रा और साथियों का गाया मैथिली गीत। इसी के साथ हमारा आज का लोकगीतों का ये सफ़र अब यहीं पूरा होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 MHz पर। अब लीजिए सुनवाते हैं कार्यक्रम सुरांजलि। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे आधुनिक गान चैताली मजुमदार, अग्निभा बंदोपाध्याय, नीलांद्री सामंत और इंद्रनील सेन से।

इंद्रनील सेन के गाए इस आधुनिक गीत के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का कार्यक्रम सुरांजलि अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 MHz पर। अब आइए सुनवाते हैं स्वास्थ्य चर्चा। स्वास्थ्य चर्चा के आज के इस अंक में आप सुनेंगे नेत्रदान जरूरी जानकारी। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर विवेक केड़िया, जिनसे बातें कर रहे हैं राजेश कुमार।

0: श्रोताओं, स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत आज हम बातें करेंगे नेत्रदान के बारे में। आज हमारे साथ हैं नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक केडिया। डॉक्टर साहब, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप ये जानकारी दीजिए कि नेत्रदान वास्तव में होता क्या है।
1: नेत्रदान एक क्रिया है जिसमें कि हम एक व्यक्ति के जो आंखों की सबसे सामने की परत होती है, जैसे हम इंग्लिश में कॉर्निया कहते हैं
0: जी,
1: और हिंदी में सिर्फ पुतली के नाम से उसको लोग जानते हैं, तो उसको बदला जाता है। नेत्रदान जनरली एक मृत व्यक्ति के ही आंखों से किया जाता है। इसके लिए लोग या तो खुद अपनी आंखें जीवित रहते समय प्लेज कर सकते हैं, वो एक फॉर्म भर सकते हैं कि भाई जब हमारी मृत्यु हो तो हमारे आंखों को यूज किया जाए दान के लिए, या फिर अगर किसी ने ऐसा ना किया हो तो उनके परिवारजन भी अपने नियर एंड डियर अगर किसी की मृत्यु होती है तो उनके आंखों का दान कर सकते हैं।
0: क्या प्रक्रिया होती है, किस तरह से नेत्रदान किया जाता है?
1: इसके लिए कुछ अस्पताल सर्टिफाइड होते हैं जिनके पास की लाइसेंस होता है नेत्रदान करने और उसके ऑपरेशन करने के लिए। अच्छा। जैसे जमशेदपुर में जमशेदपुर आई हॉस्पिटल और टाटा मेन हॉस्पिटल को इसका सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। वो एक एनजीओ है, उनके साथ ये नेत्रदान का पूरा प्रोसेस करते हैं। एनजीओ का नाम है रोशनी। और ऐसा कोई अगर केस है जिसमें कि लोग अपना नेत्र को दान करना चाहते हैं तो वो रोशनी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनके डॉक्टर्स आकर जिस जगह पर भी मृत व्यक्ति है उस जगह से उनकी आंखों को या उनके पुतली को बहुत ही साफ सुथरे तरीके से निकालकर उसे एक अच्छे कंटेनर में रखकर जो आई बैंक है हॉस्पिटल का वहां पर ले जाया जाता है।
0: मौत के बाद कितने समय तक हम ये प्रक्रिया कर सकते हैं?
1: मृत्यु से 6 घंटे के भीतर ही आंखों का निकाला जाना बहुत जरूरी है। उससे ज्यादा देर करने से पुतली के नष्ट होने की आशंका रहती है।
0: कोई खास व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है या फिर किसी भी तरह के व्यक्ति नेत्रदान अपना कर सकते हैं?
1: अमूमन नेत्रदान हर कोई कर सकता है, लेकिन बहुत ही छोटे से एक सेगमेंट है जहाँ बोलते हैं कि ये लोग ना करें तो अच्छा है।
0: अच्छा।
1: जैसे कि जो व्यक्ति एचआईवी से ग्रसित हैं या जिनको रेबीज की बीमारी हो चुकी है या फिर और कोई ऐसा जिनमें संक्रमण है जो कि शारीरिक फ्लूइड्स या टिश्यू के थ्रू फैल सकता है, तो उन लोगों को नेत्रदान करने के लिए मना किया जाता है। इसके अलावा हर कोई नेत्रदान कर सकता है जिनकी आंख की ऑपरेशन भी हो चुकी है, अगर मोतियाबंद का भी ऑपरेशन हो चुका है वैसे लोग भी नेत्रदान कर सकते हैं। आज के डेट में एक्चुअली देखिए हमारे देश में अंधापन बहुत ज्यादा फैला हुआ है और जितने भी लोग अंधे हैं उनमें से ऑलमोस्ट 10% लोगों को अंधापन यही पुतली के किसी ना किसी बीमारी के कारण है। तो ये जो नेत्रदान है हम इससे इन 10% जो अंधे लोग हैं उनको हम मदद पहुंचा सकते हैं। टेक्नोलॉजी और मेडिकल साइंस बहुत ज्यादा एडवांस कर चुका है। आज एक व्यक्ति से हमें 2 आंखें मिलती हैं, हम एक आंख से कम 3 व्यक्तियों का मदद कर सकते हैं। तो आप ये देखिए, तो अगर एक व्यक्ति अपनी मृत्यु के बाद 6 लोगों को रोशनी प्रदान कर सकता है, और जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहा है हम लोग ये देख रहे हैं कि इसके नतीजे भी बहुत अच्छे हो रहे हैं।
0: अंत में एक संदेश हमारे श्रोताओं के लिए ताकि वो नेत्रदान के प्रति जागरूक हो सकें।
1: नेत्रदान जरूर करिए। ये चीज मैं मानता हूँ कि बड़ों को पहले समझना बहुत जरूरी है कि आप एक व्यक्ति जब तक जीवित है हर कोई चाहता है वो अपने आसपास के लोगों की मदद करे, बट अब हमारा मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ चुका है कि मृत्यु के बाद भी कई लोगों की सेवा कर सकते हैं। तो नेत्रदान से घबराने की कोई बात नहीं है। चाहूंगा कि लोग सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि अपने बच्चों को भी इसका इम्पोर्टेंस समझाएं ताकि वो भी आसपास में अब सब लोगों के बीच में की जो अच्छाइयां है उपयोगिता है उसको बता सके।
0: तो श्रोताओं, आपने सुना कि नेत्रदान एक ऐसा दान है जो वैसे व्यक्ति की आंखों में रोशनी ला सकता है जो देख नहीं सकते। निश्चित तौर पर आप नेत्रदान के प्रति जो जागरूकता है वो फैलाएंगे और लोगों को नेत्रदान के प्रति प्रेरित करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता नेत्रदान, एक जरूरी जानकारी। इस विषय पर जानकारी दे रहे थे विवेक केड़िया, जिनसे बातें कर रहे थे राजेश कुमार। इसी के साथ हमारा आज का स्वास्थ्य चर्चा का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है।

0: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश, हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।

0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
4: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे तो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा, मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
3: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
4: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।

0: श्रोताओं, स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत आज हम बातें करेंगे नेत्रदान के बारे में। आज हमारे साथ हैं नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक केडिया। डॉक्टर साहब, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: डॉक्टर साहब।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज़।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने और प्रधानमंत्री के सबसे लंबे कार्यकाल की उपलब्धि के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की आज नई दिल्ली में बैठक। केंद्र ने 1.25 लाख करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। विकसित भारत जी राम जी का नया संस्करण 1 जुलाई से होगा लागू। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर जवाबी हमले किए, और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ने दांबुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में अंतरता रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि केवल कार्यकाल की अवधि नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय विकास यात्रा में एक परिवर्तनकारी युग का प्रतीक है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अखबार में एक लेख में गुजरात के वडनगर से प्रधानमंत्री कार्यालय तक के उनके सफर और जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 4,399 दिन पूरे करने का उल्लेख किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित एक लेख में कहा है कि 2014 के बाद से शासन, राजनीति और सार्वजनिक चर्चा में भारतीयता की ओर निर्णायक बदलाव आया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का जश्न मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में एनडीए के शासन वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर वडनगर में उनकी 12 वर्षों के सफल शासन के उपलक्ष्य में आज कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा आज शाम 7 बजे ऐतिहासिक शर्मिष्ठा झील पर एक भव्य महाआरती और 10,000 दीपक जलाने की विशेष व्यवस्था

0: की गई है। इसी के साथ प्रदेश भाजपा द्वारा प्राचीन हाटकेश्वर मंदिर में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत शाम 4:30 बजे स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छता कर्मियों के सम्मान समारोह के साथ होगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा आज शाम मंदिर में एक भव्य महाआरती का नेतृत्व करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक, पार्टी कार्यकर्ता और श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के मंदिरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी समाचार केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों पर चर्चा कर रहे हैं।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। भारत के अगली पीढ़ी के सुधार अब एक तेज गति वाले सुधार अभियान बन चुके हैं, जिसके केंद्र में युवा शक्ति है। विकसित भारत के निर्माण और विभिन्न क्षेत्रों में देश के भविष्य को आकार देने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
4: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी, अब थोड़ा रिसर्च करो। जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे PMEGP लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
3: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 1,200,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं, जिन्होंने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत आधार प्रदान किया है। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 125,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ओमान तट के पास अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने गिराया था, हालांकि दोनों पायलटों को बचा लिया गया। उधर ईरान ने भी क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं।
5: ईरान के दक्षिणी तट पर सिरिक, बंदर अब्बास, केशम, जास और कोहे मुबारक समेत कई स्थानों पर विस्फोटों की खबरें मिली हैं। सरकारी मीडिया ने बताया कि सिरिक के बामानी जिले में 2 जल भंडार टैंक क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे स्थानीय पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने चेतावनी दी कि तेहरान किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बिना नहीं रहेगा। और
1: क्रिकेट में इंडिया ए ने कल त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल खेला जाएगा 21 जून को। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
6: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों ने सरकार की 12 साल की उपलब्धियों और पीओके में बढ़ती पाकिस्तान की बर्बरता की खबरों को सुर्खियों से प्रकाशित किया है। लोक सत्य ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र प्रकाशित करते हुए श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री होने के रिकॉर्ड को रेखांकित किया है। पत्र ने उनके ऐतिहासिक 14 फैसलों को भी क्रमवार सूचीबद्ध किया है। अमर उजाला ने पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद की तस्वीर प्रकाशित करते हुए अपनी खबर को शीर्षक दिया है, मानवाधिकार उल्लंघन पर पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराए दुनिया। पत्र ने ब्रिटेन के 50 सांसदों के उस पत्र का भी उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में लोग सेना की बर्बरता से डरे हुए हैं।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। केंद्र ने 125,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ए ने त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम साइरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिकम्स लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वर्ल्ड लीडर्स हेल प्राइम मिनिस्टर मोदी'स ट्रांसफॉर्मेटिव गवर्नेंस एंड एडवोकेसी फॉर ग्लोबल साउथ। NDA to meet in New Delhi today to celebrate PM Modi's achievements and completion of 12 years of government. Centre unveils 1.25 lakh crore rupees rural development push. New framework under Viksit Bharat Jiramji to roll out from 1st July. US military launches strikes against Iran in response to downing of Army Apache helicopter off Oman coast. And in cricket, Ruturaj Gaikwad's century helps India A beat Sri Lanka A by 8 runs in tri-series opener in Dambulla. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has become the longest continuously serving democratically elected Prime Minister of India today. Mr. Modi took the oath of office on 26th of May in 2014. He surpassed the record of Pandit Jawaharlal Nehru, who first took oath as an elected Prime Minister on 13th of May in 1952 and served until 27th of May 1964. Pandit Nehru's tenure as an elected Prime Minister amounted to 4,398 days. Now, Prime Minister Modi's continuous tenure is 4,399 days, making him the longest-serving elected Prime Minister in India's

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने जमशेदपुर में केंद्रडीह खदान का परिचालन फिर से किया शुरू। मुसाबनी कंसंट्रेटर संयंत्र की क्षमता वृद्धि परियोजना का भी किया शुभारंभ। राज्य के सरकारी अस्पतालों से हटाए जाएंगे 8 वर्ष पुराने और 1.5 लाख किलोमीटर चल चुके एम्बुलेंस। स्वास्थ्य विभाग ने सभी सिविल सर्जनों से 1 सप्ताह में मांगी रिपोर्ट। झारखंड राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी के नामांकन पत्र पर कांग्रेस विधायक ने दर्ज कराई आपत्ति। आज आएगा निर्वाचन अधिकारी का अंतिम फैसला। झारखंड में दक्षिण पश्चिम मॉनसून की रफ्तार तेज, अगले 5 दिनों में राज्य में एंट्री। कल रांची समेत 14 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और रांची के जेएससीएस स्टेडियम में आज से शुरू हो रहा है झारखंड T20 प्रीमियर लीग का रोमांच। 14 दिनों में खेले जाएंगे कुल 27 मुकाबले। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने लगातार 4,399 दिनों का निरंतर कार्यकाल पूरा कर पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। पंडित नेहरू का

0: निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4388 दिनों का था। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर करता रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार तीन बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: जमशेदपुर के सिंभम ताम्रपट्टी को पुनर्जीवित करने के लिए केंद्रीय माइंस का परिचालन फिर से शुरू हो गया है। कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने मुसाबनी कंसंट्रेटर संयंत्र की क्षमता वृद्धि परियोजना का भी शुभारंभ किया। इस ऐतिहासिक पहल से क्षेत्र में रोजगार बढ़ेंगे और देश का तांबा उत्पादन दो गुने से अधिक होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाने और दिसंबर 2028 तक सभी ग्रामीण घरों में नल से शुद्ध जल पहुंचाने का लक्ष्य दिया है। बैठक के बाद पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने मीडिया को बताया कि राज्य सरकार हर घर तक शुद्ध जल पहुंचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
2: विषयवार समीक्षा किए हैं, SBM का अलग किए, JJM का अलग किए हैं, DMFT फंड का अलग किए, राज्य योजना का अलग किए, कई दिशा निर्देश भी, कई सुझाव भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया, कई विषयों पर तत्परता से कार्य करने का भी निर्देश प्राप्त हुआ है। उस पर हम लोग पालन करेंगे। हर हाल में राज्य के अंतिम व्यक्ति को शुद्ध पेयजल कैसे मिले, इसके लिए सरकार और विभाग निरंतर प्रयास कर रही है।
0: झारखंड के सरकारी अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाएं जल्द सुदृढ़ होंगी। राज्य सरकार ने 8 वर्ष से अधिक पुराने या 1.5 लाख किलोमीटर चल चुके एम्बुलेंसों को हटाने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी सिविल सर्जनों को 1 सप्ताह में ऐसे वाहनों की समीक्षा रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी के नामांकन पर कांग्रेस विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई है। आपत्ति के बाद निर्वाची पदाधिकारी ने अपना फैसला आज सुबह 11 बजे तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। इधर परिमल नाथवानी की ओर से उनके अधिवक्ता सुधीर श्रीवास्तव ने रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष सभी आपत्तियों का जवाब दाखिल कर दिया है।
3: ये जो भी उनके क्वेरीज थे, ये क्वेरीज नॉमिनल क्वेरीज रहते हैं, जो रिटर्निंग अफसर को पावर भी है और किसी के शिकायत पर भी रिटर्निंग अफसर 36 सेक्शन के तहत वो कर सकते हैं। हम लोगों ने परिमल लखमानी जी की तरफ से सारे सूचीबद्ध तरीके से हमने एक एक पॉइंट को रिटर्निंग अफसर को जमा कर दिया है। अब कोई त्रुटि नहीं है, जो शिकायत किया गया उसको हम लोगों ने त्रुटि को दूर कर दिया।
0: नई दिल्ली के वसंत विहार स्थित झारखंड भवन का औचक निरीक्षण रेजिडेंट कमिश्नर अरवा राजकमल ने किया। उन्होंने स्वच्छता, सुरक्षा और अतिथि सुविधाओं की समीक्षा करते हुए बंद पड़े CCTV कैमरों को तत्काल चालू करने के निर्देश दिए। साथ ही भवन परिसर में लंबे समय से खड़े 6 अनुपयोगी वाहनों की नीलामी प्रक्रिया शुरू करने का भी आदेश दिया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण की गारंटी अधिनियम जी रामजी को सुचारू रूप से लागू करने को लेकर राज्यों और

0: केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
1: विकसित भारत जी राम जी ये अधिनियम 1 जुलाई से लागू होने वाला है। कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन का प्रस्ताव किया। 95,692 करोड़ का अंतरिम आवंटन प्रस्तावित किया गया है।
0: राज्य के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य तेजी से जारी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि राज्य के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों ने अब तक 59,340 BLA2 नियुक्त किए हैं। इसमें भाजपा ने 21,645, कांग्रेस ने 17,479 और झामुमो ने 14,482 नियुक्तियां की हैं। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में पहाड़ी मंदिर में श्रावणी मेले की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक हुई। 30 जुलाई से 28 अगस्त तक चलने वाले इस मेले के लिए उन्होंने श्रद्धालुओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और स्वच्छता दुरुस्त करने के निर्देश दिए। बिजली विभाग के कर्मियों की 24 घंटे तैनाती की जाएगी। दक्षिण पश्चिम मॉनसून झारखंड की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 5 दिनों के भीतर मॉनसून राज्य में प्रवेश कर सकता है। इस बीच कल राजधानी रांची, दुमका, बोकारो समेत राज्य के 14 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड T20 प्रीमियर लीग का आज से रांची के JSES स्टेडियम में आगाज होने जा रहा है। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में 14 दिनों के भीतर कुल 27 रोमांचक मुकाबले होंगे। खिताब के लिए कुल 6 फ्रेंचाइजी टीमें मैदान में आमने सामने होंगी, जिसे लेकर खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में भारी उत्साह है। लीग की पूर्व संध्या पर रांची में आयोजित प्रेस वार्ता में कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गयी।
2: यंग टैलेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले और यंग टैलेंट्स को हम इंस्पायर भी कर सकें, इसके लिए 600 बच्चे स्कूल से आ रहे हैं मैच को लाइव देखने के लिए स्टेडियम में। तो ये एक मुहिम हम लोगों ने चालू किया है। देखते हैं, फर्स्ट मैच के लिए तो अभी हुआ है, आगे भी और कोशिश करेंगे कि और मैचेस में भी छोटे स्कूल के बच्चे आएँ जो अपने प्लेयर्स को, अपने लोकल हीरोज को देखें खेलते हुए और इंस्पायर हों कि एक दिन वो भी इस टूर्नामेंट का हिस्सा बन सके।
0: और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने झारखंड राज्यसभा चुनाव के निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी के नामांकन पत्र होल्ड पर रखे जाने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, राज्यसभा चुनाव पर्चे में त्रुटियों की शिकायत, नाथवानी का नामांकन होल्ड पर। हिंदुस्तान के शब्द हैं, पीएम मोदी ने तोड़ा नेहरू का रिकॉर्ड। प्रभात खबर ने झारखंड हाईकोर्ट के हवाले से लिखा है, सरकार दुष्कर्म की घटनाओं से जन्मे बच्चों को दिलाए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा। दैनिक जागरण लिखता है, आज से 444 बालू घाटों से उठाव पर रोक, निर्माण कार्यों पर संकट। और अब अंत में मुख्य समाचार। कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने जमशेदपुर में केंदाडी खदान का परिचालन फिर से किया शुरू। मुसाबनी कंसंट्रेटर संयंत्र की क्षमता वृद्धि परियोजना का भी किया शुभारंभ। राज्य के सरकारी अस्पतालों से हटाए जाएंगे 8 वर्ष पुराने और 1.5 लाख किलोमीटर चल चुके एम्बुलेंस। स्वास्थ्य विभाग ने सभी सिविल सर्जनों से 1 सप्ताह में मांगी रिपोर्ट। झारखंड राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी के नामांकन पत्र पर कांग्रेस विधायक ने दर्ज कराई आपत्ति। आज आएगा निर्वाचन अधिकारी का अंतिम फैसला। झारखंड में दक्षिण पश्चिम मानसून की रफ्तार तेज, अगले 5 दिनों में राज्य में एंट्री। कल रांची समेत 14 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और रांची के JSES स्टेडियम में आज से शुरू हो रहा है झारखंड T20 प्रीमियर लीग का रोमांच। 14 दिनों में खेले जाएंगे कुल 27 मुकाबले। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित फिल्म संगीत का कार्य, माफ करेंगे, प्रादेशिक समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में श्रोताओं, हम हाजिर होते हैं फिल्म संगीत लेकर।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर, और अब हम हाजिर हैं फिल्म संगीत लेकर। श्रोताओं, सुबह सुबह जब मन बिल्कुल शांत होता है, तब रूह को छू लेने वाली कोई धुन मिल जाए तो पूरा दिन जादुई हो जाता है।

दोस्तों, सुबह का यह वक्त भी कितना अजीब होता है। परिंदे अपने घोंसले छोड़कर दाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। लोग अपने घरों से दफ्तरों की ओर रवाना हो जाते हैं, लेकिन इस भाग दौड़ के बीच हमारा दिल किसी एक खास शख्स के पास ही ठहरा रह जाता है। कहते हैं कि मोहब्बत में इंसान चाहे कहीं भी चला जाए, उसकी रूह वहीं रहती है जहाँ उसका हम सफ़र होता है।

0: आज के फिल्म संगीत के कार्यक्रम में श्रोताओं, आपने जिन फिल्मों के गाने सुने वो फिल्में थीं बॉम्बे और 1920 एविल रिटर्न्स। आवाज़ें KS चित्रा और महालक्ष्मी अय्यर की थी। गीत रचा था महबूब और शकील आजमी ने। संगीत निर्देशन था AR रहमान और चिरंतन भट्ट का। इस गाने के साथ ही हमारा आज का फिल्म संगीत का ये सफ़र अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 MHz पर। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर करता रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार तीन बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित एक लेख में कहा है कि 2014 के बाद से शासन, राजनीति और सार्वजनिक चर्चा में भारत

भारतीयता की ओर निर्णायक बदलाव आया है। उन्होंने भारतीय भाषाओं, संस्कृति और पहचान पर गर्व को प्रोत्साहित करने के लिए भी प्रधानमंत्री की सराहना की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने स्वतंत्र भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री के परिवर्तनकारी शासन, विकासशील देशों के लिए उनके प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से गतिशील भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की है। केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 95,692 करोड़ रुपए का अंतरिम आवंटन जारी किया गया है। ओमान तट के पास अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीकी सेना ने ईरान पर हमले किए हैं। अमरीकी अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने गिराया और दोनों पायलटों को बचा लिया गया था। अमरीकी हमलों के बाद ईरान के शहरों सिरिक, मीना, बंदर अब्बास और केशम द्वीप पर धमाकों की आवाजें सुनाई दी जो होर्मुज जलडमरू मध्य से सटे हुए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान द्वारा अमरीकी हेलीकॉप्टर को गिराए जाने पर अमरीका की प्रतिक्रिया बहुत मजबूत और शक्तिशाली है। पुरुष क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रनों से हराया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में श्रोताओं, हम हाजिर होते हैं फिल्म संगीत लेकर।

0: सासू।
1: हो गया इंतजाम।
2: किसका?
1: गुड्डी की फीस का।
2: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
3: आरबीआई कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
6: नमस्कार जमशेदपुर। नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
7: ज्ञान विज्ञान
8: इतिहास के पन्नों से,
7: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
8: मौसम का मिजाज,
7: अपने शहर की खबरें,
8: बातों मुलाकातों के साथ
6: सुरीला मनोरंजन
7: और भी बहुत कुछ।
6: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में,
8: दिन के 11:05 से।

0: 12 बजे तक
1: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
0: नमस्कार जमशेदपुर।
2: हेलो मन भावन, आप सुनेंगे नए अंदाज में मेरी यानी निमिषा के साथ। प्रत्येक रविवार दिन के 11 बजे आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से 100.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक बुधवार दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच। हमारा टेलीफोन नंबर है 2960445 और कोड है 0657। तो आप भी जुड़ जाइए हेलो मनभावन कार्यक्रम से।

0: डॉक्टर,
1: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। सुनिए,
2: जलवायु और नवाचार, यह यूनेस्को का संदेश है। आज दुनिया की लगभग एक तिहाई बिजली अक्षय ऊर्जा से आती है। नई खोज और बेहतर टेक्नोलॉजी की वजह से पवन और सौर ऊर्जा का तेजी से विकास हुआ है, क्योंकि ये सस्ती पड़ती है। कई इलाकों में हाइड्रो पावर अब भी महत्वपूर्ण है, जबकि जियोथर्मल और बायोमास जैसे स्रोत भी अक्षय ऊर्जा के विकल्प देते हैं। जब दुनिया जीवाश्म ईंधन छोड़ रही है, तो हमें उत्सर्जन कम करने और मजबूत टिकाऊ ऊर्जा प्रणालियां बनाने के लिए अक्षय ऊर्जा में निवेश करना जरूरी है। यहाँ एक रोचक तथ्य है, साफ ऊर्जा स्रोत अब दुनिया की बिजली का लगभग एक तिहाई हिस्सा दे रहे हैं। यह दिखाता है कि नई खोज बदलाव ला सकता है।
3: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: हेलो डॉक्टर,
1: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम
0: हेलो डॉक्टर।
1: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
0: हेलो डॉक्टर,
2: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और आज के कार्यक्रम सुरंजना में श्रोताओं, आप सुनेंगे एक ही फिल्म के नगमे और हम रुख कर रहे हैं साल 1995 की एक ऐसी फिल्म की ओर जिसके गाने आज भी हमारे दिलों में एक खास जगह रखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फिल्म अकेले हम अकेले तुम की। श्रोताओं, मंसूर खान के निर्देशन में बनी इस फिल्म का संगीत दिया था अन्नू मलिक ने और शब्दों में पिरोया था मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने। इस फिल्म का हर एक गाना अपने आप में कहानी कहता है। तो चलिए सुनवाते हैं आपको ये बहुत ही खूबसूरत और काफ़ी लोकप्रिय टाइटल ट्रैक उदित नारायण और आदित्य नारायण की जादुई आवाज़ में।

दोस्तों, इस फिल्म की कहानी सिर्फ प्यार की नहीं बल्कि सपनों, महत्वाकांक्षाओं और रिश्तों के उतार चढ़ाव की भी है। जब दो कलाकार एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उनके बीच का संगीत कैसा होता है, आइए सुनते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में।

दोस्तों, ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जब रिश्तों में गलत फहमियाँ आ जाती हैं तो दूरियाँ भी बढ़ने लगती हैं। आइए सुनाते हैं अगला गाना उसी एहसास को बयां करता हुआ।

श्रोताओं, आज के कार्यक्रम सुरंजना में आपने जो गाने सुने वो उदित नारायण, आदित्य नारायण, कुमार सानू, अलका याग्निक, अनु मलिक, शंकर महादेवन और आमिर खान की आवाज़ों में थे। गीत रचा था मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत निर्देशन था अनु मलिक का। और इस गाने के साथ ही कार्यक्रम से दीजिए इजाज़त, नमस्कार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरंजना।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
3: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
2: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
3: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
4: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे राग बीहड़ भैरव पर आधारित ख्याल गायन पंडित कुमार गंधर्व से।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राग बीहड़ भैरव पर आधारित ख्याल गायन पंडित कुमार गंधर्व से। इसी के साथ हमारा आज का शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा मंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर करता रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार तीन बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित लेख में कहा कि 2014 के बाद से शासन, राजनीति और सार्वजनिक चर्चा में भारतीयता की ओर निर्णायक बदलाव आया है। उन्होंने भारतीय भाषाओं, संस्कृति और पहचान पर गर्व को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री की सराहना की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि यह उपलब्धि भारतीय लोकतंत्र और जनता के विश्वास की शक्ति का प्रतीक है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को आत्मविश्वास, सुशासन और विकास पर आधारित एक नई पहचान दी है। एक दैनिक समाचार पत्र में लेख में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश के विकास, सुरक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण और वैश्विक प्रतिष्ठा में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने स्वतंत्र

0: भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। विश्व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री के परिवर्तनकारी शासन, विकासशील देशों के लिए उनके प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से गतिशील भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की है। केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 95,692 करोड़ रुपए का अंतरिम आवंटन जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी का उद्देश्य ग्रामीण विकास को गति देना और श्रमिकों को बिना किसी रुकावट के रोजगार प्रदान करना है। ओमान तट के पास अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीकी सेना ने ईरान पर हमले किए हैं। अमरीकी अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने गिराया था और दोनों पायलटों को बचा लिया गया था। अमरीकी हमलों के बाद ईरान के शहरों सिरिक, मीनाब, बंदर अब्बास और केशन द्वीप पर धमाकों की आवाजें सुनाई दी जो हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सटे हुए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान द्वारा अमरीकी हेलीकॉप्टर को गिराए जाने पर अमरीका की प्रतिक्रिया बहुत मजबूत और शक्तिशाली है। क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रनों से हरा दिया। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi has become the longest continuously serving democratically elected Prime Minister of India today. Mr. Modi took the oath of office on 26th of May in 2014. He surpassed the record of Pandit Jawaharlal Nehru, who first took oath as an elected Prime Minister on 13th of May in 1952 and served until 27th of May in 1964. Pandit Nehru's tenure as an elected Prime Minister amounted to 4,398 days. Now Prime Minister Modi's continuous tenure is 4,399 days, making him the longest serving elected Prime Minister in India's history. United States Ambassador to India Sergio Goa today congratulated Prime Minister Narendra Modi on becoming the country's longest serving elected Prime Minister. In a social media post, Mr. Goa said that this achievement is a powerful testament to Prime Minister Modi's decades of dedicated public service and leadership. A meeting of the National Democratic Alliance will be held in New Delhi today to celebrate its government completing 12 years and Prime Minister Narendra Modi becoming the longest continuously serving elected Prime Minister of India. Our correspondent has more details on the meeting.
2: All constituents of the alliance beside the top leadership of the BJP, including Prime Minister Modi, are expected to attend the meeting. The NDA meeting will also be attended by chief ministers and deputy chief ministers of all 22 NDA governed states and union territories, besides the leaders of all alliance constituents. The meeting will focus on reviewing various national development programs, infrastructure programs, and the Modi government's vision to transform the nation into a developed country by 2047. With Anupam Mishra, Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
1: The centre has unveiled 1.25 lakh crore rupees push for rural development in the country. Union Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan said that the central government has already allocated 30,000 crore rupees under MG Narega. He said, in addition to this, an interim allocation of 95,692 crore rupees has been released to states and union territories. With this, the total allocation will exceed 1.25 lakh crore rupees. Mr. Chauhan said this after chairing a virtual meeting of state rural development ministers regarding the implementation of Viksit Bharat Ji Ram Ji. The act will come into force across the country with effect from 1st of next month. The government has refuted several social media posts falsely claiming that the Reserve Bank of India, RBI, will withdraw paper currency notes and replace them with plastic currency notes from 30th of this month. Fact-check unit of the Press Information Bureau, PIB, has termed the claim as fake. PIB clarified that according to the RBI, there are no plans to withdraw.

0: paper currency notes or replace them with plastic currency notes by the end of this month. The U.S. military has launched strikes against Iran in response to the downing of a U.S. Army Apache helicopter off Oman coast. U.S. officials said the helicopter was brought down by an Iranian drone and two pilots were rescued. Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi warned that Tehran would leave no attack or threat unanswered, saying the United States has tested Iran's resolve. Meanwhile, on the Lebanese front, Israel carried out strikes on the southern Lebanese port city of Tyre on Tuesday after issuing an evacuation order covering the entire city for the first time. The India Meteorological Department has forecast heatwave conditions today over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, Uttar Pradesh and West Rajasthan. Hot and humid weather conditions are expected during the day at places over Konkan, Goa and Odisha. Meanwhile, heavy rainfall conditions are expected over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, coastal Karnataka and sub-Himalayan West Bengal, Sikkim. Parts of Bihar, interior Karnataka, Kerala, Mahi, Konkan, Goa, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, Telangana and Northeast India are also likely to witness rainfall during the next 2 to 3 days. Fast bowler Mohammad Siraj has been withdrawn from India's squads for the upcoming T20 international series against Ireland and England. The men's selection committee has named Prasidh Krishna as Siraj's replacement for both T20 I series. In a statement, the BCCI said that its medical team and the team management advised Siraj a period of rest as part of his workload management program. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुनीश शर्मा मुख्य समाचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज बुल्गारिया और फिनलैंड की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे वाराणसी हवाई अड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए चेक इन और आवर्जन प्रक्रिया शुरू हुई ओमान तट पर सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ने दांबुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है और अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है एक रिपोर्ट
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है भाषाई सांस्कृतिक धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर तरता रही है यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है अनुपम मिश्र आकाशवाणी समाचार दिल्ली
1: विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के

0: सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा है कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया है। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोर ने कहा कि ये उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी के दशकों की समर्पित जनसेवा और उनके नेतृत्व का सशक्त प्रमाण है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज से दो दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात और विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉ जयशंकर कुलतारंता वार्ता में भाग लेंगे। वे फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री श्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने पुर्तगाल के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर पुर्तगाल के लोगों और पुर्तगाल के विदेश मंत्री पाउलो रानगेल को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत पुर्तगाल के साथ द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग को मजबूत करने के लिए तत्पर है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने यह घोषणा की है कि वाराणसी से अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आवर्जन और सामान संबंधी औपचारिकताओं को पूरी कर सकते हैं और दुनिया भर के गंतव्यों के लिए निर्बाध रूप से आगे की यात्रा कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि भारत की हब एंड स्पोक विमानन योजना की शुरुआत वाराणसी से होती है। उन्होंने बताया कि वाराणसी आसानी से कनेक्ट उड़ानों के मॉडल में शामिल होने वाला पहला शहर है। उन्होंने इसे भारत को वैश्विक विमानन केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्व स्तरीय हवाई संपर्क को महानगरों से आगे ले जाने के दृष्टिकोण को दर्शाता है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण समाचार में आपका फिर स्वागत है। ओमान तट के पास अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने गिराया था। हालांकि दोनों पायलटों को बचा लिया गया। हमारी संवाददाता ने बताया कि ईरान ने भी क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं।
1: ईरान के दक्षिणी तट पर सिरिक, बंदर अब्बास, केशम, जास और कोहे मुबारक समेत कई स्थानों पर विस्फोटों की खबरें मिली हैं। सरकारी मीडिया ने बताया कि सिरिक के बामानी जिले में दो जल भंडार टैंक क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे स्थानीय पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने चेतावनी दी कि तेहरान किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बिना नहीं रहेगा और कहा कि अमरीका ने ईरान के संकल्प की परीक्षा ली है। इस बीच लेबनान में कुछ ही दिन पहले हुआ युद्ध विराम टूटने की कगार पर है। इसराइल ने दक्षिणी लेबनान बंदरगाह शहर टायर पर हमले किए। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार हमले में कम से कम 8 लोग मारे गए। नवीनतम संघर्ष ने इसराइल और ईरान के बीच अमेरिका की मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम को और अधिक तनावपूर्ण बना दिया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: दक्षिणी फिलीपींस में कल बचाव दल ने क्षतिग्रस्त इमारतों की तलाशी ली ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी व्यक्ति अंदर फंसा न रह गया हो। एक दिन पहले आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 37 लोगों की मृत्यु हो गई, लगभग 500 घायल हुए और 32,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए। पिछले कई दशकों में देश में आए सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से एक इस भूकंप के बारे में अधिकारियों ने बताया कि 4 लोग अब भी लापता हैं। क्रिकेट में इंडिया ए ने कल त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। पहले बल्ले

बल्लेबाजी करते हुए इंडियाई ने निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 277 रन बनाए। ऋतुराज गायकवाड़ ने 101 और कप्तान तिलक वर्मा ने 60 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 7 गेंद शेष रहते 269 रन पर सिमट गई। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान से ए से होगा और फाइनल मैच खेला जाएगा 21 जून को। बेंगलुरु की सृष्टि किरण ने अंडर 13 टेनिस खिलाड़ियों में विश्व की नंबर एक खिलाड़ी का स्थान हासिल कर लिया है। सृष्टि ने लगातार 5 ITF जूनियर खिताब जीतकर और ITF वर्ल्ड टेनिस टूर जूनियर्स J100 ग्वाटेमाला में उप विजेता रहकर ये स्थान हासिल किया है। 13 वर्षीय सृष्टि किरण ने ITF जूनियर रैंकिंग में करियर की सर्वश्रेष्ठ 357वीं रैंक प्राप्त की, जो विश्व स्तर पर अंडर 13 खिलाड़ियों में सर्वोच्च रैंकिंग है। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज बुल्गारिया और फिनलैंड की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। वाराणसी हवाई अड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए चेक इन और आव्रजन प्रक्रिया शुरू हुई। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ए ने दाम्बुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को हरा दिया है। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित विश्व दर्पण। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में श्रोताओं, हम आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
3: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
2: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
3: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।

सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप

0: नहीं।
1: हेलो डॉक्टर,
2: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
1: हेलो डॉक्टर,
2: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
1: हेलो डॉक्टर,
3: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर, और अब हम हाजिर हैं फिल्म संगीत लेकर।

फिल्म लगान का ये गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले, उदित नारायण और साथियों की आवाज़ों में। जावेद अख्तर ने इस गीत को रचा था, संगीत निर्देशन AR रहमान का था।

मलंग, आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह का गाया ये गीत। शहीद कादरी की रचना थी, धुन मिथुन का था। अब आइए सुनवाते हैं अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा ये गाना। संगीत अमित त्रिवेदी का है, आवाज़ अरिजीत सिंह की है और ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म केदारनाथ सिंह।

सिम्बा फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे राहत फतेह अली खान, अजीज कौर और तनिष्क बागची की आवाज़ों में। रश्मि विराग की रचना थी, धुन तनिष्क बागची का था।

जुबिन नौटियाल की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे रेड टू फिल्म का ये गाना। गीतकार थे मनोज मुंतशिर और संगीत निर्देशन था रोचक कोहली का।

सनम तेरी कसम। आप सुन रहे थे अंकित तिवारी और पलक मुछल की आवाजों में इस फिल्म का गाना। समीर अंजान की रचना थी, धुन हिमेश रेशमिया का था। श्रोताओं, इस गीत के साथ ही हमारा आज का फिल्म संगीत का ये सफर अब यहीं पूरा होता है।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001।

0: 4-2-4-2
1: ओ 8-7-0-0-0-1-4-2-4-2 लो अभी फोन लगाता हूँ 8-7-0-0-0-1-4-2-4-2 पर।
2: हमारा अगला कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर आप सुनेंगे इसी चैनल पर।
3: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। श्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत के प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। विश्व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री के परिवर्तनकारी शासन, विकासशील देशों के प्रति उनके प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से गतिशील भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं के भी बैठक में शामिल होंगे। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 1,25,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तथा विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉ जयशंकर 14वीं कुलतारांता वार्ता में भाग लेंगे। इस वार्ता का विषय है परिवर्तनशील दुनिया, वैश्विक क्षेत्रीय स्थानीय परिप्रेक्ष्य। डॉ जयशंकर फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। ओमान तट के पास अमेरिकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर गिराए जाने के विरोध में अमेरिकी सेना ने ईरान पर हमले किए हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने गिराया था और दोनों पायलटों को बचा लिया गया था। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान के शहरों सिरिक, मिनाब, बंदर अब्बास और केशम द्वीप पर धमाकों की आवाजें सुनाई दी जो होर्मुज जल डमरू मध्य से सटे हुए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान द्वारा अमेरिकी हेलीकॉप्टर को गिराए जाने पर अमेरिका की प्रतिक्रिया बहुत मजबूत और शक्तिशाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जन सेवा ही सुशासन का सच्चा मापदंड है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि केवल वही व्यक्ति जनता का विश्वास अर्जित कर सकता है जो विनम्रता, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा के साथ निरंतर कार्य करता रहता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 11:05 हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर,

0: नमस्कार जमशेदपुर।
1: कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर के साथ आज मैं हूं अनिमा। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार, बल्कि प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज कार्यक्रम की शुरुआत एक छोटी सी कहानी के साथ। एक मेंढक अपने तीनों बच्चों के साथ जंगल में नदी के किनारे रहता था। उनकी दुनिया जंगल और नदी तक ही सीमित थी, बाहरी दुनिया से उनका कोई वास्ता नहीं था। एक दिन मेंढक के तीनों बच्चे घूमते घूमते जंगल के पास स्थित एक गांव में पहुंच गए। वहां उनकी दृष्टि एक खेत में चरते हुए बैल पर पड़ी। इतना विशालकाय जीव उन्होंने पहले कभी भी नहीं देखा था। बैल ने हुंकार भरी तो तीनों बच्चे डर के मारे उल्टे पांव भागते हुए अपने घर आ गए। बच्चों को डरा हुआ देखकर जब मेंढक ने कारण पूछा तो उन्होंने बैल के बारे में बताया। मेंढक ने जोर से सांस खींची और हवा भरकर अपना शरीर फुला लिया। फिर बच्चे से पूछा, क्या वो इतना बड़ा था? बच्चे बोले, नहीं, इससे भी बहुत बड़ा था। मेंढक ने अपने शरीर को और फुलाया और पूछा, इतना बड़ा? इस बार भी जवाब ना मिला। मेंढक का अहंकार आहत हुआ कि आखिर कोई पशु उससे बड़ा कैसे हो सकता है। वो अपने शरीर को फुलाता गया और अंत में फटकर मर गया। श्रोता, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि दुनिया को जानने के लिए अपने दायरे से बाहर निकलना बहुत जरूरी है ना?

आप सुन रहे थे फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, इस फिल्म का गाना अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज़ों में। गीत लिखा था जावेद अख्तर ने, संगीत से सजाया था जतिन ललित ने।

श्रोताओं, आँखों की मदद से हम अपने आसपास की दुनिया को देख और समझ पाते हैं। आँखें हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण इंद्रियों में से एक है। आँखें प्रकाश को ग्रहण करती है और मस्तिष्क उसकी व्याख्या करके हमें दुनिया देखने में सक्षम बनाता है। आँखों के बिना हम रंगों, आकारों, दूरी और गति को नहीं पहचान पाते। श्रोताओं, आज है विश्व नेत्रदान दिवस। हर वर्ष लोगों को नेत्रदान के प्रति जागरूक करने और मृत्यु के बाद अपनी आंखें दान करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है विश्व नेत्रदान दिवस। नेत्रदान एक ऐसा महान मानवीय काम है जो किसी दृष्टिहीन इंसान के जीवन में प्रकाश ला सकता है। एक व्यक्ति के नेत्रदान से दो लोगों को दृष्टि प्राप्त हो सकती है और वे आत्मनिर्भर जीवन जीने में सक्षम बन सकते हैं। श्रोता, हमारे देश में लाखों लोग कॉर्निया संबंधी समस्याओं के कारण दृष्टिहीनता का सामना कर रहे हैं दिनों। इनमें से अनेक लोगों की आंखों की रोशनी केवल कॉर्निया प्रत्यारोपण द्वारा वापस लाई जा सकती है। इसके लिए नेत्रदान करने वाले लोगों की व्यवस्था होती है, आवश्यकता होती है, लेकिन दुर्भाग्यवश जागरूकता की कमी, भ्रांतियों और संकोच के कारण पर्याप्त संख्या में नेत्रदान नहीं हो पाता। श्रोता, हम सभी को पता है कि नेत्रदान सिर्फ मृत्यु के बाद किया जाता है। किसी व्यक्ति की मृत्यु के कुछ घंटों के भीतर उसकी आंखों का सुरक्षित संग्रहण किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में मृतक के चेहरे की सुंदरता या सम्मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेत्रदान सभी धर्मों और मानवता के मूल्यों के अनुरूप एक पुण्य काम माना जाता है। विश्व नेत्रदान दिवस हमें यह संदेश देता है कि हम अपने जीवन के बाद भी किसी के जीवन में उजाला ला सकते हैं। अगर अधिक से अधिक लोग नेत्रदान का संकल्प लें तो हजारों दृष्टिहीन व्यक्तियों को नई रोशनी और नया जीवन मिल सकता है। मृत्यु के बाद भी जीवन में प्रकाश बांटेंगे, हम सबको ये संकल्प लेना होगा। नेत्रदान करेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि नेत्रदान महादान किसी की दुनिया में भरते नई पहचान, नई रोशनी है ना।

आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में आनंद बख्शी का लिखा ये गाना। सचिन देव बर्मन के संगीत निर्देशन में फिल्म का नाम था अनुराग।

श्रोताओं, बच्चों का मन कोमल मिट्टी के समान होता है, जिसे हम अपने संस्कारों, व्यवहार और आदतों से आकार देते हैं। इस अवस्था में जो बीज हम बोते हैं, वही बड़े होकर उसके व्यक्तित्व में गुण या अवगुण बनकर उभरते हैं। इसलिए जरूरत है कि शुरुआत से ही उसमें अच्छे संस्कार, सकारात्मक सोच, समझदारी और जिम्मेदारी जैसे गुण विकसित किए जाए, ताकि उसका भविष्य उज्जवल और सफल बन सके। आमतौर पर अभिभावक अपने बच्चों को बोलचाल में सभ्यता सिखाते हैं, लेकिन कई बच्चे इतने बोलते हैं कि किसी की भी बात वो नहीं सुनते। एक सफल और अच्छा इंसान बनने के लिए अच्छा श्रोता होना भी बहुत ही जरूरी है। इसलिए बच्चे में शुरू से ही दूसरों की बात गौर से और धैर्यपूर्वक सुनने की आदत डालें। उसे बताएं कि दूसरों से कुछ सीखने के लिए उनकी बात ध्यान से सुनना बहुत ही जरूरी है। हर काम को रटे रटाए ढर्रे से पूरा करना या दूसरों की नकल करना बच्चे की सोचने समझने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। इसके बजाय उसे कुछ काम खुद अपने अंदाज से करने के लिए प्रेरित करें। एक ही कविता को अलग अलग तरीके से गाने के लिए प्रोत्साहित करें। क्ले की तरह तरह तरह के खिलौने बनाने को कहें। बच्चों के रचनात्मक विकास की विचार की सराहना करें। इससे वो हर काम अलग और बेहतर ढंग से करने की कोशिश करेगा। जीवन में अच्छे और बुरे वक्त आता जाता रहता है, कोई भी दौर स्थायी नहीं होता। बच्चों की इस बात से रूबरू करवाते रहिए कि जिम्मेदारी आपको लेनी ही होगी। घर में किसी विपत्ति या किसी की बीमारी से माहौल भारी है और बच्चा उदास रहने लगे, तो उसे समझाइए कि अच्छा वक्त भी जरूर आएगा। तबीयत खराब रहने, स्कूल में प्रदर्शन बिगड़ने या किसी और वजह से बच्चा उदास है, तो उसे धैर्य रखकर अच्छे समय का इंतजार करने के लिए कहें। उसे प्रेरक प्रसंग सुनाएं, मुश्किल हालात का सामना करना सिखाएं, ताकि वो समस्या से जुड़कर चिंतित होने के बजाय समाधान पर ध्यान देने के लिए सीखे। कई अभिभावक बच्चों को बात बात पर डांटते हैं, वे न तो अच्छे खेलने कूदने देते हैं अच्छे से बच्चों को, और ना ही मस्ती से दौड़ने भागने को कहते हैं। वर्तमान समय में अभिभावक इतने सुरक्षात्मक हो गए हैं कि वे हर वक्त गंदगी, जीवाणु या गिर जाने से खुद भी डरे हुए रहते हैं और बच्चों को भी डराते हैं। इसके चलते बच्चा भी सहमा सा रहने लगता है और आत्मविश्वास खो बैठता है। एक जिम्मेदार अभिभावक बनकर बच्चों को सिखाएं कि दौड़ते वक्त गिरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, फिर से खड़े होंगे और चाल पढ़ेंगे, चल पढ़ेंगे। जरा सी चोट लग गई तो दवा लगा लेंगे, लेकिन दौड़ते भागते हुए आगे बढ़ेंगे और जिंदगी जिएंगे। खेलने कूदने पर गंदे होंगे तो हाथ पैर धो लेंगे। ध्यान रखें, उसे भविष्य में कदम पर कदम सोचकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। इसलिए उसे निडर स्वभाव का बनाएं, डरपोक नहीं। वो चलेगा, दौड़ेगा, फिर गिरेगा, फिर उठेगा, है ना? इसी तरह से बच्चों को संभलते हुए गिरते हुए आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करें। बचपन में डाले संस्कार ही भविष्य करते हैं, इसलिए बच्चों में सही आदतें, आत्मविश्वास और अनुशासन विकसित करना अभिभावकों के लिए बहुत ही जरूरी है।

0: सचिन देव बर्मन के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे आनंद बख्शी का लिखा ये गाना। लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म का नाम था आराधना।
1: अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर।
2: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
3: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
2: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
3: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

अंतराल के बाद कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में सभी श्रोताओं का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। दिन के 11:32 हो रहे हैं।

श्रोताओं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपसे ढेर सारी और बातें करते हैं। अब कुछ बातें फिल्मी जगत से। आज हम याद कर रहे हैं नाटककार, अभिनेता, लेखक और निर्देशक गिरीश कर्नाड को। मुख्य रूप से कन्नड़ भाषा में लिखने वाले गिरीश कर्नाड ने भारतीय रंगमंच और सिनेमा में गहरा योगदान दिया। उन्हें पद्मश्री, पद्मभूषण और साहित्य के सर्वोच्च ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनका जन्म 19 मई 1938 को महाराष्ट्र में हुआ। उनके कुछ प्रमुख नाटकों में ययाति उनका लिखा पहला नाटक था, जिसे उन्होंने मात्र 23 वर्ष की आयु में लिखा। तुगलक, ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित नाटक बहुत ही प्रसिद्ध हुआ उनका लिखा। और हैवदन, ये भारतीय लोक कथा और यक्षगान शैली का एक उत्कृष्ट मिश्रण था। हिंदी फिल्मों में उन्होंने निशांत, मंथन और पुकार जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम किया। 10 जून 2019 को बेंगलोर में उनका निधन हो गया। आधुनिक दर्शकों के बीच वे सलमान खान की फिल्म एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है में शिनॉय की भूमिका के लिए काफ़ी लोकप्रिय रहे। उन्हें याद करते हुए आपको सुनवाते हैं गिरीश कर्नाड अभिनीत स्वामी फिल्म का ये गाना। किशोर कुमार की आवाज़ में गीतकार हैं अमित खन्ना, संगीतकार राजेश रोशन।

श्रोताओं, आज है भारत के प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर, गजल गायक और संगीतकार रूप कुमार राठौर का जन्मदिन। उन्होंने हिंदी के अलावा गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ और अन्य भाषाओं में भी कई गीत गाए हैं। उनका जन्म मुंबई में एक संगीत परिवार में हुआ। उनके पिता पंडित चतुर्भुज राठौर ध्रुपद संगीत के प्रसिद्ध कलाकार थे। उनके बड़े भाई श्रवण राठौर और विनोद राठौर भी संगीत जगत से जुड़े हुए हैं। रूप कुमार राठौर ने शुरुआत में तबला वादक के रूप में पहचान बनाई। बाद में उन्होंने गायन को अपना मुख्य क्षेत्र बनाया और बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान स्थापित की। रूप कुमार राठौर की आवाजों में सूफी गजल और रोमांटिक गीतों के लिए विशेष रूप से सराहा जा चुका है, सराहा जाता है। संगीत प्रेमियों के बीच उन्हें एक बेहद प्रभावशाली और अपेक्षाकृत कम चर्चित गायक माना जाता है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अब रूप कुमार राठौर की आवाज़ में अनवर फिल्म का ये गाना।

आप सुन रहे थे अनवर फिल्म का ये गाना रूप कुमार राठौर और साथियों की आवाज़ों में। गीत लिखा था सईद कादरी ने और संगीत से सजाया था मिथुन ने।

श्रोताओं, बढ़ती उम्र में मांसपेशियों की समस्या आज घर घर की परेशानी बन चुकी है। कार्यक्रम में अब बातें कुछ सेहत की हो जाए। श्रोताओं, बुढ़ापे में थकान, चलने में दिक्कत और गिरने का डर, ये सब कमज़ोर मांसपेशियों के कारण होता है। असल में 60 की उम्र के बाद शरीर प्रोटीन को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता, जिससे मांसपेशियां गलने लगती हैं। अगर इस उम्र में डाइट में दही, इडली, ढोकला जैसे फॉर्मेटेड फूड, सही प्रोटीन के साथ हल्की कसरत करें तो मसल्स मजबूत बने रहेंगे। दही, इडली, डोसा और ढोकला जैसे खमीर वाले फॉर्मेटेड फूड पाचन में मदद करते हैं। ये प्रोबायोटिक्स से पेट की सेहत सुधारते हैं, जिससे प्रोटीन आसानी से सोखा जाता है। लेकिन अकेले ये पर्याप्त नहीं है। शोध बताते हैं कि फॉर्मेटेड फूड्स के साथ आपके वज़न के अनुसार प्रोटीन की मात्रा लें। आप अपने वज़न के अनुसार प्रोटीन की मात्रा लें, साथ में हल्के वज़न की कसरत ज़रूर करें। इससे आपके मसल्स की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ेगी। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की सलाह है कि 60 साल के बाद अगर मसल्स में आप, मांसपेशियों में आप मजबूती चाहते हैं तो खाने में अपने प्रति किलो वज़न के अनुसार 1 ग्राम प्रोटीन ज़रूर लें। जैसे कि अगर आपका वज़न 65 किलो है तो रोज़ 65 ग्राम प्रोटीन खाने में शामिल करें। और अगर आपकी उम्र जो है वो 65 साल से अधिक है तो डॉक्टर की सलाह से

हफ्ते में 2 दिन मसल्स मजबूत करने वाली कसरत ज़रूर करें, जैसे कि कुर्सी से 10 बार उठे बैठे, दीवार के सहारे खड़े होकर पुशअप लगाएं, पानी की बोतल में वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं, और दिनचर्या में रोज़ाना ये शेड्यूल बनाएं, जैसे कि सुबह एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें और प्रोटीन युक्त नाश्ता लें, दोपहर के खाने में भी आप प्रोटीन का इस्तेमाल करें, जैसे कि दाल पनीर सलाद लें दोपहर के खाने में, और शाम में 20 मिनट कम से कम टहलें, और रात में हल्का खाना लें, जैसे कि खिचड़ी आप रात में ले सकते हैं। तो अगर आप दिनचर्या में इन सब चीज़ों को शामिल करें तो बढ़ती उम्र में भी आपकी जो है मांसपेशियाँ मजबूत बनी रहेंगी। और अब आपके लिए

आप सुन रहे थे वीर फिल्म का ये प्यारा सा गाना राहत फतेह अली खान और साथियों की आवाज़ों में गीतकार थे गुलजार, संगीतकार साजिद वाजिद। और अब कार्यक्रम में मौसम की जानकारी आपको दे दें श्रोताओं, झारखंड में 11 और 12 जून के लिए भारी बारिश के ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही 13 और 14 जून को भी राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश आंधी के आसार हैं। और अगर आज के हम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रह सकती है। दिन में उमस भरी गर्मी परेशान करेगी, तापमान में ज़्यादा बदलाव की संभावना नहीं है।

0: कार्यक्रम के आखिर में आप सुन रहे थे कसूर फिल्म का गाना। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में गीतकार थे समीर, संगीतकार नदीम शवर्ण। इस गाने के साथ ही कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर से हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
1: नमस्कार जमशेदपुर।
0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से 2.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 12 बजने वाले हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत के प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्यता और दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। विश्व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइप वाली प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति बढ़ा रही है। श्री पुरी ने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री पुरी ने कहा कि सरकार ऐसी गतिविधियों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई कर रही है। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन झूठी खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई इस महीने की 30 तारीख से कागजी नोट को बंद करके उनकी जगह प्लास्टिक नोट का प्रचलन शुरू कर देगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तथा विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में डॉ जयशंकर फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुदेंद्र टंडन ने कल मनीला में आयोजित आसियान क्षेत्रीय मंच के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लिया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान श्री टंडन ने समकालीन भू राजनीतिक चुनौतियों से निपटने में एआरएफ की महत्वपूर्ण भूमिका और संवाद तथा कूटनीति के प्रति समर्थन व्यक्त किया। इस दौरान क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहित हिंद प्रशांत क्षेत्र में वैश्विक संसाधनों के लिए नियम आधारित व्यवस्था बनाए रखने पर विचार विमर्श हुआ। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी राजस्थान में लू चलने का अनुमान लगाया है। कोंकण, गोवा और ओडिशा के कुछ हिस्सों में दिन में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, इस समय आपने ट्यून किया है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। दिन के 12:05 रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम शीर्षक गीत।

तू शायर है, मैं तेरी शायरी। शायर जो दिल की बातों को लफ्जों में पिरोकर रूह तक पहुंचा जाते हैं, वे जिंदगी के गहरे अनुभवों, दर्द और खुशी को अपनी शायरी में उतारते हैं, जिससे साधारण सी बात भी निखर जाती है।

शायर दिल की गहराइयों में उतरकर लफ्जों का जादू जगाते हैं, जो महसूस न हो सके जुबान से उसे शेर में ढल जाते हैं। कागज़ पर लकीरें नहीं ये जज्बात

सजाते हैं कागज पर, लकीरें नहीं ये जज्बात सजाते हैं। शायर बड़े जिंदा दिल होते हैं जो गम में भी मुस्कुराते हैं।

तपिश होती है जिस्म में, तब जाकर एक शेर बनता है। शायर महज एक लेखक नहीं, रूह का आईना होता है, जिसके कलम में ईमानदारी और दिल में जज्बातों का सैलाब हो, वही सच्चा शायर है जो दुनिया को जीने का नया ख्वाब दिखाता है। शायर की नज़र जहाँ से गुजरती है वहाँ शायरी खिलती है, उनकी खामोशी में भी एक गूंज सुनाई।

श्रोताओं, शीर्षक गीत के आज के इस कार्यक्रम में आज का हमारा शीर्षक था शायर। शायर शीर्षक गाने आपको जरूर पसंद आए होंगे, ऐसी हमारी आशा है। बहरहाल आज इस कार्यक्रम में जिन फिल्मों के गाने आपने सुने, फिल्में थी साजन, बॉबी, नमक हराम और कभी कभी। इन गीतों के लिए आवाजें थी अलका याग्निक, शैलेंद्र सिंह, किशोर कुमार और मुकेश की। गीतकार थे समीर, आनंद बख्शी और साहिर लुधियानवी। संगीत से सजाया

था नदीम श्रवण, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, राहुल देव बर्मन और खयाम ने। श्रोताओं, इसी के साथ फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम शीर्षक गीत अब संपन्न हुआ।

0: हमारी इसी सभा में फिल्म संगीत का आनंद आप एक बार फिर से ले सकते हैं दिन के 1:20 पर। आकाशवाणी का यह जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। दिन के 12:30 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी देर में।
1: खो गया इंतजाम।
2: किसका?
1: गुड्डी की फीस का।
2: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है?
3: लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
4: RBI कहता है,
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
0: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में डीजे पहले सुनिए पद्मा तलवलकर का ख्याल गायन, राग है गौर सारंग।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे राग गौर सारंग में पद्मा तलवलकर का ख्याल गायन। कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए पंडित जसराज का ख्याल गायन, राग है माधव सारंग।

आप सुन रहे थे राग माधव सारंग में पंडित जसराज का ख्याल गायन। शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है। अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे दिन के 1 बजे हिंदी में समाचार, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार। अपने रांची केंद्र से ले लेकर प्रादेशिक समाचार हम आपको सुनवाएंगे दिन के 1:10 पर। अभी आइए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के प्रसारण में शामिल होते हैं। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार सबसे लंबी अवधि तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान सदस्यों ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति सम्मान व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ऐतिहासिक अवसर देश की जनता द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जताए गए अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत के प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है।
2: आज माननीय प्रधानमंत्री जी भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी इसी तरीके से देश की सेवा करते रहे और देश का जो भविष्य बनाने का संकल्प उन्होंने लिया है, विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, उस संकल्प में हम सभी 140 करोड़ देशवासी संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
0: गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने प्रधानमंत्री को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी। विश्व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में इस अवसर पर कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर उत्सव मनाया जाएगा। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइपलाइन प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति बढ़ा रही है। श्री पुरी ने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री पुरी ने कहा कि सरकार ऐसी गतिविधियों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई कर रही है। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुदेंद्र टंडन ने कल मनीला में आयोजित आसियान क्षेत्रीय मंच एआरएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लिया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान श्री टंडन ने समकालीन भू राजनीतिक चुनौतियों से निपटने में एआरएफ की महत्वपूर्ण भूमिका और संवाद तथा कूटनीति के प्रति समर्थन व्यक्त किया। घरेलू शेयर बाजारों में आज 0.5% की बढ़त दर्ज की गई। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 420 अंक बढ़कर 74,339 और निफ्टी 106 अंक बढ़कर 23,348 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे लंबे कार्यकाल पर केंद्रीय मंत्रियों और पूर्व सैनिकों ने दी बधाई। पिछले 12 वर्षों की सेवा, सुशासन और रक्षा आत्मनिर्भरता की सराहना की। झारखंड राज्यसभा में निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी के नामांकन पत्र पर सुनवाई जारी। निर्वाचन आयोग से अंतिम फैसले का इंतजार। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश पर राज्य के सभी 444 बालू घाट आज से 15 अक्टूबर तक के लिए बंद। परिवहन पर पूरी तरह रहेगी रोक। पाकुड़ में अनियंत्रित होकर पलटी बारातियों से भरी बस, दुर्घटना में 2 लोगों की दर्दनाक मौत, 33 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल। और अंडर 18 एशिया कप हॉकी में कांस्य पदक जीतकर लौटी सिमडेगा की बेटियों का स्वागत। संदीपा कुमारी और पुष्पा मांझे ने कहा, अब सीनियर राष्ट्रीय टीम के लिए खेलना है अगला लक्ष्य। स्वतंत्र भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार बधाई मिल रही है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दी हैं। अन्नपूर्णा देवी ने प्रधानमंत्री के कार्यकाल को सेवा और सुशासन का स्वर्ण काल बताया। वहीं रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने इस कार्यकाल को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती शक्ति का परिचायक कहा। केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने जमशेदपुर में आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में मोदी सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों को सेवा, सुशासन और अंत्योदय का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत, उज्ज्वला और प्रधानमंत्री आवास जैसी कल्याणकारी योजनाओं से समाज के हर वर्ग के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है।
1: देश के अंदर उत्पादन करना है, आत्मनिर्भर बनना है। हम सब काफी प्रयास किए यहाँ से लेके दिल्ली तक, और सरकार भी चाहता भी था, और यहाँ और नए माइंस का भी सर्वे करके गया है। कुछ स्कूल प्रयास करके उसको
0: इधर हजारीबाग में सेवानिवृत्त सैन्य जवानों ने भी प्रधानमंत्री को बधाई दी है। पूर्व सैनिकों ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में भारतीय सेना का मनोबल और मान सम्मान काफी बढ़ा है। उन्होंने आधुनिक हथियारों की उपलब्धता और रक्षा क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता को बेहद गर्व की बात बताया।
2: 12 साल मोदी जी का सेना के लिए तो बहुत लाभदायक है, और उसके आने के पहले सेना में सब कुछ रहते हुए भी हम कुछ भी नहीं कर पाते थे। 2014 के बाद सेना में बदलाव भी हुआ और हर फौजी का आत्मविश्वास बढ़ा।
3: काम तो बहुत सुचारू रूप से चल रहा है डिफेंस में। आने वाले समय से बदलाव जिस तरह चाहिए उस तरह हो रहा है, और मोदी जी आने के बाद जो भी हुआ सेना के लिए अच्छा विकास हुआ है। इक्विपमेंट्स, गाड़ियां, हेलीकॉप्टर्स और जितने गन डिफेंस सर्विसेज में चाहिए थे वो मिल रहे हैं।
0: इधर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए एक विशेष प्रस्ताव पारित किया है। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में आयोजित कैबिनेट की इस महत्वपूर्ण बैठक में मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने खड़े होकर प्रधानमंत्री का सम्मान किया और उन्हें इस ऐतिहासिक कीर्तिमान के लिए बधाई दी। झारखंड विधानसभा परिसर में राज्यसभा चुनाव की स्क्रूटनी को लेकर राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी के नामांकन को रद्द करने की मांग को लेकर सदन के बाहर प्रदर्शन किया। मौके पर मौजूद स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने आरोप लगाया कि नामांकन पत्र में कई त्रुटियां हैं और इसे तुरंत खारिज किया जाना चाहिए।
4: एक दलित महिला को राहुल गांधी जी ने कैंडिडेट बनाया और 100% सेफ, हमारे पास पर्याप्त बहुमत है, उसके बाद भी आपने मात्र एक त्रुटि के कारण, जबकि 3:30 बजे तक आज समय है क्वारी करने का, बताने का, आपने एक महिला का नामांकन रद्द कर दिया मध्य प्रदेश में, और यहाँ क्यों नहीं किया आपने? यहाँ 5-5 चोरी है, भाजपा का समित पद कैंडिडेट है, इसलिए आपने उनका नामांकन रद्द नहीं किया, इसलिए हम लोग धरना पर बैठे।
0: दूसरी ओर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी विधानसभा गेट के बाहर कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा विधायक सीपी सिंह ने कांग्रेस के इस प्रदर्शन को नियमों के प्रतिकूल बताते हुए सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं।
5: भाजपा के कार्यकर्ता के लिए गेट बंद, ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है और राज्य का सबसे बड़ा पंचायत है, तो यहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए स्थान भी सरकार ने तय किया। कांग्रेस के कार्यकर्ता अंदर घुस के प्रोटेस्ट करेंगे तो स्वाभाविक है दूसरे दल के लोगों को भी अधिकार मिलना चाहिए।
0: राजधानी रांची में आज झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के बैनर तले बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करने का प्रयास किया, लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए आंदोलनकारियों को मोराबादी क्षेत्र में ही रोक दिया है। मुख्यमंत्री आवास और उसके आसपास के इलाकों में रैपिड एक्शन पुलिस सहित अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। पूरी तरह शांतिपूर्ण और नियंत्रण में है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड में राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT के आदेश के तहत आज से नदियों से बालू खनन और उठाव पर पूरी तरह रोक लग गई है। यह प्रतिबंध आगामी 15 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इस अवधि में मॉनसून के दौरान नदी घाटों के पर्यावरण और जलीय जीवों की सुरक्षा के लिए राज्य के सभी 444 बालू घाट बंद रहेंगे और बालू के परिवहन की अनुमति नहीं होगी। गिरिडीह जिले में नक्सल प्रभावित पीरटांड़ प्रखंड में मनरेगा योजना के तहत बंजर जमीन पर आम बागवानी कर किसान अपनी आय बढ़ा रहे हैं। योजना से लाभान्वित किसान शेखर महतो और तूपलाल बेसरा ने बताया कि सरकार की मदद से वे आत्मनिर्भर बन रहे हैं।
6: बंजर भूमि था जो कृषि योग्य बिल्कुल नहीं था, उस सब भूमि में हम बागवानी शुरू किए और बागवानी मेरा इतना शानदार रहा कि ये चौथा साल है बागवानी का। अगला साल ही लगभग हम 1 लाख का आम बेच चुके थे और इस साल भी एकदम खेती जो उम्मीद से बढ़िया हुआ है। पेड़ से ही पका हुआ आम को मिल जा रहा है बहुत लोगों को।
7: आम बागवानी मिला नरेगा साथ से, तब हमने लगाए हैं। पूरे प्रखंड का सब आ करके देख रहा है, पूरे प्रखंड में लगा रहा है। इन साल कुछ मौसम के चलते से फल नहीं आया, फिर भी मेरा हो जाएगा लगभग 1.5 लाख रुपए।
0: पंचायत सचिव सरफराज अहमद ने कहा कि जिला प्रशासन किसानों को उचित बाजार उपलब्ध करा रहा है। पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र में कल देर रात बारातियों से भरी एक बस के अनियंत्रित होकर पलटने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार बारात सुंदर पहाड़ी क्षेत्र से लौट रही थी, तभी मालीपाड़ा ढलान के निकट यह हादसा हुआ। स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां कई की स्थिति गंभीर बनी हुई है। आज सुबह के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के मुख्य इंडेक्स लगभग 0.7% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 597 अंक चढ़कर 74,516 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 157 अंक बढ़कर 23,400 पर पहुंच गया है। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,40,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,45,000 रुपए प्रति किलो है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने अगले 5 दिनों के लिए मॉनसून के राज्य में प्रवेश करने की संभावना व्यक्त की है। कल राजधानी रांची, दुमका, बोकारो सहित राज्य के 14 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने इस दौरान लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। जापान में आयोजित अंडर-18 महिला एशिया कप हॉकी में कांस्य पदक जीतकर लौटी सिमडेगा की 2 बेटियों का जिला मुख्यालय पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। भारतीय टीम की सदस्य संदीपा कुमारी और पुष्पा मांझी ने अपनी सफलता का श्रेय कोच, परिवार और राज्य सरकार के सहयोग को दिया है।
8: मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल मैच था जिसमें हम लोग बहुत अच्छा खेले, लेकिन सेमीफाइनल में शूट आउट में लूज हो गए। कोशिश किए थे कि फर्स्ट क्वार्टर में ही गोल मारने का, पर नहीं हो पाया। और थर्ड प्लेस के लिए खेले कोरिया के साथ। हम लोग सीखे कि इंटरनेशनल में हम लोग अपना प्रेशर झेल सके।
0: और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे लंबे कार्यकाल पर केंद्रीय मंत्रियों और पूर्व सैनिकों ने दी बधाई। पिछले 12 वर्षों की सेवा, सुशासन और रक्षा आत्मनिर्भरता की सराहना की। झारखंड राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी के नामांकन पत्र पर सुनवाई जारी। निर्वाचन आयोग से अंतिम फैसले का इंतजार। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश पर राज्य के सभी 444 बालू घाट आज से 15 अक्टूबर तक के लिए बंद। परिवहन पर पूरी तरह रहेगी रोक। पाकुड़ में अनियंत्रित होकर पलटी बारातियों से भरी बस। दुर्घटना में 2 लोगों की दर्दनाक मौत, 33 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल। और अंडर 18 एशिया कप हॉकी में कांस्य पदक जीतकर लौटी सिमडेगा की बेटियों का स्वागत। संदीपा कुमारी और पुष्पा मांझी ने कहा, अब सीनियर राष्ट्रीय टीम के लिए खेलना है अगला लक्ष्य। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम हमारे श्रोता सुनेंगे थोड़ी देर में।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
5: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
4: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
5: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
4: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
5: 8700001-4242।
6: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश, हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।
0: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, ये समय है दोपहर का, सुबह की भाग दौड़ के बाद ये समय है थोड़ा सुस्ताने का, थोड़ा आराम करने का। तो क्यों ना संगीत की मीठी तरंगों से सुकून का सफर हो।

आप सुन रहे थे वीर फिल्म का ये गाना, रूप कुमार राठौर, श्रेया घोषाल और सुजैन डिमेलो की आवाजों में। इस गीत को लिखा था गुलजार ने और संगीत से सजाया था साजिद वाजिद ने। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में श्रोताओं अब लीजिए सुनिए अनु मलिक के संगीत निर्देशन में राहत तिंदौरी का लिखा ये गाना, रूप कुमार राठौर, हेमा सरदेसाई और सपना अवस्थी की आवाजों में। फिल्म का नाम है हीरो हिंदुस्तानी।

0: आप सुन रहे थे रहना है तेरे दिल में, फिल्म का गाना रूप कुमार राठौर की आवाज़ में, बोल समीर के थे, संगीत से सजाया था हैरिस जयराज ने। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में वक्त है छोटे से अंतराल का, अभी हाजिर होते हैं।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: मौसम और जलवायु, यह यूनेस्को का संदेश है। क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? आइए हम मौसम और जलवायु के बीच अंतर के बारे में जानते हैं। मौसम होता है रोजमर्रा की स्थिति, जैसे आज बारिश हो रही है या कल धूप निकलेगी। लेकिन जलवायु का दायरा बड़ा होता है, यह 30 सालों में मौसम का सामान्य स्तर होता है। मौसम और जलवायु दोनों को मापने के लिए एक ही उपकरण का उपयोग किया जाता है, तापमान, बारिश, हवा, आर्द्रता और दबाव। लेकिन हम मौसम का अनुमान सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही लगा सकते हैं, जबकि जलवायु हमें दीर्घकालिक रुझान देखने में मदद करती है। यहाँ एक रोचक तथ्य है, दुनिया का सबसे पुराना तापमान रिकॉर्ड नेदरलैंड्स में बना, वो भी सन 1700 में।
5: हेलो डॉक्टर,
6: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
5: हेलो डॉक्टर,
6: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 MHz पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ। हेलो डॉक्टर,
0: फिल्म संगीत के कार्यक्रम में अंतराल के बाद सभी श्रोताओं का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत।

आप सुन रहे थे अग्निपथ फिल्म का ये गाना रूप कुमार राठौर की आवाज में। गीत रचना अमिताभ भट्टाचार्य के थे और संगीत से सजाया था अजय अतुल ने। कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए रूप कुमार राठौर और लता मंगेशकर की आवाजों में जावेद अख्तर का लिखा ये गाना। संगीत से सजाया है मदन मोहन ने। फिल्म का नाम है वीर ज़ारा।

श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए अनु मलिक के संगीत निर्देशन में जावेद अख्तर का लिखा गाना, रूप कुमार राठौर की आवाज में, बॉर्डर फिल्म से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए, अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में अंतरता रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह ऐतिहासिक अवसर है, देश की जनता का उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के कार्यकाल में शासन, आर्थिक दृढ़ता और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में दूरगामी प्रगति हुई है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। गृहमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनके खोए हुए आत्मसम्मान को बहाल करना प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य, दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है।
2: भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं और विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, हम सभी 140 करोड़ देशवासी उस संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
0: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के हर वर्ग के कल्याण और विकास के लिए काम किया है, इसमें विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण उल्लेखनीय है।
3: पिछले 12 सालों में जो उन्होंने कई कीर्तिमान बनाए, उसमें सबसे बड़ा विषय आज हमारा गरीब हमारा परिवार के मुख्य धारा के साथ जोड़कर काम कर रहा है, देश के विकास में काम कर रहा है। आज हमारा युवा पूरी तरह से उत्साह के वातावरण में, मैं मानता हूं कि 2013-14 का जो समय था एक निराशा का वातावरण में हमारा युवा था, आज हमारा युवा अपने आप को उत्साह और उम्मीद और आकांक्षाओं के साथ मोदी के साथ चलने को तैयार।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित किया है।
4: मोदी जी ने लगातार देश सेवा में अपना जीवन अर्पित किया। देश सेवा में जिन्होंने एक दिन भी बिना कोई अवकाश लिए देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया और उनका जो योगदान विकसित भारत के लिए है, देश का हर नागरिक आज दिल की गहराई से उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ।
0: विश्व नेताओं ने भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे और त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेसर ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी नेतृत्व, ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से सशक्त भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 12 वर्ष भारत के गौरव की पुनर्स्थापना, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और गुलामी की मानसिकता से देश को मुक्त करने के लिए समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश की सीमाएं अधिक सुरक्षित हुई, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण पाया और आतंकवाद को करारा जवाब दिया गया। प्रिया के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी के दशकों के समर्पित जनसेवा और नेतृत्व का सशक्त प्रमाण है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रूप से पद पर बने रहने पर बधाई दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्ताव में श्री मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की निरंतर सेवा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा की गई। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 2169 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद मेट्रो के चरण 2A के विस्तार को मंजूरी दी। उन्होंने बताया कि इसमें 5 स्टेशन वाला 6 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर भी शामिल है।
6: आज कैबिनेट में 3 फैसले लिए गए। एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और 2 फैसले अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके 2 फैसले लिए गए। अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर और केंद्रीय सरकारी आवासीय परिसर को भी मंजूरी दी।
6: अमरावती नया शहर बन रहा है तो नए शहर में कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, इनको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा। बिखरे बिखरे से ऑफिसेज से काम करने में तकलीफ होती है, इंटीग्रेशन होने से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो पाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स अमरावती में बनेगा। इसके लिए करीब 5.5 एकड़ की जमीन राज्य सरकार ने दी है और 23 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्टेड एरिया बनेगा। लोकेशन ये मैप में है सारा। 2 प्रोजेक्ट्स हैं, एक तो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है।
0: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता के भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है, जिससे मनरेगा से विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
7: इस साल बजट में 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था नरेगा चलाने के लिए। नियमों को अंतिम रूप देने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास का जो महायज्ञ ग्रामीण भारत के गांवों का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन कुल मिला के है 95,692 करोड़ का।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग के 11वें शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री की टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। ये विषय प्रत्येक भारतीय के कल्याण और विकास पर केंद्रित है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति कर रही है। श्री पुरी ने कहा कि एलपीजी कनेक्शनों को पीएनजी कनेक्शनों में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं।

0: ने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
1: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठाकर कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है, तो एकदम हमने उस पर क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना सीएनजी की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं, इनफैक्ट एलपीजी के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू पीएनजी कनेक्शन।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि रिजर्व बैंक इस महीने की 30 तारीख से कागजी नोटों को बंद करके उनके जगह प्लास्टिक नोटों का प्रचलन शुरू कर देगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच रात भर सैन्य हमले हुए। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका के केंद्रीय कमान ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर कल होर्मुज जलडमरु मध्य के पास अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में ईरान के खिलाफ आत्मरक्षा में हमले किए गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि चालक दल के दोनों सदस्य सुरक्षित हैं। ईरान की ओर से भी तुरंत प्रतिक्रिया सामने आई। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने बहरीन में अमरीका के पांचवे बेड़े और कुवैत में अली अल सलेम हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले का दावा किया। साथ ही जॉर्डन में अल अजराक हवाई अड्डे पर लंबी दूरी की मिसाइल से हमला किया गया। जॉर्डन के सशस्त्र बलों ने पुष्टि की है कि उन्होंने अजराक क्षेत्र की ओर दागी गई सभी 5 ईरानी मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। गार्ड कोर ने दावा किया कि उन्होंने क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर 21 लक्ष्यों को निशाना बनाया है। हालांकि इस आंकड़े की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक आकलन से संकेत मिलता है कि लगभग सभी ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को सफलतापूर्वक रोक दिया गया था और तत्काल किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। पिछले सप्ताह अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ युद्ध विराम अब गंभीर स्थिति में है। लेबनान में हिजबुल्ला द्वारा उत्तरी इसराइल में मिसाइल हमले के बाद इजरायली बलों ने बैरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने भी इजरायली हवाई अड्डे पर हमले का दावा किया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निजी दूत वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापक समझौते को लेकर अमरीकी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए वॉशिंगटन में हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: अफगानिस्तान के कुनार खोस्त और पक्तिका प्रांत में पाकिस्तानी सेना के हवाई हमले में 13 लोग मारे गए। इनमें ज्यादातर बच्चे थे। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्ला मुजाहिद ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि नागरिकों के घरों को निशाना बनाकर कल रात ये हमला किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। उन्होंने इसे मानवीय अपराध और आक्रामकता का कृत्य बताया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अगले 3 दिन में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार बुलेटिन आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 2:30 हो रहे हैं। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी देर में।
4: हमारा पर बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
5: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
6: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
7: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

तुम मिले तो क्यों लगा मुझे खुद से मुलाकात हो गई। कुछ भी तो कहा नहीं मगर जिंदगी से बात हो गई।

जगजीत सिंह के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे इंदिवर के बोल। जगजीत सिंह की आवाज में प्रेम गीत फिल्म से। कार्यक्रम के आखिर में श्रोताओं लीजिए सुनिए खयाम के संगीत निर्देशन में मीर तकी मीर की लिखी यह गजल, लता मंगेशकर की आवाज में बाजार फिल्म से। मिलना था इत्तेफाक, बिछड़ना नसीब था, वो उतना दूर हो गया जितना करीब था।

श्रोताओं, इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हमारे इसी सभा में दिन के 3:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत के तहत अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाजों में गजलें। दिन के 2:55 हो जाते हैं। अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से। आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए।

0: समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में निरंतर सेवा, समर्पण और सुशासन का ऐतिहासिक कीर्तिमान बनाया है। प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने 4,399 दिन के कार्यकाल में देश के समग्र विकास को रफ्तार दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री के तौर पर श्री मोदी के सेवा करने के खास सम्मान के लिए उन्हें बधाई दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह ऐतिहासिक मौका भारत के लोगों का श्री मोदी के नेतृत्व में जताए गए अटूट भरोसे और विश्वास का सबूत है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज सम्मान प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया गया। मंत्रियों ने मेज थपथपाकर और तालियां बजाकर देश सेवा की इस अभूतपूर्व यात्रा की सराहना की। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि वर्षों से देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा का एक बहुत बड़ा विषय उठता था, नक्सलवाद। आज भारत उस नक्सलवाद से भी मुक्त हुआ है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री का विश्वास है कि आत्मनिर्भर हुए बिना भारत विकसित नहीं बन सकता है।
2: प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र प्रथम के भाव से बड़े निर्णय लिए, ऐसे निर्णय जो आज वर्षों की तपस्या के बाद आज सच्चाई बन चुके हैं, जैसे जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाना, जीएसटी लागू करना, वन रैंक वन पेंशन लागू करना, गरीबों को 10% आरक्षण देना, परमाणु क्षेत्र में रिफॉर्म के लिए शांति कानून। माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय सुरक्षा को भी एक नया आयाम दिया है, नई बुलंदी दी है। आतंकवाद के विरुद्ध कठोर कदम उठाने का श्रेय उनके नेतृत्व को ही जाता है।
1: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। अनुज कुमार सिन्हा, तनुज खत्री, अमूल्य नीरज खलखो और शिवपूजन पाठक की सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति हुई है। राज्यपाल ने इन नियुक्तियों को कुछ शर्तों के साथ अनुमोदित किया है। श्री गंगवार ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि झारखंड राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति शीघ्र सुनिश्चित की जाए, ताकि आयोग का कार्य सुचारू तरीके से संचालित हो सके। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। परिमल नाथवाणी के राज्यसभा नामांकन पर संशय बरकरार है। एनडी गठबंधन के दोनों प्रत्याशियों का नामांकन जांच के बाद कल जहां वैध पाया गया, वहीं श्री नाथवाणी के नामांकन पर आपत्तियों की वजह से संशय की स्थिति बनी हुई है। इधर राज्यसभा चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया है। कांग्रेस ने परिमल नाथवाणी प्रकरण पर आज विधानसभा में प्रदर्शन किया, वहीं भाजपा के नेता और कार्यकर्ता भी विधानसभा के पास पहुंचे और तंत्र की कार्यशैली पर सवाल उठाए। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को संवैधानिक संस्थानों पर विश्वास नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरह विधानसभा के अंदर प्रदर्शन किया है वह अमर्यादित तथा नियमों के विरुद्ध है, जिस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। श्री साहू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी राज्यसभा की चुनावी प्रक्रिया बाधित करना चाहती है।
3: कांग्रेस पार्टी को लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर विश्वास ही नहीं, आज इस प्रकार के आंदोलन को करके संवैधानिक कार्यों में बाधा डालने का काम किया। मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष से छोड़ने के नाते विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह करना चाहता हूँ कि वैसे लोग जिन लोगों ने संवैधानिक प्रक्रिया पर बाधा डालने का प्रयास किया है तुरंत एफआईआर करके उनको जेल भिजवाने का काम करें। कांग्रेस पार्टी
1: झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने आज विभिन्न मांगों को लेकर रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास के घेराव की कोशिश की। हालांकि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए आंदोलनकारियों को मोरहाबादी क्षेत्र में ही रोक दिया है। इस दौरान आंदोलनकारी ने राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और संघर्ष तेज करने की चेतावनी दी। मोर्चा के आंदोलन को देखते हुए मुख्यमंत्री आवास और उसके आसपास के इलाकों में रैपिड एक्शन पुलिस सहित अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। और अब मौसम का हाल। राज्य में मौसम के बदले मिजाज की वजह से आने वाले दिनों में तापमान में करीब 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य के कई क्षेत्रों में 16 जून तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: .4 MHz पर आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से दिन के ठीक 3 बजे हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका बहुत बहुत उमंग कार्यक्रम में। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलव दास जयदास देवेश दास धनवंतीन बाई और मोती

0: बाई मणिपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
1: सुख एवं समृद्धि के लिए प्रकृति से प्रेम करना आवश्यक है।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। संदेश छोटा जरूर है लेकिन सब कुछ कह जाता है। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला हमें संदेश मिला है नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से, बबलू साहू, जामुन देवी साहू और बेबी आराध्या साहू जी का।
1: जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और उमा राज।
0: और पुराना तालाब डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी, असमा नाज अंसारी और सलमा सुल्तान।
1: यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से।
0: और भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। तो अब प्रस्तुत है हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी। तो विमलेश जी, कल हमने चर्चा की थी जापान के चाय समारोह की
1: जी।
0: तो आज
1: अजीत जी, जब चाय की बात कल हो ही गई है तो क्यों ना बात करें आज कॉफी की। लेकिन याद रखिए, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की प्रसिद्ध पेय परंपराओं की
0: जी। विमलेश जी, हम परंपराओं पर ही बात करेंगे
1: जी।
0: कल हमने जापान की बात की थी जो एशिया महादेश में है, तो क्यों ना आज चलें एक और महादेश, अफ्रीका।
1: लेकिन बात तो हम कॉफी की कर रहे थे ना
0: जी। बिल्कुल, आज हम चर्चा करेंगे अफ्रीका के एक देश इथियोपिया के कॉफी समारोह की
1: जी।
0: इसे इथियोपियन कॉफी फेस्टिवल भी कहते हैं।
1: अजीत जी, कॉफी की खोज भी तो इथियोपिया में ही हुई थी।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो एक कहावत है ना, जो बोले सो कुंडा खोले
1: जी।
0: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि कॉफी की खोज कैसे हुई थी
1: जी। बताती हूँ श्रोताओं, लगभग 9वीं शताब्दी की बात है। एक प्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार इथियोपिया के एक गांव में कुछ चरवाहे पास की घाटी में बकरियां चराने के लिए गए थे। उनमें कलड़ी नाम का एक चरवाहा था। उसने देखा कि कुछ बकरियां गायब हैं।
0: तो क्या हुआ फिर?
1: वो उन्हें ढूंढता हुआ जब घाटी के दूसरे छोर पर पहुंचा तो क्या देखता है कि उसकी बकरियां एक विशेष पौधे के लाल फलों को खाने के बाद बहुत सक्रिय हो गई हैं। अजीत जी, अब आप आगे बताइए ना।
0: बताता हूँ। तो क्या हुआ श्रोताओं कि चरवाहे ने जब उस फल को चखा ना, तो उसे भी थोड़ी ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव हुआ
1: जी।
0: वो उन फलों को अपने धार्मिक अगुओं के पास ले गए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस फल को भूनकर एक पेय बनाया
1: जी।
0: और ऐसा कहते हैं कि इस पेय ने उन धार्मिक अगुओं को रात्रि प्रार्थना के समय जगे रहने में थोड़ी मदद की
1: जी।
0: तो यही पेय आगे चलकर कॉफी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वैसे इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ये एक लोक कथा है,
1: लेकिन ये तथ्य है कि कॉफी की खोज इथियोपिया में ही हुई थी। तो श्रोताओं, अब हम चर्चा करेंगे इथियोपिया के कॉफी समारोह की। इस समारोह को स्थानीय भाषा अम्हारिक में बुना कहा जाता है। जापान की तरह ही ये मात्र कॉफी पीने की ही प्रक्रिया नहीं है, लेकिन ये सम्मान, मित्रता और सामुदायिक जुड़ाव का प्रतीक है।
0: तो अब जानते हैं श्रोताओं कि ये समारोह होता कैसे। समारोह शुरू होने से पहले कमरे या आंगन में ताजी घास और पट्टियां बिछाई जाती
1: जी।
0: फिर क्या होता है विमलेश?
1: सुगंधित धूप जलाई जाती है। अतिथियों के आने के बाद कच्ची कॉफी बीन्स को कोयले की आंच पर धीरे धीरे भुना जाता है ताकि उसकी खुशबू अतिथियों को और अधिक आकर्षित करे।
0: वाह वाह जी।
1: कॉफी बीन्स की खुशबू को फैलाना स्वागत और सम्मान का संकेत माना जाता है।
0: और फिर ऐसा होता है श्रोताओं कि भुनी हुई बीन्स को परंपरागत लकड़ी की ओखली में पीसा जाता है
1: जी।
0: और उन्हें मिट्टी के बर्तन में उबाला जाता है। इस विशेष मिट्टी के बर्तन को ज़ेबेना कहते हैं
1: जी।
0: फिर कॉफी परोसी जाती है।
1: खास बात यह है कि कॉफी 3 चरणों में परोसी जाती है। सबसे पहले सबसे अधिक गाढ़ी कॉफी परोसी जाती है, जिसे खामोशी से पिया जाता है। उसके बाद दूसरा प्याला दिया जाता है
0: जो थोड़ी हल्की होती है। ये इस बात का संकेत है कि अब बातचीत की जा सकती है
1: जी।
0: इस दौरान लोग बातचीत करते हैं, रिश्ते तय होते हैं और यहाँ तक कि टूटे हुए संबंध भी जुड़ जाते हैं।
1: और अंत में तीसरा प्याला दिया जाता है जो आशीष और शांति का प्रतीक माना जाता है। बिना तीसरा प्याला पिए उठना अशिष्टता मानी जाती है। और हाँ, ये समारोह 1 से 2 घंटे तक चलता है। इस दौरान भुने हुए चने या पारंपरिक हल्के नाश्ते भी दिए जाते हैं।
0: तो श्रोताओं, इथियोपिया में कॉफी समारोह में किसी को आमंत्रित करना मित्रता और सम्मान का चिन्ह माना जाता है
1: जी।
0: इथियोपिया के कॉफी समारोह में देश विदेश से भी लोग आते हैं और इथियोपियाई संस्कृति की भावना को समझते हैं। और हाँ, राष्ट्र अध्यक्षों का स्वागत कॉफी से करना इथियोपिया की परंपरा है
1: जी। हाँ श्रोताओं, तो कैसी लगी इथियोपिया की शानदार कॉफी समारोह की परंपरा, जरूर बताइएगा।
0: और अब आज का प्रश्न सुनिए आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और हाँ,
1: आप अपने संदेश और प्रश्न

0: प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है भारत तू है हमको प्यारा।
0: ये कार्यक्रम गीत संगीत प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भारत भूमि का गरिमामय उल्लेख मिलता है। कार्यक्रम में भारत की सांस्कृतिक, भौगोलिक, सामाजिक और भाषाई विविधता को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हुए देशभक्ति का आह्वान किया गया है।

भारत तू है सबसे प्यारा। प्यारे बच्चों, अभी आपने सुना ये सुंदर गीत, आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। आपने आज अपने देश भारत के बारे में बहुत सी अच्छी बातों को सुना। आपने सुना भारत की नदियों, समुद्रों, अन्न, फल और फूलों के बारे में। सच में कितना सुंदर है ना हमारा देश। अब जरा सोचिए, अपने देश भारत की और कौन कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं? सोचिए और हमें लिख भेजिए। आप हमें audio@ciet.nic.in पर अपना संदेश भेज सकते हैं। अब एक और बात, जरा बताइए कि क्या आपने भारत पर कुछ और भी कविताएं सुनी हैं? यदि सुनी है तो उन कविताओं का संकलन कीजिए और अपने मित्रों के संग मिलकर उसका पाठ कीजिए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, गायन स्वर नेहा और बच्चे, संगीतकार हरभजन सिंह, निर्माण सहयोग कुसुम लता, मार्गदर्शन अजीत होरू तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। भारत तू है हमको प्यारा, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए एनसीईआरटी असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है पेरियार नदी।
1: इस कार्यक्रम में दक्षिण भारत की पेरियार नदी, उसकी पारिस्थितिकी और जनजीवन में उसके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में बताया गया है। कार्यक्रम में दक्षिण भारत के लोक संगीत और संस्कृति की भी झलक मिलती है।

0: केरल प्रदेश में थेकडी नामक स्थान अपने प्राकृतिक वैभव के लिए खास तौर से जाना जाता है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली, भांति भांति के पेड़ पौधों की सुगंध से भरा पूरा वातावरण, पर्वतों की दर्शनीय कतारें और इस जादुई मंजर को और भी अधिक लुभावना बनाती है पहाड़ों के बीचों बीच बनी पेरियार झील। चारों ओर का इलाका पेरियार टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। पेरियार यूं तो टाइगर रिजर्व है, यहां बाघों को संरक्षित किया गया है, मगर ये अपने हाथियों और तरह तरह के दूसरे पशु पक्षियों के लिए भी जाना जाता है, जिन्हें देखने के लिए यहां सैलानियों की आवाजाही बनी रहती है। इन्हीं सैलानियों में दिल्ली की रहने वाली सुनीता भी हैं, जो अपनी केरल की सहेली लक्ष्मी के साथ यहां घूमने आई हैं। आइए चलते हैं उनके साथ पेरियार की यात्रा पर।
1: लक्ष्मी लक्ष्मी, वो देखो हाथी, लगता है अपने परिवार के साथ झील में नहाने आया है।
2: अरे
1: और देखो उसका वो छोटा सा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है। चलो चलो पास चलकर देखते हैं।
2: हाँ हाँ सुनीता, मगर जरा संभल कर चोट मत खा जाना।
1: अच्छा सुनो, जरा मुझे अपना कैमरा देना।
2: हाँ?
1: देखो झील के बीचों बीच सूखे पेड़ों पर बैठी ये चिड़िया कितनी सुंदर लग रही है। मैं जरा इनकी फोटो लेती हूँ। हाँ
2: हाँ हाँ सुनीता, ये लो, ये पकड़ो पकड़ो।
1: क्लिक। लक्ष्मी, इस पेरियार लेक के अंदर से ये सूखे पेड़ कैसे निकल रहे हैं?
2: देखो सुनीता, सन 1895 के आसपास यहाँ बहने वाली पेरियार नदी और उससे मिलने वाली एक छोटी नदी मूलायार पर बांध बनाया गया।
1: अच्छा।
2: जिसे मूला पेरियार बांध कहते हैं। और उसी की वजह से यहाँ पहाड़ों के बीच का जंगल पानी में डूब गया और उसने एक झील का रूप ले लिया।
1: ओ, तो ये पेड़ वो ही पेड़ है जो एक समय झील में डूब

0: गए, फिर धीरे धीरे सूख गए।
1: हाँ, और अब जब इनमें तरह तरह के पक्षी झुंड बनाकर बैठते हैं तो नजारा बहुत ही लुभावना हो उठता है।
0: हाँ, ये तो दिख ही रहा है।

0: वैसे ये बताओ लक्ष्मी, इसे टाइगर रिजर्व कब बनाया गया?
1: इस बारे में तो मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है। अच्छा चलो हम उनसे पूछते हैं, वो यही के कर्मचारी लगते हैं।
0: हाँ चलो
1: चलो। एक्सक्यूज मी।
2: जी हाँ कहिए।
1: जी मैं लक्ष्मी हूँ और ये मेरी दोस्त सुनीता।
0: नमस्ते।
2: नमस्ते।
1: हम लोग यहाँ घूमने आए हैं, आप हमें यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे?
0: हाँ
2: जी हाँ जी हाँ, क्यों नहीं, आपके सवालों के जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा।
1: जी
2: वैसे मैं अपना परिचय दे दूँ, मेरा नाम कमल कुमार है और मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ।
0: जी बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। कमल जी हम ये जानना चाहते हैं कि ये जगह टाइगर रिजर्व कब बनी?
2: देखिए 1933 में इस जगह को पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर स्थापित किया गया था और 1978 में इसे केरल का एकमात्र टाइगर रिजर्व घोषित किया गया।
0: अच्छा कमल जी,
2: जी
0: क्या इस टाइगर रिजर्व को पेरियार नाम पेरियार नदी की वजह से ही दिया गया है?
2: असल में सुनीता जी, इस जगह की खूबसूरती, यहाँ का वन्य जीवन, ये सब पेरियार नदी की बदौलत ही है।
0: ओह

0: ये जगह उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जलवायु के क्षेत्र में आती है। यहाँ खूब बारिश होती है। और इसीलिए यहाँ के जंगल हरे भरे रहते हैं। यही कारण है कि यहाँ प्राणियों और वनस्पतियों की 1000 से ज्यादा प्रजातियां हैं।
1: कमल जी, वैसे पेरियार नदी तमिलनाडु से निकलती है ना?
2: हाँ सुनीता, ये निकलती तो तमिलनाडु से ही है, मगर इसका कोई 60 किलोमीटर का हिस्सा ही तमिलनाडु में पड़ता है
3: जी।
1: अच्छा,
2: बाकी करीब 240 किलोमीटर की यात्रा ये केरल के अपने घुमावदार रास्तों पर ही करती है।
1: ओ।
2: ये केरल की सबसे लंबी नदी है और मध्य केरल की लाइफ लाइन के तौर पर जानी जाती है।
3: बिल्कुल अच्छा? ठीक कहा आपने।
2: क्योंकि इससे पेरियार टाइगर रिजर्व को ही नहीं बल्कि केरल के एक बहुत बड़े हिस्से को मदद मिलती है, सहारा मिलता है।
1: अच्छा, तो तमिलनाडु में ये निकलती कहाँ से है लक्ष्मी?
2: भाई वो जगह तो मैंने देखी नहीं।
3: मैंने देखी है काफी पहले। वाह, क्या सुंदर दृश्य था उस जगह का। वैसे तमिल तो मुझे आती नहीं, मगर कहते हैं तमिल में पेरियार का मतलब होता है बड़ी नदी।
1: अच्छा।
3: और ये बड़ी नदी यानी पेरियार तमिलनाडु की शिवगिरी पहाड़ियों से समुद्र तल से कोई 1800 मीटर की ऊंचाई से नीचे आती है।
1: अच्छा।

अक्सर जब उन पहाड़ियों को छूते हुए बादल गुजरते हैं ना, तो उनके बीच से निकलती हुई पेरियार नदी को देखना एक नायाब मंजर होता है।

0: कमल जी, आपने तो मुझे पेरियार के बारे में बताकर मेरी उत्सुकता को बहुत बढ़ा दिया है। अब तो मैं इस नदी के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहूंगी।
1: अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल भाई, मगर अब तो शाम हो चली है। अच्छा, वैसे आप लोग ठहरे कहाँ हैं?
2: यही रेस्ट हाउस में।
1: रेस्ट हाउस में
2: जी?
1: तो ठीक है, कल सुबह मैं ठीक 8 बजे आपके पास पहुँचूंगा।
0: हाँ, ये ठीक रहेगा। तो चलिए कल मिलते हैं। ओके
1: ओके,
0: बाय
1: बाय।
0: ओके।

0: सुनीता, 8 तो बजने वाले हैं, कमल जी आते ही होंगे।
1: हाँ।
0: अरे लगता है कमल जी आ गए।
2: गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी।
0: गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
2: गुड मॉर्निंग।
3: आइए आइए, स्वागत है आपका।
2: तो भाई चलिए, मेरा ख्याल है यहीं लॉन में बैठते हैं।
0: जी
2: आइए, तशरीफ रखिए। हाँ तो सुनीता जी, आप पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप पेरियार नदी के बारे में?
3: कमल जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि पेरियार की केरल के लिए क्या अहमियत है।
2: ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसका जवाब आपकी दोस्त लक्ष्मी जी दें, क्योंकि ये केरल की रहने वाली है।
0: हाँ, क्यों नहीं। कमल जी, बचपन तो मेरा केरल में बीता था, मगर बाद में मैं दिल्ली चली आई।
2: अच्छा।
0: मगर अक्सर केरल आना होता रहा, लेकिन हाँ, जैसा कि पिताजी कहते हैं, उसके अनुसार तो एक समय पेरियार की जो अद्भुत खूबसूरती हुआ करती थी ना, वो अब लुट चुकी है।
2: मतलब
0: ये कि इस नदी में इस कदर प्रदूषण बढ़ चुका है कि इसके अस्तित्व के लिए भी खतरा पैदा हो गया है।
2: बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
3: अच्छा, अब ये बताइए, हम इस समय थेकडी में है, अब यहाँ से आगे ये नदी किन किन खास स्थानों से होकर जाती है?
2: देखिए, आगे जाकर घुमावदार रास्तों से गुजरते हुए ये नदी वांडी पेरियार की गहरी घाटी में पहुंचती है।
3: वांडी पेरियार?
2: हाँ, ये केरल का एक जाना माना व्यापार केंद्र है, जो चाय, कॉफी और काली मिर्च की खेती के लिए जाना जाता है, और यहाँ कई किस्म के फूलों के खूबसूरत बागीचे भी देखे जा सकते हैं।
3: अच्छा अच्छा, वैसे मैंने सुना है यहाँ इलायची की खेती भी खूब होती है।
2: हाँ, बिल्कुल ठीक सुना है आपने। थेकडी से कोई 30 किलोमीटर की दूरी पर वांडन मेडू नाम की जगह है
3: जी,
2: जो दुनिया का सबसे मशहूर इलायची का व्यापार केंद्र है।
3: अच्छा।
2: यहाँ इलायची के बागों को देखने का अपना एक अलग मजा है।
3: ये केरल भी क्या जगह है, चाय, कॉफी, काली मिर्च, इलायची, इस सब की खेती होती है यहाँ पर, है ना?
0: यही नहीं, पेरियार नदी के आसपास केला, नारियल, धान और रबर भी खूब उगाए जाते हैं।
2: हाँ, ठीक कहा आपने लक्ष्मी जी। वांडी पेरियार के बाद अपने घुमावदार रास्ते में पेरुमथुराई और कटप्पना नदियों से मिलते हुए ये इडुक्की पहुँचती है।
3: अच्छा।
2: और इडुक्की के बाद इसमें नेरियामंगलम के पास ईडा मलयार नामक ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी मिलती है, और फिर ये नदी पेरियार बैराज से होते हुए भूथाथन केतु बांध में जाती है। पेरियार के आसपास की पहाड़ियों पर कई आदिवासी जनजातियां सदियों से रह रही हैं, जैसे मन्नन मलयालम, उर्ली, मुथवन, कादर वगैरह, और इन सबका पालन पोषण भी आज तक पेरियार ने ही किया है।
0: हाँ, और अब ये आदिवासी मुनार, कट्टाबाना, इलेपारा और वाडी पेरियार की चाय, कॉफी, रबर रीक और इलायची वगैरह से लदी पहाड़ियों पर खेती का काम करते हैं।
2: हाँ।

अंतिम संस्कार किया था। इसीलिए ये परंपरा चली आ रही है कि हिंदू इस नदी के जल में अपने पुरखों को श्रद्धांजलि देने आते हैं और इस कार्य के लिए पेरियार के तट पर बना चिलामत्तम का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार या अस्थि विसर्जन के लिए लोग बड़ी तादाद में आते हैं।

पेरियार के तट पर बसा मलयत्तूर ईसाइयों का बहुत मशहूर तीर्थ है। कहा जाता है कि ईसा मसीह के शिष्य संत थॉमस यहां आए थे और इस जगह को पवित्र किया था। लेकिन यहां सभी धर्मों के लोग आते हैं और मलयत्तूर की पहाड़ियों की कठिन चढ़ाई करते हैं।

0: मलयत्तर और कलड़ी से होकर अलवाई पहुंचने के बाद पेरियार दो भागों में बट जाती है।
1: अच्छी।
0: पहली मंगल पूजा शाखा महिला चलागुड़ी नदी से मिलकर लक्षद्वीप सागर में चली जाती है
2: और दूसरी इलूर की औद्योगिक पट्टी से होती हुई अरब सागर में समा जाती है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने कमल जी?
0: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने लक्ष्मी जी। भारी प्रदूषण की वजह से पेरियार की मछलियों की कुछ अहम प्रजातियां तो बिल्कुल गायब ही हो चुकी हैं।
1: ओह, तो इसका मतलब पेरियार के साथ भी बिल्कुल वही हो रहा है जो देश की दूसरी नदियों के साथ हो रहा है?
0: जी हाँ, मगर दुनिया में बर्बाद करने वाले हैं तो बनाने वाले भी हैं। इसीलिए बहुत से ऐसे लोग सामने आए हैं जो पेरियार को उसकी पुरानी खूबसूरती, निर्मलता और खुशहाली वापस दिलाने के मुहिम में लगे हुए हैं।
1: वैसे सच कहें तो ये सब सुनकर मेरी भी इच्छा हो रही है कि पर्यावरण के लिए कुछ करूं।
2: तो करो ना सुनीता।
1: तो चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं, पेरियार से।
0: बिल्कुल।
3: नेक काम में भला देरी किस बात की, और फिर अगर वो काम पर्यावरण की बेहतरी से जुड़ा हो तब तो उसे आज और अभी से ही शुरू कर देना चाहिए। सुनीता, लक्ष्मी और कमल ने भी ऐसा ही किया है, और अब बारी आपकी और हमारी है। चलिए हम भी पर्यावरण को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटें, आज से और अभी से। हम तो तैयार हैं, आप भी तैयार हैं ना?
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम पेरियार नदी। आशा है कि यह कार्यक्रम भी आपको जरूर पसंद आया होगा। लेकिन श्रोताओं, अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा समय भी समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग।
6: आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आपने ट्यून किया है FM के 102.4 MHz पर आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। दिन के 3:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में श्रोताओं लीजिए सुनिए अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाजों में चंद गजलें।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, हमारी इसी सभा में शाम 4:02 पर आप सुनेंगे नाटक सफर। दिन के तीन बजकर पैंतालीस मिनट हुआ जाते हैं। लोकगीत का कार्यक्रम, झारखंड के लोकगीत का कार्यक्रम हमारे श्रोता सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

झारखंड के लोकगीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नीलू का जोहार। आज के कार्यक्रम में आप सुनेंगे कुरमाली लोकगीत। कलाकार हैं पटेल महतो।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 4 बजने वाले हैं। अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से। आप सुनेंगे समाचार मुख्यांश, कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में निरंतर सेवा, समर्पण और सुशासन का ऐतिहासिक कीर्तिमान बनाया है। प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने 4,399 दिन के कार्यकाल में देश के समग्र विकास को रफ्तार दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय मंत्रियों ने प्रधानमंत्री के तौर पर श्री मोदी के सेवा करने के खास सम्मान के लिए उन्हें बधाई दी है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। अनुज कुमार सिन्हा, तनुज खत्री, अमूल्य नीरज खलखो और शिवपूजन पाठक की सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति हुई है। राज्यपाल ने इन नियुक्तियों को कुछ शर्तों के साथ अनुमोदित किया है। एनडीए समर्थित राज्यसभा के उम्मीदवार परिमल नाथवाणी का नामांकन मंजूर कर लिया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर ने कांग्रेस विधायक के आपत्तियों के बाद उनका नामांकन होल्ड पर रखा था। हालांकि दो दिनों तक चले विवाद के बाद आखिरकार परिमल नाथवाणी का नामांकन मंजूर कर लिया गया। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी द्वारा बालू उत्खनन पर रोक लगते ही गुमला जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। उपायुक्त के आदेश पर आज जिला खनन टास्क फोर्स द्वारा बालू घाटों और भंडारण स्थलों पर व्यापक छापेमारी अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान नागफेनी नदी घाट पर ट्रैक्टरों के माध्यम से अवैध रूप से बालू का उत्खनन कर उसका परिवहन करते हुए पाया गया। इस मामले में खान निरीक्षक ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। राज्य में मौसम के बदले मिजाज की वजह से आने वाले दिनों में तापमान में करीब 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य के कई क्षेत्रों में 16 जून तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 4:02 हुए हैं, 2 मिनट हो चुके हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए नाटक सफर। लेखक हैं श्री रंगम एस राव और निर्देशन किया है प्राण किशोर ने।

मैंने अपनी किरणों का व्यापार किया, अपना नूर बांटता रहा, और अब मैं एक हार हूँ। तारीख सर दर यख बसता, मेरे सीने पे अंधेरों का रक्स होता है, रोती चीखती हवाओं का शोर बुलंद होता है।

0: कहाँ गए रसो?
1: अभी आ रही हूँ। क्यों?
0: ये तो बताओ, आज छुट्टी के दिन तुम्हारा क्या प्रोग्राम है?
1: प्रोग्राम बताऊं तो आग लग जाएगी बदन में, और तुम अपनी पुस्तरी को भूल भाल कर मेरा गला घोंट दोगे। या अगर ऐसा न भी कर सको तो कम से कम सजा यही दोगे कि मुझे इस घर के वीराने से बाहर कर दोगे।
0: क्या प्रोग्राम है?
1: प्रोग्राम क्या हो सकता है आज? इरादा है कि दिन भर घर में बैठा जाए।
0: क्या कहा? घर में बैठने का इरादा है? कमाल है, आज तुम अपनी मर्जी से घर में रुकने का इरादा किए बैठी हो।
1: तुम्हारी इन कड़वी कसैली बातों से ही तो मैं घर से अक्सर बाहर रहती हूँ, और तुम्हारा मुंह भी नहीं देखना चाहती हूँ। लेकिन क्या करूँ, एक भरम कायम रखना है घर गृहस्थी का, बच्चों की जिंदगी का। फिरोज चालू,
0: कहाँ रहे सब?
1: आज हमारी शादी की सालगिरह है ना?
0: अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। कौन सी तारीख थी वो भला?
1: आज ही की तारीख थी फिरोज।
0: हाँ, आज ही की तारीख थी रसो, आज ही की तारीख। और 15 साल पहले आज ही के दिन तो मेरी जिंदगी में आई थी, और मैंने अपने चमकते दमकते नूरानी सूरज की किरणें तुम्हारे कदमों पर छावर की थी। अपने सूरज का सारा नूर तुम्हें सौंप कर मैंने उसमें गहन लगा दिया था। रसो, तुम क्या थी, क्या हो गई? मैं क्या था, क्या बन गया?
1: काश बच्चियां भी हमारी इसी खुशी में शामिल होने के लिए यहाँ होती।
0: हाँ, और नहीं तो क्या?
1: बुरा हो इन स्कूल वालों का, इन्हीं दिनों समर कैंप में ले गए उन्हें। फिरोज, क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते कि उन्हें सिर्फ 2 घंटे के लिए गुलमर्ग से ले आओ?
0: नहीं रसो, ये तो स्कूल के डिसिप्लिन के खिलाफ होगा।
1: फिर उनके बगैर सालगिरह क्या खाक मनाई जा सकेगी?
0: सालगिरह, पता नहीं आज कौन सा चाल बिछाने वाली है ये

0: ससू, तुम अब मुझे ठग नहीं सकती।
1: हाँ हाँ वो तो खैर ठीक है, लेकिन अब इस मजबूरी का भी तो ख्याल करो ना।
2: मजबूरी मजबूरी मजबूरी, आखिर कोई कहाँ तक मजबूर रहे?
1: जब तक सांस चलता है मजबूरी का साथ रहेगा।
2: लेकिन फिरोज तुम तो जानते ही हो कि बच्चियों के बगैर।
1: जानता हूँ रसो,
0: वो न होती तो हमने शादी की तीसरी सालगिरह भी न मनाई होती।
1: जानता हूँ रसो, लेकिन अब क्या करें?
2: तो फिर क्या करें फिरोज?
1: हाँ रसो,
2: क्या ये मुमकिन नहीं हो सकता कि हम आज के दिन अपनी शादीशुदा जिंदगी के 15 वर्षों को भूल जाएं और सिर्फ ये याद करें कि जिंदगी से पहले हम कॉलेज में साथ साथ पढ़ा करते थे और वहाँ दोस्तों की तरह रहा करते थे।
1: हाँ, हाँ, ये तो मुमकिन हो सकता है। लेकिन
2: लेकिन क्या?
1: लेकिन जो वक्त तब से अब तक हमारे सरों से गुजर गया, उसका बोझ कैसे अपने कंधों से छिटक कर फेंकते?
2: वक्त का बोझ एक सोच है, एक एहसास है फिरोज। सिर्फ आज के दिन इस सोच और इस एहसास को भूलकर एक बार फिर वैसे ही हंसमुख प्यारे प्यारे फिरोज बन जाओ ना।
1: रसो, मान लो मैं वैसा ही फिरोज बन जाता हूँ, तो क्या तुम भी वैसे ही मासूम शोख और भोली भाली रसो बन जाओगी?
2: तुम्हारा क्या ख्याल है?
1: नहीं बन पाओगी, लाख कोशिश करने पर भी नहीं बन पाओगी।
2: तो क्या फिरोज ऐसी कोई सूरत नहीं कि हम आज के दिन मियां बीवी की तरह ना सही, दो दोस्तों की तरह चंद लम्हे एक दूसरे के साथ गुजार सके और अपने दिलों के सारे शकूक सारे गुबार दूर कर सके?
1: कौन जाने रसो, कौन जाने है?
2: क्या ये मुमकिन नहीं कि मुझसे जो कुछ हुआ है उसे तुम भूल जाओ और जो कुछ तुमसे हुआ है उसे मैं भूल जाऊं, सिर्फ आज के लिए, सिर्फ आज के दिन के लिए फिरोज?
1: कोशिश करने में कोई मजाका नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ी हिपोक्रेसी होगी।
2: कोई बात नहीं फिरोज, लोग जिस हिपोक्रेसी और रियाकारी को बुरा कहते हैं, मैं उसे इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा और साथी मानती हूँ। इंसान साथ दे या न दे, उसकी रियाकारी उसका हमेशा साथ देती है। बिल्कुल तुम्हारे पालतू कुत्ते पिंकी की तरह।
1: तुम ठीक कहती हो, रियाकारी न हो तो इंसान शायद एक लम्हे के लिए जिंदा न रह सके। अब तुम अपनी ही मिसाल लो, हमने एक दूसरे को क्या दिया?
2: सब कुछ देने पर कुछ भी न दिया फिरोज।
1: और उस पर भी हम दोनों दुनिया को यह यकीन दिलाने में कामयाब हुए हैं कि हमने एक दूसरे को अपनी जिंदगी सौंप दी, और ये बेवकूफ दुनिया वाले हमें खुशनसीब जोड़ा कहते हैं। आइडियल कपल, व्हाट हिपोक्रेसी।
2: मैं ना कहती थी?
1: हाँ रसो, ये इसी रियाकारी का सदका है कि हम इस सोसाइटी में इज्जत की निगाह से देखे जाते हैं, वरना हम क्या है ये कोई जाने तो। खैर हटाओ इस बात को रसो, जाने दो इसे। ये तो बताओ कि हम क्या वाकई चंद लम्हों के लिए दोस्तों की तरह रह सकते हैं?
2: क्यों नहीं रह सकते फिरोज?
1: वेरी गुड। तो रसो ये तो बताओ कि तुम्हें इन चंद लम्हों तक रिझाने के लिए मैं तुम्हें कौन सा तोहफा दूं?
2: मुझे तोहफों की जरूरत नहीं फिरोज।
1: नहीं नहीं, ये कैसे होगा, इन बरसों के बाद हम एक बार फिर दोस्तों की तरह मिले हैं, तो फिर तोहफे के बगैर कैसे चलेगा आगे सिलसिला?
2: प्लीज फिरोज, डोंट बी सो फॉर्मल।
1: नहीं रसो, नहीं चलेगा। सुनो, अच्छा मैं ये सफेद फूल तुम्हारे जूड़े में लगाता हूँ, या तुम कहो तो अभी गाड़ी दौड़ाकर तुम्हारी सब्ज रेशमी साड़ी के लिए कोई खूबसूरत सुनहरे रंग का पिन ले आऊं, या अगर इसमें वक्त जाया होने का अंदेशा है तो मेरे करीब आओ।
2: फिरोज।
1: हाँ रसो, मैं तुम्हें अपनी बाहों में लेकर भूल जाना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ, तुम्हारे बच्चों का बाप हूँ। मैं सिर्फ ये याद करना चाहता हूँ कि तुम रसो, 15 साल पहले की रसो, शोख चंचल मगर भोली भाली रसो। बोलो चुप क्यों हो गई?
2: जी चाहता है कि तुम्हारी इन बातों से जी भर कर प्यार करूं, आखिरी बार तुम्हारी बाहों में सिमट कर अपनी जान दे दूं, इसी एहसास के साथ मर जाऊं कि मैंने मरते मरते तुमसे बड़े खुलूस और ईमानदारी के साथ प्यार किया था। तब मेरी रूह बेकरार न रहेगी और शांत होकर किसी अनदेखी उजाले या किसी अनपूछे अंधेरे में खो जाएगी। काश काश। नहीं नहीं नहीं रचो, पांव रोक ले अपने, पागल ना बन।
1: चुप क्यों हो गई?
2: हटो फिरोज, तुम तो मुझे बनाने लगे, ये बातें अब हमें जेब नहीं देती।
1: फिर क्या होगा? बोलो फिर क्या होगा रजो, फिर हम एक दूसरे के साथ ये पहाड़ से तुम कैसे काट सकेंगे? फिरोज
0: जज्बात को काबू में रख। तुम इन बालों में गुलाब का फूल नहीं लगा सकते। मत भूलो फिरोज, ये रस तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी महबूबा नहीं। महबूबा की लफ्जिशें माफ की जा सकती हैं, लेकिन एक बीवी की लफ्जिशें माफ नहीं की जा सकती। तुम्हारी रसो बीवी है और तुम्हारी महबूबा रसो तो कब की मर गई।
1: क्या करें रसो, तुम ही बताओ ना, कोई राह बताओ।
2: आओ इस रेडियोग्राम पे रक्स की धुन बजाएं
1: और रक्स करें। ए मेरी हम रक्स मुझको थाम ले। लेकिन रसो,
2: लेकिन क्या, प्लीज फिरोज।
1: ऑल राइट चलो ये गुरभी आजमाए।
2: थैंक यू फिरोज। कौन सा रिकॉर्ड बजाऊं पहले?
1: कोई हल्का फुल्का वॉल्स लगाओ रसो।
2: क्यों, कोई फास्ट रिदम वाला रिकॉर्ड ना बजाऊं?
1: जैसी तुम्हारी मर्जी।
2: अच्छा हटाओ, तुम कहते हो तो पहले वाल्स ही सही, लेकिन दूसरा रिकॉर्ड वही फास्ट रिदम वाला रख रही हूँ।

0: फिरोज। अब क्या सोच रहे हो?
1: कुछ नहीं।
0: तुम ज्यादा सोचते हो तो गलत बातें करते हो।
1: ये तुम्हारा ख्याल है। अच्छा चलो यूं ही सही, मगर अब तुम सोचने लगी। मुझे सोचने से मना किया जाता और खुद सोचने में गुम हो।
0: मैं सोच रही थी फिरोज।
1: क्या?
0: क्या हम अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू नहीं कर सकते?
1: कई बार आजमा कर देखा लेकिन नतीजा मालूम।
0: एक बार फिर सही फिरोज, अपने लिए न सही, महज बच्चों के लिए क्या हर्ज है?
1: हर्ज तो खैर नहीं है, लेकिन फायदा भी नहीं होगा
0: फिरोज।
1: हाँ रसो, हम अपनी अपनी डगर पर बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लौट के आना मुमकिन ना होगा। जिंदगी की इस मंजिल पर आकर हमारी हालत थके हारे टूटे बदनों और शिकस्ता सहनों वाले उन राहियों की सी हो गई है, जो गलत सिर्फ में चल तो पड़े लेकिन अपनी गलती जान कर भी वापस नहीं लौट सके।
0: क्यों नहीं फिरोज, फिर क्यों नहीं?
1: राहियों में लौट आने का हौसला है न ताकत।
0: तुम तो हर बात को फलसफा बना देते हो।
1: हमारी जिंदगी इस फलसफे की इबारत है रजो।
0: फिरोज तो क्या कोई उम्मीद नहीं? कोई राह नहीं?
1: नहीं।
0: फिर ये दिखावा क्यों, ये रस किस लिए? फिरोज बंद करो, इस रेडियोग्राम को मेरा दम घुट रहा है, बंद करो इसे, बंद करो, मैं नहीं सुन सकती।
1: कमाल है, जरा सी बात पर इतनी पथावासी चली गई। नाचो, खूब नाचो, अपनी सारी तारीखियों को साथ लेकर नाचो। नाच रहे हैं, तुम्हारा मुझे नाच रहा है। तुम अपनी तबाही पर नाच रहे हो, तुम खुद ही अपनी जिंदगी को तबाह करने के लिए तांडव नाच रहे हो। लेकिन इससे पहले कि तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाए, ये तो सोच लो कि तुम भी आखिर क्या हो? एक रियाकार शौहर, एक मक्कार बाप, एक ढोंगी इंसान। फिर ये यकतरफा फैसले करने का हक तुम्हें किसने दे दिया? तुमने क्यों कर ये फर्ज कर लिया कि साथी तुम्हारे साथ हुई है और तुमने कोई साथी नहीं की? भूल गए वो आवारागर्दी के दिन, वो आवारागर्दी की रातें? हाँ, वही दिन और वही रातें जब पाक दामन रसो तुम्हारी राह में आंखें बिछाए, पैरों तुम्हारी मंतजिर रहा करती थी। तब कहाँ गया था तुम्हारे अखलाक का एहसास, इज्जत की रब कहाँ तक गई थी? नहीं, कुछ भी नहीं भूला, कुछ भी नहीं भूला, सब कुछ याद है। लेकिन लेकिन मेरी आवारा करती और रसो के भटकने में कोई तो फर्क होना चाहिए था। मैं मर्द हूं मर्द, और रसो एक औरत है औरत। मैं लाख भटकूं फिर भी मैं मर्द हूँ, लेकिन एक औरत एक बार भटके
0: तो औरत नहीं रहती बल्कि समाज की नासूर बन जाती है, यही ना?
1: रसो, तुम मेरी बातें सुन रही थी?
0: हाँ सुन रही थी,
1: लेकिन ये सब इखलाक और आदाब के खिलाफ।
0: मुझे अपने क्लब के ये आदाब मत दिखाओ फिरोज।
1: मैं क्लब के नहीं,

0: घर की बात कर रहा हूँ रसो।
1: लेकिन ये तालीम यादात तुम्हें उसी क्लब में सिखाए गए जहाँ एक रात तुम मुझे जबरदस्ती ले गए।
0: रसो,
1: जानती हूँ कि तुम्हें सच सुनने की हिम्मत नहीं, तुम पुस्तिल हो फिर उस पुस्तिल।
0: रसो, चुप रहो बेदबाम औरत बदतमीज।
1: मुंह क्या देख रहे हो? मारो और अपनी दिलेरी का सबूत दो।
0: I'm sorry, रसो। रसो, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम चाहो तो मुझे कोई भी सजा दे सकती हो, मैं उफ ना करूंगा।
1: रोज तुमने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा, ओ मेरे खुदा, तुमने मुझे मारा, बहुत अच्छा किया। इससे ये तो साबित हुआ कि तुम अब भी मुझ पर अपना हक समझते हो। सजा लगे फिर वही आदाब की बातें करने।
0: नहीं नहीं रजू, मैंने जिंदगी में पहली बार किसी औरत पर यूं हाथ उठाया है। जाने जाने मुझे क्या हुआ। रसो, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो।
1: हाथ चलाते वक्त ये सोचा था कि ये हाथ एक औरत पर, एक बीवी पर, एक माँ पर उठ रहा है।
0: तुमने बुज़दिल कहा था तो मैं आप से बाहर हो गया, वरना मैं
1: एक थप्पड़ मार दो फिरोज, खुदा के लिए एक थप्पड़ और। तुम्हारे प्यार में वो मजा नहीं मिला जो मजा इस मार में मिला, वरना क्या। मैं अब भी कहती हूँ कि तुम बुज़दिल को तुम्हें सच से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं।
0: तुम किस सच की बात कर रही हो रसो?
1: मैं उसी सच की बात कर रही हूँ जो हमारी जिंदगी पर अपना मनहूस साया डाले बैठा है। सुनो फिरोज, तुम सच मुझ कायर हो, सच का सामना नहीं कर सकते। इधर मुझे देखो, मैं एक कमजोर औरत हूँ, बड़ी ही कमजोर औरत, लेकिन मुझ में सच का सामना करने का हौसला है।
0: मैं मानता हूँ रसो कि पहली गलती मुझसे ही सरसत हुई थी, लेकिन ये क्या जरूरी था कि तुम उसके बाद मुझे भूलकर सोसाइटी की मस्नूई जिंदगी में खो जाओ?
1: किश्ती को मझधार में डालकर किश्ती से ये उम्मीद कहाँ की जा सकती है कि वो साहिल की तरफ वापस लौट आए। फिरोज, किश्ती को मझधार में टूलना ही पड़ता है, और आखिर एक ऐसा वक्त आता है कि मझधार उसे ले टूटता है।
0: बास किश्तियाँ मझधार से निकल भी आती है रसो।
1: ना खुदा की हिम्मत और हौसले से, और तुम में वो हिम्मत और हौसला था ही नहीं। तुम साहिल पर खड़े तमाशा देखते रहे, मैं टोलती रही, और शायद अब तक डूब भी चुकी होती अगर एक सहारा न होता बच्चों का।
0: बच्चे ना होते तो मैं भी इस पाखंड में दम तोड़ चुका होता, वो ना होते तो मैं तुम्हारे साथ इस जाहिरी रख रखाव और वजादारी के साथ निभा ना सकता, कमर खप गया होता।
1: ऐसा ना कहो फिरोज, तुम्हें अपने बच्चों के लिए जिंदा रहना होगा।
0: और तुम?
1: वही तुम्हारी बात फिरोज, जिंदगी ना रहने के काबिल है ना मरने के, बस वही दरमियानी कैफियत है।
0: शुक्र है तुम मेरी एक बात पर ईमान तो लाएंगे।
1: मैं सोचा करती थी कि तुम हद से ज्यादा किताबें पढ़ते हो और वहीं से ये अल्लम गल्लम बातें सीखते हो, लेकिन तुम्हारी ये बात तुम्हारी जाती तजुर्बे की पैदावार है, और तुम्हारा जाती तजुर्बा मेरा निजी तजुर्बा भी बन चुका है।
0: ये आज इतनी कम नहीं है, हैरत है। ये वही रस्सो है ना जो बात बात पर मुझे फलसफे का ताना दिया करती थी। हाँ, ये वही बुद्धू चिड़चिड़ी और बददिमाग रस्सो ही तो है। खैर, हटाओ इन बातों को, ये बताओ तुमने मुझे माफ कर दिया है ना?
1: मैं कब की तुम्हें माफ कर चुकी हूँ फिरोज? अरे फिरोज, भूल जाओ उस हादसे को, एक एक कॉफी हो जाए। क्यों
0: कॉफी? भाई रसो, आज तो तुम गवारा हद तक अच्छी कंपनी दे रही हो।
1: शुक्रिया, तुमने बड़ी फैयाजी से ही कॉम्प्लीमेंट दिया है। मैं अभी कॉफी लाई।
0: ओ गॉड, मैंने अपनी इस जन्नत को खुद ही एक दोसख में तब्दील कर दिया, और मेरा दिल, मेरा सहन, मेरा वजूद तक इस दोसख की आग में झुलस रहा है।
2: टेलीफोन। हेलो,
3: मिसेस फिरोज घर पर है?
2: हाँ हाँ, आप जरा होल्ड ऑन कीजिए, मैं बुलाता हूँ।
4: रजो,
1: क्या है?
4: तुम्हारा फोन है।
1: कौन है?
4: आकर पूछ लो कौन साहब है।
1: अच्छा, आती हूँ।
2: ठहरिए, वो आ रही है। ये लो रजो।
1: यस।
3: हाय रजो।
1: हाय सुलेमान।
3: भाई हद कर दी तुमने रजो, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम हो कि मियां से फुर्सत ही नहीं मिलती।
1: नहीं, ये बात नहीं है, एक जरूरी काम की वजह से रुक गई।
3: डैम इट, पिकनिक से भी कोई जरूरी काम हो सकता है?
1: हाँ, बहुत ही जरूरी सुलेमान। आई एम सॉरी, मैं नहीं आ सकूंगी, प्रोग्राम कैंसिल।
3: अरे वाह, तुमने कह दिया और प्रोग्राम कैंसिल।
1: मैं आज घर से बाहर नहीं जा सकती, आज मेरी शादी की सालगिरह है।
3: ओह वंडरफुल रजो, भाई मुबारक हो, लेकिन तुमने बताया नहीं हमें।
1: किसी को भी नहीं बताया, खुद मुझे आज सुबह तक याद भी नहीं था। अच्छा बाय बाय।
3: ठहरो ठहरो रजो, प्लीज रजो।
1: ओह मस्खरा कहीं का।
2: अच्छा भला प्रोग्राम कैंसिल कर दिया तुमने, अरे चली गई होती।
1: मैं तंग आ चुकी हूँ प्रोग्रामों से, वही जाने पहचाने लोग, वही घिसी पिटी बातें, वही बेहुदा मजाक, वही बकवास और पाखंड। कोई कहाँ तक साथ दे सकता है इन चीजों का?
2: हाँ, कहाँ तक? अब मुझे ही देखो ना, घूम फिर कर वही किताबों की दुनिया में पलट आया हूँ।
1: और मैं शायद ये भी ना कर पाऊंगी। अरे दूध उबल रहा होगा,
2: दौड़ कर जाओ रसो। दूध जब उबलता है तो किनारों से बाहर आकर आग में जल जाता है।
1: बिल्कुल हमारे नापुख्ता और कच्चे जज्बात की तरह।
2: कच्चे जज्बात हाजरा सियाश से उबल पड़ते हैं जज्बात और ठंडे हो जाते हैं। इंसान तब होश में आता है जब उसके वजूद में खला पैदा हो चुका होता है, एक तारीख और यह बस्ताखार जिस पर जज्बात के सूरज की एक किरण भी नहीं पड़ती। न जाने ये सूरज और कार की बात बार बार मेरे जहन में क्यों उभर रही है आज।
1: फिर डूब गए सोच में।
2: रजो, ओह तुम आ गए।
1: कॉफी लो।
2: ओह थैंक यू। ओह लवली।
1: क्या?
2: कुछ नहीं, कॉफी और क्या।
1: ओह
2: रजो एक बात बताओ।
1: कहो।
2: तुमने मुझे माफ कर दिया?
1: किस बात के लिए?
2: वो जो मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था।
1: वो सब भूल जाओ फिरोज, कॉफी पियो।
5: इस आदमी का जमीर अब तक जिंदा है, मरा नहीं, और ये बड़ी बात है। काश मैंने इसे मौका दिया होता समझने का, समझाने का।
2: क्या सोच रही हो?
1: मेरी आंख फड़क रही है।
2: क्या दवाऊं है?
1: नहीं फिरोज, आज कुछ होने वाला है।
2: क्या?
1: मैं नहीं जानती, लेकिन कुछ जरूर होने वाला है।
2: अरे काफी पी लो, ठंडी हो रही है।
1: और अगर कुछ हो गया तो?
2: तो देखा जाएगा, अभी से परेशान होने क्या माने रखता है। रसो ठीक ही कह रही है, आज मेरा दिल भी कुछ महसूस कर रहा है, जोर जोर से धड़कने लगा है। ए मेरे दिल, अब से बहुत साल पहले एक बार नहीं कई बार तुम ऐसे ही धड़क उठे थे। हाँ, उन दिनों जब रस्सों से मेरी मुलाकात हो गई थी और उस रात तो उन धड़कनों ने कमाल ही कर दिया था जब रस्सों दुल्हन बनकर मेरे घर में आई थी। वो धड़कने 2 साल तक मेरा साथ देती रही और उसके बाद मेरा साथ छोड़ गई। लेकिन आज ये क्या हो रहा है मेरे दिल की धड़कने।
1: फिरोज कॉफी पी लो, ठंडी हो रही है।
2: अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था।

0: लेकिन ये एकदम खड़े क्यों हो गए?
1: अरे अभी अभी याद आया, रजू कल ही एक नया रिसाला आया था, शायद बच्चे आपने कमरे में ले गई, अभी उनसे लाया जाएगा।
0: भुलक कर गई कि बच्चियां चार दिन से गुलमर्ग में हैं।
1: अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, ये फिर कहाँ गया वो मैक्सिम? ओ आप समझ में आया, तुमने ही उसे पिक्चर बुक समझकर बच्चों के कमरे में रख दिया होगा, है ना?
0: शायद, लेकिन मुझे याद नहीं।
1: मैं वहां देखता हूँ अभी।
0: मैक्सिम में ऐसी क्या बात है जो फिर उसको बैठे बिठाई याद आ गई? होगा कुछ, लेकिन उसे यूं उठकर नहीं जाना चाहिए था। फिरोज मिल गया मैक्सिम। अरे तुम्हारा चेहरा यूं लटका हुआ क्यों है फिरोज? क्या हो गया तुम्हें, बोलते क्यों नहीं?
1: रजो तुमने बड़ा जुल्म किया मेरे साथ।
0: फिरोज।
1: हाँ रजो, तुमने मुन्नी को ड्राइंग के चक्कर में डाल दिया ना, मेरा मुंह चिढ़ाने के लिए।
0: तो बुरा क्या किया, वो तो ड्राइंग में ही सबसे आगे है।
1: बुरा हो उसकी ड्राइंग का, वो तो एक अच्छी खासी कार्टूनिस्ट बन गई है।
0: मैं समझी नहीं।
1: देखो क्या कार्टून बना दिया है। घर का नक्शा खींच दिया है, ये देखो ये तुम हो और ये मैं हूं, और ये मुन्नी है ये टिनी है, तुम गुस्से में हो और मैं किताब में गुम, तुम्हारी पीठ मेरी तरफ है और मेरी पीठ तुम्हारी तरफ। मुन्नी टिनी के हाथ में हाथ डाले हैरान निगाहों से हम दोनों को देख रही है। और अब जरा कैप्शन पढ़ लो, इस कार्टून का कैप्शन पढ़ो, होम स्वीट होम।
0: घर प्यारा घर, नहीं नहीं फिरोज नहीं, मेरे खुदा ये क्या, हमारी जिंदगी के वो मनहूस साहब हमारे बच्चों की जिंदगी पर पड़ने लगे हैं। फिरोज उन्हें बचाओ, खुदा के लिए फिरोज अपने बच्चों को बचाओ।
1: मेरी बच्ची मुझे माफ कर दो, मुन्नी मुझे बख्श दो।
0: मुन्नी मेरी प्यारी बच्ची, खुदा के लिए अपनी गुनहगार माँ को सिर्फ एक बार माफ कर दो। मेरे खुदा ये मैंने क्या किया?
1: नहीं नहीं नहीं, नहीं। रसो मुझे रोशनी मिल गई, मेरा सूरज मुझे मिल गया। रसो
0: मैं सोची नहीं फिर।
1: देखो देखो रसो, हमारे दो बच्चे चिरागों की तरह है ना,
0: जिनकी लौ टिमटिमाती है फिरोज।
1: आरसो हम उन चिरागों को सूरज में बदलते हैं
0: फिरोज।
1: आरसो उनकी रोशनी से हम अपनी जिंदगी के तारीख सायों को अपने वजूद से दूर कर देंगे
0: फिरोज। मैं फिरोज।
1: अरे रो नहीं रसो, खुश हो जाओ, उठो उठो जल्दी करो। हम अभी गुलमर्ग चलेंगे और मुन्नी के लिए बहुत से कलर बॉक्स, ब्रश और ड्राइंग पेपर्स ले जाएंगे। उठो अब बस देर में लगाओ, वो हमें एक साथ देखेंगे तो शायद हमारे बारे में अपनी राय बदलते हैं। उठो।

निर्देशक प्राण किशोर। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 4:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

थोड़ी सी बेवफाई। अभी आपने इस फिल्म का गीत सुना। आवाज़ें थी अनवर हुसैन और सुलक्षणा पंडित के, गुलजार के बोल थे, धुन बनाई थी खयाम ने। और इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।

FM 102.4 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जमशेदपुर। इस समय शाम के 5 बजे हैं। समाचार मुख्यांश आप सुनेंगे अब से कुछ ही पलों में हमारे रांची केंद्र से।

पी राधाकृष्णन और केंद्रीय मंत्रियों ने प्रधानमंत्री के तौर पर श्री मोदी के सेवा करने के खास सम्मान के लिए उन्हें बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर गिरिडीह में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने श्री मोदी के नेतृत्व में देश में हुए विकास कार्यों, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की योजनाओं की सराहना की। साथ ही देश की आर्थिक मजबूती, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण और वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की कामना की गई। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि किसी भी समाज की सबसे बड़ी पूंजी उसकी युवा प्रतिभाएं हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं बल्कि चरित्र निर्माण, सामाजिक चेतना तथा राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व की भावना विकास करना भी है। एनडीए समर्थित राज्यसभा के उम्मीदवार परिमल नाथवानी का नामांकन मंजूर कर लिया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर ने कांग्रेस विधायक के आपत्तियों के बाद उनका नामांकन होल्ड पर रखा था। हालांकि दो दिनों तक चले विवाद के बाद आखिरकार परिमल नाथवानी का नामांकन मंजूर कर लिया गया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे समाचार मुख्यांश हमारे रांची केंद्र से। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम युवाणी आप सुनेंगे कुछ ही पलों में।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक।

0: जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज्ड नमक।

0: नमस्कार युवा साथियों, यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है और आप सुन रहे हैं युववाणी कार्यक्रम FM 102.4 MHz पे। वर्तमान समय में मौसम काफी तेजी से बदल रहा है, कभी भीषण गर्मी का प्रभाव होता है तो कभी बारिश शीतलता दे जाती है। ऐसी परिवर्तित जलवायु परिस्थितियों में स्वास्थ्य के प्रति सहज रहना अत्यंत आवश्यक है। पर्याप्त मात्रा में खुद को हाइड्रेट करें, पौष्टिक आहार को प्राथमिकता दें और अत्यधिक धूप या उमस से बचें। वर्षा ऋतु का आगमन भी होने वाला है तो स्वच्छता का विशेष ध्यान दें और संक्रमण से बचाव के लिए नियमित कदम उठाएं। प्रकृति का यह परिवर्तनशील स्वरूप हमें संदेश देता है कि जीवन में परिस्थितियां कभी समान नहीं होती, किंतु हमें शांति, संतुलन और सकारात्मकता बनाए रखना चाहिए। अपनी इस सुहानी संध्या को और सुनहरा बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए अगले आधे घंटे तक युववाणी कार्यक्रम से।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: दोस्तों, प्रकृति कितनी सुंदर है। खेतों में लहराती फसलें या चंचल नदी की लहरें, आकाश का वो नीलापन या सूरज की सुनहरी किरणें, चांद की शीतलता या पेड़ों की हरियाली, इंद्रधनुष के सुंदर रंग या फूलों की खिलती उमंग, सब सुंदरता से परिपूर्ण है। पर मैं सोचती हूँ उनके विषय में जिन्होंने इन दृश्यों को कभी नहीं देखा, जो नेत्रहीन है, जो सितारों की टिमटिमाहट नहीं देख सकते, जो रंग बिरंगी किताबें नहीं पढ़ सकते, और इनके जीवन में रंगों की बहार लाने की जिम्मेदारी हम पे है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ नेत्रदान की। नेत्रदान केवल आंखें दान करना नहीं है, ये किसी बच्चे को अपनी किताबें पढ़ने, किसी युवा को अपने सपने साकार करने और किसी बुजुर्ग को अपने परिवार को देखने का सौभाग्य प्रदान करता है। किसी एक के नेत्रदान से दो नेत्रहीन व्यक्तियों को दृष्टि प्राप्त होती है, इसलिए हम सभी को नेत्रदान का संकल्प लेते हुए अपने पास के आई डोनेशन बैंक में रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। साथ ही अपने परिवारजनों को अपनी इच्छा से अवगत कराते हुए उन्हें बताना चाहिए कि मृत्यु के पश्चात 4 से 6 घंटे के भीतर निकटतम नेत्र बैंक को अवश्य सूचित करें। प्रशिक्षित चिकित्सा दल घर या अस्पताल पहुंचकर पूरी प्रक्रिया संपन्न करेगी और 5 से 7 दिन के भीतर जरूरतमंद रोगी में कॉर्निया ट्रांसफर कर दिया जाएगा। देश में प्रतिवर्ष लगभग 1 लाख कॉर्निया की आवश्यकता होती है, परंतु दान में केवल 25,000 कॉर्निया ही प्राप्त हो पाती है। 75,000 लोग प्रतीक्षा करते रह जाते हैं। चश्मा धारण करने वाला व्यक्ति हो या मधुमेह रोगी या उच्च रक्तचाप से पीड़ित, कोई भी व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। दीपक की लौ एक घर को रोशन करती है, किंतु नेत्रदान का प्रकाश किसी के जीवन को उजाला दे सकता है। आइए आज वर्ल्ड आई डोनेशन डे के दिन नेत्रदान का संकल्प लें और अंधकार से संघर्ष कर रहे लोगों के जीवन में प्रकाश लाएं। दोस्तों, अब सुनते हैं एक गीत जो आपकी शाम को और सुरमई बनाएगी।

आप सुन रहे थे फिल्म जब वी मेट का गीत तुमसे ही, जिसे आवाज दी थी मोहित चौहान ने, बोल लिखे थे इरशाद कामिल ने और संगीतबद्ध किया था प्रीतम ने।

दोस्तों, जरा सोचिए, यदि आपने किसी बड़े रकम का भुगतान करने के लिए पैसे जोड़े हो, अचानक आपके मोबाइल पे लिंक आता है और आप उसे क्लिक कर देते हैं, फिर चंद पलों में आपके बैंक अकाउंट से सारे पैसे गायब। दोस्तों, ये साइबर फ्रॉड का एक एग्जाम्पल है और हर दिन हजारों लोग इसके शिकार हो रहे हैं। साइबर अपराधी तकनीक से कम और मनोविज्ञान से ज्यादा हमला करते हैं। जिस तरह हम अपने घर में दरवाजे पर ताला लगाते हैं, उसी तरह डिजिटल दुनिया में पासवर्ड, OTP, सुरक्षा सेटिंग और सावधानी हमारे डिजिटल ताले का कार्य करती है और हमारे इन्हीं पासवर्ड या OTPs को जानने के लिए साइबर फ्रॉड्स अलग अलग तरीकों को अपनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिशिंग की, जिसमें साइबर क्रिमिनल्स किसी प्रसिद्ध संस्था या कंपनी के नाम से नकली संदेश भेजते हैं और लोग अपनी निजी जानकारी साझा करके ठगी का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया अकाउंट हैकिंग एक बड़ी समस्या बन चुकी है। साइबर फ्रॉड्स किसी का भी अकाउंट हैक कर लेते हैं और उनके मित्रों या रिश्तेदारों से पैसे मांगते हैं। पिछले कई वर्ष में डिजिटल अरेस्ट जैसे मामले भी सामने आए हैं। इसमें क्रिमिनल्स पुलिस या CBI के अधिकारी बनकर लोगों को डराते हैं और उनसे पैसे ऐंठते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि आखिर हम साइबर फ्रॉड से बचें कैसे। सबसे पहले, कभी भी अपना OTP, पासवर्ड, UPI पिन या बैंक डिटेल साझा ना करें। याद रखिए, बैंक का कोई भी सरकारी संस्था फोन करके ऐसी जानकारी नहीं मांगती है। इसके साथ ही किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से पहले दो बार सोचिए। यदि कोई संदेश आपको लॉटरी जीतने, इनाम पाने या खाते बंद होने की चेतावनी दे, तो उसकी सत्यता अवश्य जांचें। अपने सोशल मीडिया और बैंकिंग खातों के लिए मजबूत पासवर्ड का उपयोग कीजिए और जहां संभव हो वहां 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन अवश्य लगाइए। इसके अलावा मोबाइल और कंप्यूटर में विश्वसनीय सोर्स से ही ऐप डाउनलोड करें और समय समय पर अपने डिवाइस को अपडेट करते रहें। याद रखिए, कोई भी आपको डराकर, जल्दबाजी कराकर या लालच देकर निर्णय लेने के लिए कहे तो रुकिए और धैर्य से काम लीजिए। अब दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि किसी कारणवश आप साइबर ठगी का शिकार हो जाएं, तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार की ऑनलाइन धोखाधड़ी हुई हो तो तुरंत 1930 साइबर हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। इसके साथ ही अपने बैंक या भुगतान सेवा प्रदाता को तुरंत संपर्क करें। यदि आपने किसी ठग के साथ बातचीत की हो तो उससे जुड़ी सभी स्क्रीनशॉट, संदेश, फोन नंबर, ईमेल और लेन देन की रसीद सुरक्षित रखें। याद रखिए, जागरूकता और त्वरित कार्रवाई से साइबर फ्रॉड के नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसी सकारात्मक सोच के साथ सुनते हैं एक सकारात्मक गीत।

0: आपने सुना फिल्म ये जवानी है दीवानी का गीत इलाही, जिसे आवाज दी थी अरिजीत सिंह ने, बोल लिखे थे अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीतबद्ध किया था प्रीतम ने। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक ऐसे लत की जिसके ज्यादातर लोग शिकार हैं, पर वे उसे लत नहीं मानते। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया की, जो वर्तमान में हमारे सोशल लाइफ का अभिन्न अंग बन चुका है। इसके द्वारा हम देश दुनिया की जानकारी और अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। इसके अलावा दूर बैठे लोगों से सहजता से संवाद स्थापित कर सकते हैं। किंतु दोस्तों, क्या आपने ध्यान दिया हम सोशल मीडिया पे अपना कितना टाइम खर्च करते हैं? एक बार अगर फोन उठा लिया तो घंटों स्क्रॉल करते रह जाते हैं। मेरा मानना है इसका एक प्रमुख कारण है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। यदि हम सोशल मीडिया ना चलाएं तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ महत्वपूर्ण समाचार या घटना छूट रहा है। साथ ही हम जीवन के तनाव, चिंताएं और अकेलेपन से दूर होने के लिए भी सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं। लाइक्स की चाह और तत्काल मनोरंजन की उपलब्धता भी इसे हमारे दैनिक जीवन का प्रमुख हिस्सा बनाता है, किंतु इसका हम सब पे बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। इससे हमारा कीमती समय नष्ट होता है, साथ ही हमारे ध्यान केंद्रित करने की क्षमता घटती है। दूसरों की लग्जूरियस लाइफ से अपनी तुलना करके नकारात्मकता बढ़ती है। इससे अनिद्रा की समस्या और गुणवत्ता प्रभावित होती है। इसके अलावा अत्यधिक स्क्रीन टाइम से आंखों की समस्याएं भी बढ़ती हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि सोशल मीडिया की लत से कैसे बचें? इसके लिए हमें अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव करना होगा। सबसे पहला कदम, स्क्रीन टाइम मॉनिटरिंग। अपने फोन एप्स की स्क्रीन टाइम फिक्स कर लीजिए कि एक दिन में हम इतने घंटे फोन चलाएंगे। साथ ही सुबह उठने के 30 मिनट बाद और रात को सोने से 30 मिनट पहले फोन न चलाने का तय कर लें। इसके अलावा अपने दिनचर्या में क्रिएटिविटी को शामिल करें, जैसे किताबें पढ़ें, सैर पर जाएं, योगा एक्सरसाइज को समय दें। यदि हो सके तो महीने के कुछ दिन डिजिटल डिटॉक्स भी करें, जिन दिनों हम फोन नहीं छुएंगे। इन सभी उपायों का प्रयोग करके सोशल मीडिया की लत से छुटकारा पाया जा सकता है। याद रखें, सोशल मीडिया हमारे लिए है, हम उनके लिए नहीं। अब बढ़ते हैं खेल जगत की ओर। आज से झारखंड T20 लीग शुरू हो चुका है। पहला मैच छोटा नागपुर रॉयल्स बनाम रांची टाइटंस के बीच दोपहर 12 बजे खेला गया था और रांची टाइटंस ने ये मुकाबला 5 रनों से जीता। दूसरा मैच कोयलांचल सुपर किंग्स बनाम जमशेदपुर स्टीलर्स आज रात 8 बजे से खेला जाएगा। टेस्ट क्रिकेट में अफगानिस्तान के विरुद्ध बड़ी विजय प्राप्त करने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम की नजर वनडे इंटरनेशनल की श्रृंखला पर है, जो 13 जून से शुरू होगी। विराट कोहली इंजरी के कारण इस श्रृंखला का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। वुमेन्स वर्ल्ड T20 कप 12 जून से शुरू होने वाला है। भारत का पहला मैच 14 जून को पाकिस्तान के विरुद्ध खेला जाएगा। अब सुनते हैं एक ऐसा गीत जो इस संध्या बेला में मिठास घोल देगा।
1: सारेगामा कारवा।

आप सुन रहे थे तुम क्या मिले गीत, फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। इसके गायक थे अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल, गीतकार थे अमिताभ भट्टाचार्य और संगीतकार प्रीतम थे। सूरज अब आकाश के पश्चिम की ओर है, उनकी सुनहरी किरणें अब नारंगी होने लगी हैं। वातावरण में शाम की शीतलता अब खुलने लगी है। याद रखिए दोस्तों, मौसम का बदलाव चाहे कितने रास्ते रोके, लेकिन उम्मीद के पांव कभी नहीं रुकते। मैं हूं आयुषी झा और अब आप सबसे विदा लेने की अनुमति चाहूंगी। हम फिर मिलेंगे इसी जोश के साथ। आप सब रहिए नेगेटिविटी से दूर और पॉजिटिविटी से भरपूर, तथा सुनते रहिए जन जन की आवाज, भारत की पहचान, आकाशवाणी जमशेदपुर FM 102.4 MHz पर। नमस्कार युवा साथियों।

0: युववाणी, ये था युवा श्रोताओं के लिए हमारा दैनिक कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 102.4 MHz पर। शाम के 5:30 हुए हैं। प्रस्तुत है श्रमिक श्रोताओं के लिए हमारा दैनिक कार्यक्रम कल कारखाने, लेकिन उसके पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

श्रोताओं कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे जानकारी से भरपूर भेंट वार्ता के साथ। विषय है चाइल्ड हेल्पलाइन एक जानकारी। जानकारी देंगे चाइल्ड हेल्पलाइन कोऑर्डिनेटर प्रवंजन कुमार। आइए हम सुने ये भेंट वार्ता।

0: श्रोता साथी, बाल संरक्षण ये शब्द आपने जरूर सुना होगा। ये बाल हित के लिए जरूरी है ताकि बच्चों को हिंसा, शोषण, उपेक्षा, बाल मजदूरी, बाल विवाह, तस्करी और दुर्व्यवहार से बचाया जा सके। हर बच्चे को सुरक्षित वातावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और अच्छे शारीरिक और मानसिक विकास का अधिकार है, कानूनी संरक्षण का अधिकार है। भारत में इस क्षेत्र में बाल संरक्षण की योजनाएं और कानून महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी कड़ी में एक नाम चाइल्ड हेल्पलाइन और एक टोल फ्री नंबर 1098 आपने जगह जगह पर देखी जरूर होगी। तो आज हम इससे संबंधित ही जानकारी प्राप्त करेंगे श्रोताओं, और इसके लिए फोन पर हमने बात की चाइल्ड हेल्पलाइन पूर्वी सिंहभूम के कोऑर्डिनेटर प्रभंजन कुमार से। तो प्रभंजन जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है, नमस्कार।
1: नमस्ते मैडम, मैं प्रभंजन कुमार चाइल्ड हेल्पलाइन कोऑर्डिनेटर है पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के अंतर्गत। हमारे जिला में चाइल्ड हेल्पलाइन सेंटर आपातकालीन सहायता के लिए 24x7 आवर तत्पर है।
0: जी, तो प्रभंजन जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि चाइल्ड हेल्पलाइन क्या है और ये कैसे काम करता है।
1: मैडम, चाइल्ड हेल्पलाइन एक शब्द है जो 1098 एक टोल फ्री नंबर है
0: जी।
1: वो ऑनलाइन पे आप कोई भी कॉल कर सकते हैं। जिला में संचालित चाइल्ड हेल्पलाइन बच्चों के मुद्दे पर आपातकालीन सहायता के लिए 24x7 ये हेल्पलाइन काम करते हैं।
0: तो प्रबंधन जी, ये बताइए कि यदि लोगों को आप तक पहुंचना हो तो वो कैसे पहुंचेंगे?
1: हमारे पास देखिए दो ऑप्शन है, एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। जो 1098 है ये एक टोल फ्री नंबर है, ये कोई भी व्यक्ति कोई बच्चों के मुद्दे पर इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ताकि शिकायत बच्चों के मुद्दे पर हमारे पास आ जाएगा और साथ ही साथ तुरंत उसको रिप्लाई दिया जाएगा और उसको सहायता प्रदान किया जाएगा। ये हो गया हमारे एक ऑनलाइन प्रोसेस, और दूसरा है ऑफलाइन प्रोसेस। अगर कोई थाना, अगर कोई संस्था, अगर हमारे कोई जिला पदाधिकारी, कोई भी किसी को इसमें सूचना मिला, कुछ बच्चों के मुद्दे पर जानकारी चाहिए या सहायता चाहिए, इसमें मेरे साथ डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं या तो हमारे जिला बाल संरक्षण ऑफिस में भी संपर्क कर सकते हैं।
0: जी, तो आगे हम आपसे ये जानना चाहेंगे प्रबंधन जी कि कैसे कैसे केसेस आते हैं और कैसे कैसे बच्चों की मदद कर पाते हैं आप?
1: जी मैडम, एक्चुअली हमारे पास जो केसेस आते हैं बाल उत्पीड़न, ये बाल श्रम, बाल विवाह या पॉक्सो जो जोन उत्पीड़न, या तो कोई सरकारी योजना से आच्छादित करने के लिए मेरे पास कॉल आते हैं कि कोई बच्चा है, उसके गार्जियन नहीं है, कोई नहीं है, उसको कोई सरकारी योजना से आच्छादित कर दिया जाए, या तो हमारे पास शेल्टर के लिए कॉल आते हैं, बच्चा कोई नहीं है, इसको शेल्टर चाहिए, आश्रय चाहिए, वो भी आते हैं। आजकल जानते हैं मैडम, मोबाइल का जमाना है, मोबाइल या तो लैपटॉप कंप्यूटर में माँ पिताजी थोड़ा बच्चे के साथ डांट पड़ देते हैं, उसके लिए भी कॉल कर देते हैं 1098 पे। तो ये भी फैमिली इशू एक केस हो जाता है। तीसरा है हमारे खोया पाया जो है, बच्चा भटक के आ गया या तो यहाँ से चल गया है, बच्चा गुम हो गया है, या तो रानवे बच्चे, ज्यादातर रानवे बच्चा हमारे रेलवे परिसर में मिलता है, या ट्रैफिकिंग केस, मतलब वैरायटी केस हमारे पास मामला आते रहते हैं।
0: तो चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम कहाँ कहाँ काम कर रही है जमशेदपुर में?
1: पूर्वी सिंहभूम जिले में हमारे तीन क्षेत्रों में काम होता है। डिस्ट्रिक्ट में एक रेड क्रॉस भवन है, हर फ्लोर में है हमारे चाइल्ड लाइन, कंट्रोल रूम और कार्यालय दोनों वहाँ पर है
0: जी।
1: और एक है हमारे टाटा नगर रेल्वे परिसर में है, वो चाइल्ड हेल्प डेस्क टाटा नगर रेलवे, और तीसरा नंबर है हमारे मानगो बस स्टैंड में है, बस स्टैंड चाइल्ड हेल्प डेस्क। ये तीनों सेंटर में हमारे स्टाफ द्वारा आपातकालीन परिसेवा प्रदान किया जाता है
0: जी। यदि कोई बच्चा ट्रेन पे चढ़ के कहीं आ गया या फिर बस से आ रहा है, तो वहाँ से बच्चों को रेस्क्यू करके आपसे संपर्क स्थापित करके बच्चों को सहायता की जाती है
1: जी। अगर रेलवे से कोई बच्चा मिल गया ये रेलवे परिसर या ट्रेन में, तो वहाँ का संपर्क GRPF, RPF और चाइल्ड लाइन के द्वारा उसको रेस्क्यू करके RPF के द्वारा उसको हम लोग को हैंडओवर किया जाता है। फिर हैंडओवर द्वारा जो आगे प्रोसेस होता है बच्चों के हित के लिए, बच्चे को उज्जवल भविष्य के लिए, वो हम लोग प्रोसेस करवाई करते हैं।
0: तो यदि बच्चे को रेस्क्यू किया गया और बच्चा आप तक पहुंचा, तो आगे की क्या प्रक्रिया होती है, बच्चों को कैसे हेल्प करते हैं आप?
1: जैसे मेरे पास और मामला आते, तुरंत सूचना लेते हुए उस बच्चे को तुरंत RPF हो या तो कोई पब्लिक से उसको हैंड ओवर लिया जाता है। उसके बावजूद हमारे बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट है,

0: जो CWC जेजे के सेक्शन 27, 29 और 30 में वो जेजे के तहत CWC गठित किया गया है, जो बाल कल्याण समिति चाइल्ड वेलफेयर कमेटी।
1: अच्छा,
0: तो वो बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट के समक्ष हम लोग को बच्चा को प्रस्तुत करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट लगता है वो डॉक्यूमेंट के साथ हम लोग प्रस्तुत करते हैं। फिर वो बच्चा को जो आश्रय जैसे कि अल्पावास चाहिए, खाना चाहिए, देखते हुए उसको जो भी खाना आश्रय सारे प्रोवाइड किया जाता।
1: बाल कल्याण समिति जो निर्णय लेती है बच्चे की स्थिति को देखते हुए उसके अनुसार उनके मुताबिक आप बच्चे को मदद पहुंचाते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्रबंधन जी आपसे जानना चाहेंगे कि यदि मान लीजिए कोई छोटी बच्ची है, कम उम्र की बच्ची है, उसकी शादी हो रही है, तो वैसे में उस बच्ची को मदद कैसे पहुंचेगा? क्या वो बच्ची को खुद ही शिकायत करना होगा या फिर उसके कोई रिश्तेदार या कोई दूसरा भी उसकी मदद करते हुए शिकायत कर सकता है?
0: ये जो 1098 में सहायता, इसमें भी कॉल कर सकते हैं, बच्ची खुद भी कॉल कर सकते हैं, या तो कोई परिवार को किसी को व्यक्ति को दे के कॉल करा सकते हैं। क्योंकि वो बच्ची जो भी कॉल करेंगे उसका चाइल्ड मैरिज जो है बाल विवाह में संबंधित मामले में वो कॉलर जो है कॉलर का गोपनीयता रखने का, क्योंकि आगे भविष्य में अगर फांस हो जाएगा कॉलर का नाम पता सब फांस हो जाएगा तो आगे में कोई हिम्मत लेकर इसमें कॉल नहीं करेंगे। इसी विभाग के द्वारा ये चाइल्ड मैरिज में है इसका जो कॉलर है रहेगा उसको पूरा गोपनीयता रख आगे प्रोसेस किया जाता है। क्या प्रोसेस होगा चाइल्ड मैरिज में? अगर कोई बच्ची का शादी दिया जा रहा है तो बच्ची खुद अगर कॉल कर दिए है 1098 पे या तो डायरेक्ट सूचना हमारे पास जिला बाल संरक्षण या चाइल्ड लाइन को दे दिए है तो उसका गोपनीयता बजाय रखते हुए उसको अग्रतर कार्रवाई किया जाता है। इसका नोडल पदाधिकारी ऐसा है प्रखंड विकास पदाधिकारी जो BDO आप जानते हैं, BDO के द्वारा उसका टीम गठित होता है और टीम के द्वारा चाइल्ड लाइन की संबंधित थाना बच्ची जहाँ रह रहे हैं हाँ उस क्षेत्र का थाना और प्रखंड पदाधिकारी चाइल्ड लाइन के कर्मी तो इनको द्वारा एक टीम बनाया जाता है। आंगनवाड़ी सेविका हो या सुपरवाइजर हो ये लोग को टीम के द्वारा घर निरीक्षण में जाता है और जाने के बावजूद अगर मिला है कि सही से बच्चे को शादी दिया जा रहा है तो उसको अग्रतर कार्रवाई होता है कि उसको शादी नहीं समझाया जाता है, कई FIR भी हो जाता है। साथ ही साथ वो बच्ची को और परिवार को पूरा बाल कल्याण कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट के समक्ष, फिर उसके आगे कार्रवाई वो लोग करते हैं। तो ये प्रोसेस है हमारे चाइल्ड मैरिज, तो कोई भी कॉल कर सकते हैं।
1: मतलब कि बाल विवाह उस बच्ची के हित में नहीं है, इसलिए जरूरी है कि या तो बच्ची करे या समाज का कोई भी हो जो ये सोचता है कि बाल विवाह किसी भी बच्ची के हित में नहीं है, तो कोई भी कर सकता है। एक और समस्या है प्रबंधन जी, बाल मजदूरी की। कोई लड़का या लड़की जो 18 साल से कम हो और वो पैसा कमाने के लिए काम कर रहा है तो आप लोग उसकी मदद कैसे करते हैं? और सबसे पहले तो ये कि बाल मजदूरी की परिभाषा क्या, किस तरह के काम को हम बाल मजदूरी की श्रेणी में रखते हैं?
0: बाल मजदूरी दो श्रेणी है मैडम। एक्चुअली बाल श्रम अधिनियम के तहत इसका डेफिनेशन होता है 0 से 14 वर्ष के उम्र को बच्चों को कोई खतरे में काम कराया जाता है उसको बाल मजदूरी बोला जाता है। ठीक है, खाते उसको जो प्राइमरी चीज नीड चाहिए जो उसको जरूरत के समय है उस टाइम उसको काम करवाया जाता है।
1: अच्छा।
0: तब बच्चों को हानि होता है, क्या है, स्वास्थ्य संबंधित हो सकते हैं, शिक्षा संबंधित हो सकते हैं, या तो आपका पोषण संबंधित कई तरह होता है इस तरह। ये जो बाल श्रम जो बोला जा रहा है 0 से 14 वर्ष के है और दूसरा है 15 से 18, उसमें भी प्रावधान है कि कोई खतरा काम नहीं कराया जाएगा, कुल शिक्षा अनिवार्य है। और तीसरा बात कि स्वास्थ्य संबंधित ध्यान में रखते हुए उसको टाइम बाय टाइम उसको रेस्ट देना है, तो सारे इसको प्रावधान में आते हैं जो बाल श्रम अधिनियम जो है 96 के तहत। तो ये 0 से 14 और 15 से 18 दो तरह का होता है
1: जी। तो यदि कोई बच्चा बाल मजदूरी करता हुआ मिले तो आप उसको कैसे मदद करते हैं?
0: बाल मजदूरी में अगर हमारे पास कंप्लेन आए, मामला आए, तो हमारे सर्वप्रथम काम होता है हमारे जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है बाल संरक्षण पदाधिकारी उनको पहले हम सूचना देते हैं। साथ ही उसको सूचना के साथ साथ हम लोग श्रम अधीक्षक जो है होता है हमारे जिला में प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में होता है श्रम अधीक्षक, उनको हम लोग सूचना देते हैं। फिर उनके द्वारा एक टीम बनाया जाता है, टीम में वही बाल श्रम अधीक्षक रहता है, संबंधित थाना रहता है, चाइल्ड लाइन रहता है, CWC रहता है। फिर उसको विजिट किया जाता है शिकायत आ रहा है जो एरिया से, फिर जाने के बाद पूरा उनको

0: देखा जाता है कि उम्र कितना है, बच्चों को पहले उम्र दिखा जाता है, कौन टाइप का काम कर रहे हैं, कौन खतरा में काम कर रहे हैं। अगर कोई कारखाना हो, अगर कोई बार हो, रेस्टोरेंट हो या सड़क पर हो, होटल हो, जो भी है, उस हिसाब से जिया, अगर उसको बच्चों के मालिक के साथ क्या संबंध रहता है ये सब पूछा जाता है। फिर उसको देखा जाता है उम्र अगर 14 से नीचे हो जाता है, फिर श्रम अधीक्षक के द्वारा मालिक के ऊपर FIR दर्ज होता है। प्रावधान में जो जो है बच्चे को वहाँ से हम लोग रेस्क्यू कर लेते हैं, फिर रेस्क्यू करके उसको हम लोग को हैंडओवर किया जाता है। फिर हम लोग CWC बाल कल्याण समिति प्रस्तुत करते हैं, बाल कल्याण समिति उसको रहते है अल्पावास या तो जो भी है उसका परिसेवा देते हैं, फिर के द्वारा काम कराया जाता है, उसके ऊपर FIR होता है। फिर साथ ही उसको 20 से 50 हजार तक जुर्माना होता है, जेल भी होता है। तो ये सब प्रावधान है और बच्चों के हित के लिए जो जो किया जाता है वो बाल कल्याण समिति के द्वारा और हम लोग का सहायता सहयोग से किया जाता है।
1: तो प्रबंधन जी, आपने चाइल्ड हेल्पलाइन के बारे में जो हमारे जिले में संचालित है इससे संबंधित बहुत अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी। आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू मैडम।
2: श्रोता साथी, आप सुन रहे थे भेंटवार्ता, चाइल्ड हेल्पलाइन एक जानकारी दे रहे थे कोऑर्डिनेटर, चाइल्ड हेल्पलाइन के कोऑर्डिनेटर प्रभंजन कुमार।

आप सुन रहे थे हैप्पी न्यू ईयर फिल्म का गीत, अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाजों में। शब्द रचना थे इरशाद कामिल की और संगीत निर्देशन था विशाल शेखर का।

श्रोता साथी, केंद्र सरकार के 12 वर्षों में किए गए प्रमुख कार्यों और विकास योजनाओं पर हम गौर करें तो हम पाएंगे कि इन वर्षों में देश में कई क्षेत्रों में जैसे गरीब कल्याण, आधारभूत संरचना, डिजिटल सेवाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, किसानों और युवाओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाखों गरीब परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने का प्रयास और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवार के महिलाओं को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए, जिससे वो रसोई में उत्पन्न होने वाले धुएं और इन धुओं से उत्पन्न परेशानियों से बच सके।

स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना के द्वारा पात्र परिवारों को स्वास्थ्य बीमा सहायता, नए मेडिकल कॉलेजों और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया गया। डिजिटल भारत की दिशा में ऑनलाइन सेवाओं, डिजिटल भुगतान और इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिला, जिससे सरकारी सेवाओं तक लोगों की पहुंच बढ़ी। किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत आर्थिक सहायता देने के साथ साथ सिंचाई, कृषि, तकनीक और फसल बीमा पर भी कार्य हुआ। महिला सशक्तिकरण और स्वच्छता अभियान के अंतर्गत शौचालय निर्माण, बेटी शिक्षा और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर ध्यान दिया गया। 12 ऐतिहासिक फैसलों में प्रधानमंत्री जी ने अनुच्छेद 370 को खत्म कर एक देश एक विधान लागू किया। भव्य राम मंदिर निर्माण के साथ सांस्कृतिक चेतना का पुनर्जागरण, मेक इन इंडिया, वैक्सीन विजय, कैशलेस इकोनॉमी, एक राष्ट्र एक कर, वंदे भारत ट्रेन, एक्सप्रेसवे और उड़ान योजना, मिशन शक्ति, रक्षा आत्मनिर्भरता, स्वच्छ भारत मिशन, वैश्विक योग दिवस, संकल्प से सिद्धि तक नए भारत निर्माण का सपना साकार किया।

श्रोता साथी, आंखें केवल देखने का माध्यम नहीं बल्कि दुनिया को महसूस करने का सबसे सुंदर जरिया है। लेकिन हमारे समाज में कई ऐसे लोग हैं जो आंखों की रोशनी से वंचित हैं। ऐसे में नेत्रदान उनके जीवन में नई उम्मीद जगा सकता है।

शांत शेर भूषाल और सहबाब साबरी को, शब्द रचना अनजान के, संगीत निर्देशन साजिद वाजिद का। और श्रोताओं, इसी के साथ कल कारखाने का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है। दीजिए अपनी दोस्त स्नेहलता को अनुमति। आप सभी को मेरा

0: कल कारखाने। ये था श्रमिक श्रोताओं के लिए हमारा दैनिक कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 MHz पर। शाम के 6 बजे हैं, कुछ ही पलों में समाचार प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिनों की निरंतर सेवा के साथ श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, केंद्रीय मंत्रियों और विश्व नेताओं ने श्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की बैठक नई दिल्ली में जारी है। ये बैठक NDA सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर आयोजित की गई है। गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्रियों सहित भाजपा के शीर्ष नेता बैठक में शामिल हैं। बैठक में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री भी उपस्थित हैं। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, अवसंरचना कार्यक्रमों और देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के सरकार के दृष्टिकोण की समीक्षा की जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में इस ऐतिहासिक उपलब्धि को दर्शाता है और कई प्रतिबद्धताओं तथा उपलब्धियों को रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने बताया कि इन प्रस्तावों में युवाओं के लिए कार्यक्रमों का विशेष उल्लेख किया गया है।
2: प्रधानमंत्री जी युवा शक्ति को भारत की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कौशल विकास, स्टार्टअप इंडिया, इनोवेशन, डिजिटल इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, उद्यमियता और फिटनेस को बहुत एक एम्फेसिस के साथ कई तरह के प्रोग्राम्स बनाए जिसमें भारत को एक बहुत बड़ी खेल शक्ति के रूप में उभरा है, वर्ल्ड के 3 लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के रूप में उभरा है। मिशन चंद्रयान और वैज्ञानिक क्षमता हमारी देश की इस कार्यकाल में बहुत बड़ी है।
1: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2A को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। राज्यसभा के सभापति CP राधाकृष्णन ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद सुष्मिता देव का राज्यसभा से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। लगभग 1 सप्ताह से तृणमूल कांग्रेस के अंदर बढ़ती आंतरिक कलह के बीच पार्टी के अब तक 2 सांसदों ने इस्तीफा दिया है। सुश्री देव ने इस्तीफे के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा से नई दिल्ली में मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। ये उपग्रह संकेतों की प्राप्ति और ट्रैकिंग में बाधा उत्पन्न करने के साथ साथ भ्रामक सिग्नल भेजकर दुश्मन की स्थिति निर्धारण क्षमता को प्रभावित कर सकती है। इन प्रणालियों के शामिल होने से अधिक जोखिम वाले वातावरण में भारतीय नौसेना के जहाजों की संचालन सुरक्षा में वृद्धि होगी। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने पेरू की इनेस कैस्टिलो को और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियो पिन चियान को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। A meeting of the National Democratic Alliance, NDA, is underway in the national capital. The meeting is being held to celebrate NDA government completing 12 years and Prime Minister Narendra Modi becoming the longest continuously serving elected Prime Minister of India. All constituents of the alliance, besides the top leadership of the BJP, including Prime Minister Modi, are attending the meeting. The NDA meeting is also being attended by chief ministers and deputy chief ministers of all 22 NDA governed states and union territories, besides the leaders of all alliance constituents. The meeting will focus on reviewing various national development programs, infrastructure programs, and the Modi government's vision to transform the nation into a developed country by 2047. The Union Cabinet today passed a resolution applauding Prime Minister Narendra Modi on becoming the longest-serving elected Prime Minister for consecutive terms. Briefing media in New Delhi after the Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the resolution discusses this historic milestone of the Prime Minister's continuous service to the nation as an elected Prime Minister and outlines several commitments and resolutions.
2: प्रधानमंत्री जी, युवा शक्ति को भारत
4: प्राइम मिनिस्टर कंसीडर्स द यूथ ऑफ इंडिया एज द कंट्रीज ग्रेटेस्ट एसेट देयरफॉर ही हैज इंट्रोड्यूस्ड सेवरल प्रोग्राम्स विद स्ट्रॉन्ग एम्फसाइज ऑन स्किल डेवलपमेंट स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन डिजिटल इकोनॉमी स्पोर्ट्स एंटरप्रेन्योरशिप एंड फिटनेस एज अ रिजल्ट इंडिया हैज इमर्ज्ड एज अ मेजर स्पोर्टिंग नेशन वन ऑफ द वर्ल्ड्स थ्री लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम्स एंड हैज डेमोंस्ट्रेटेड रिमार्केबल साइंटिफिक कैपेबिलिटीज थ्रू मिशंस सच एज चंद्रयान
2: क्षमता हमारी देश की इस कार्यकाल में बहुत बड़ी है।
3: Mr. Vaishnav said the Cabinet today approved extension of Ahmedabad Metro Phase 2A with an outlay of 2,169 crore rupees. He said it comprises a 6-kilometer long metro corridor with 5 stations. The minister said upon operationalization of Phase 2A, the Ahmedabad Gandhinagar will have over 77 kilometers of active metro rail network. He said the Cabinet also approved Central Government Office Complex and Central Government Residential Complex in Amravati in Andhra Pradesh. The Defence Ministry today signed a contract worth 449 crore rupees for the procurement of 20 Enhanced Capability Global Navigation Satellite System GNSS jammers for the Indian Navy with a minimum indigenous content of 75%. The contract under the Buy Indian Indigenously Designed, Developed and Manufactured category was signed in the presence of Defence Secretary Rajesh Kumar Singh in New Delhi. The government has approved 22 new applicants under the third round of the Production Linked Incentive PLI scheme for textiles. The Ministry of Textiles said a total of 96 companies have been selected under round 3 of the scheme with a committed investment of more than 12,822 crore rupees and a projected turnover exceeding 58,000 crore rupees. The government has approved extension and validity of the credit guarantee scheme for microfinance institutions 2.0 up to the 31st of August this year or till guarantees for an amount of 20,000 crore rupees are issued. The Ministry of Finance said that as on date, loans totaling to 770 crore rupees have been sanctioned under the scheme. The scheme aims to provide credit guarantee support through National Credit Guarantee Trustee Company Limited to strengthen lending to microfinance institutions and facilitate increased credit flow of up to 20,000 crore rupees to non-banking financial company microfinance institutions. The chief of the Balochistan Liberation Front, Dr. Allah Nazar Baloch, has criticized Pakistan's policies in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, saying that growing public resistance in the region reflects demands for fundamental rights, self-determination, and political freedom. According to media reports, Dr. Baloch alleged that Pakistan has increasingly relied on repression to suppress dissent but has failed to curb demands for political and economic rights. Meanwhile, reports indicate that more than 30 people have been killed and around 200 injured in clashes between protesters and security forces in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. And with that, we end this news bulletin.
0: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत।
5: कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत में मैं कृष्णा कावेरी आज आप सबके साथ हूँ। आप सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा जोहार। श्रोताओं लीजिए सुनिए सांताली लोकगीत। कलाकार हैं रीना हंसदा।
6: श्रोताओं प्रस्तुत है रीना हंसदा व साथियों की आवाज में सांताली लोकगीत। अभी जो आप ये गीत सुनेंगे दर्ता देखते ही बनती है और

0: अभी आप सुन रहे थे संताली लोकगीत, कलाकार थी रीना हंसदा। श्रोताओं, इसके साथ ही संताली लोग इसके साथ ही झारखंड के लोकगीतों का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। जोहार।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत, ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। संस्कृत समाचार आप सुनेंगे अब से कुछ ही पलों में।

0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन अद्य प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्र मोदिनं दीर्घकालं यावत् निर्वाचित प्रधानमन्त्रित्वेन प्रशंसयन् नैके प्रस्तावाः स्वीकृताः। वस्त्राणां कृते पीएलआई योजनायाः तृतीय प्रक्रमस्यान्तर्गतं 96 समवाय विशेषाः सर्वकारेण अनुमोदिताः। प्रायः 13,000 कोटि रूप्यकाणां निवेशः प्रतिबद्धः। रक्षामन्त्रालयेन नौसेनायाः कृते 20 उन्नत जैमर इत्येतेषां क्रयणार्थं प्रायः 500 कोटि रूप्यकाणां अनुबन्धः स्वीकृतः। अफगानिस्तान देशे पाकिस्तानस्य वायु आक्रमणेन 11 बालकैः सह न्यूनातिन्यूनं 13 जनाः मृताः। अपि च ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य पीवी सिंधु तन्वी शर्मा इत्येतयोः युगलं सिडनी नगरे महिला एकल क्रीडायाः द्वितीये चक्रे प्रविष्टम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य भारतस्य लोकतान्त्रिकरूपेण निरन्तरतया सेवायमानः दीर्घतमः प्रधानमन्त्री अवदत्। श्रीमोदी 14-2000 वर्षे मई मासस्य 26 दिनाङ्के शपथग्रहणं कृतवान् आसीत्। सः पण्डित जवाहरलाल नेहरू वर्यस्य कीर्तिमतम् अतिक्रमितवान्, यो हि प्रथमवारं 25-29 वर्षे मई मासस्य 13 दिनाङ्के निर्वाचित प्रधानमन्त्रिरूपेण शपथं स्वीकृत्य 64-29 वर्षे मई मासस्य 27 दिनाङ्कपर्यन्तं कार्यम् अकरोत्। पण्डित नेहरू वर्यस्य निर्वाचित प्रधानमन्त्रित्वेन कार्यकालः 98-300-4000 दिनानि यावत् आसीत्। इदानीं प्रधानमन्त्रिणः मोदीवर्यस्य अविरत कार्यकालः 99-300-4000 दिनानि यावत् अस्ति, येन सः भारतस्य इतिहासे दीर्घतमं कालं यावत् कार्यं कुर्वन् निर्वाचितः प्रधानमन्त्री अस्ति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुः प्रधानमन्त्रिणं तस्य सेवायै अभिनन्दितवती। सामाजिकान्तर्जालीये पटले राष्ट्रपतिः अवदत् यत् अयम् ऐतिहासिकः अवसरः देशस्य जनैः द्वारा तस्य नेतृत्वे स्थापितस्य चिरस्थायिविश्वासस्य च प्रमाणरूपेण वर्तते। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः, वाणिज्य उद्योगमन्त्री पीयूषगोयलः, वित्तमन्त्री निर्मलासीतारामनः, कृषि कृषककल्याणमन्त्री शिवराजसिंहचौहानेत्यादयः केन्द्रीयमन्त्रिणः स्वतन्त्रभारतस्य दीर्घतमनिरन्तरनिर्वाचित प्रधानमन्त्री भवितुं श्रीमोदिनं शुभाशयाः प्रेषितवन्तः। सामाजिकान्तर्जालीय पटलीय सन्देशे डॉ जयशंकरः अवदत् यत् एषा उपलब्धिः प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः नेतृत्वे दूरदृष्टौ राष्ट्रिय विकासं प्रति प्रतिबद्धतायां च भारतस्य जनानां चिरस्थायि विश्वासं च प्रतिबिम्बयति। केन्द्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मन्त्रिणा हरदीप सिंह पुरीवर्येण, पर्यावरण वन ऋतुदशा परिवर्तन मन्त्रिणा भूपेन्द्र यादवेन, ऊर्जा मन्त्रिणा मनोहर लालेन, रक्षामन्त्रिणा राजनाथ सिंहेन, विज्ञान प्रौद्योगिकी मन्त्रिणा जितेन्द्र सिंहेन, संस्कृति पर्यटन मन्त्रिणा गजेन्द्र सिंह शेखावतेन, विधि न्याय मन्त्रिणा अर्जुन राम मेघवालेन चापि श्रीमोदिनम् अभिनन्दितम्। अद्य राष्ट्रिय राजधान्यां केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलस्य सभायां मन्त्रिमण्डलस्य सदस्याः अपि प्रधानमन्त्रिणं मोदीवर्यं सभायाम् उत्थाय अभिवादनं कृतवन्तः। विश्वस्य नेतारः अपि श्रीमोदिनं प्रति शुभकामनाः प्रेषितवन्तः। श्रीलंका देशस्य राष्ट्रपतिः अनुरा कुमार दिसानायके, पापुआ न्यूगिनी देशस्य प्रधानमन्त्री जेम्स मारापे, त्रिनिदाद टोबैगो देशस्य प्रधानमन्त्री कमला प्रसाद विसेसरादयः प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः परिवर्तनशील शासनं वैश्विक दक्षिणस्य कृते तस्य समर्थनं समावेशी आर्थिक गतिशील भारतस्य विषये तस्य दूरदृष्टिं च प्रशंसितवन्तः। वस्त्राणां कृते उत्पादन सम्बद्ध प्रेरणा पीएलआई इति योजनायाः तृतीय प्रक्रमस्यान्तर्गतं 22 नूतनानि आवेदनपत्राणि सर्वकारेण अनुमोदितानि। वस्त्रमन्त्रालयः अवदत् यत् योजनायाः तृतीयचक्रस्यान्तर्गतम् आहत्य 96 समवाय विशेषाः चिताः सन्ति, येषु 20-28,000 कोटिरूप्यकाणां प्रतिबद्ध निवेशः, ₹58,000 crore प्रत्याशित व्यापारः च अस्ति। रक्षामन्त्रालयेन अद्य भारतीय नौसेनायाः कृते 20 एनहान्स्ड केपेबिलिटी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम GNSS जैमर इत्येतेषां क्रयणार्थं 49.74 crore अनुबन्धे हस्ताक्षरं विहितम्। यस्मिन् न्यूनातिन्यूनं 75% यावत् स्वदेशी वस्तूनि भविष्यन्ति। क्रयणस्य प्रवर्गस्य अन्तर्गतम् अनुबन्धः नवदिल्ल्यां रक्षासचिवस्य राजेश कुमार सिंहस्य उपस्थितौ हस्ताक्षरितः। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन अद्य प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्रमोदिनं दीर्घकालं यावत् निर्वाचित प्रधानमन्त्रिणं प्रशंसयन् नैके प्रस्तावाः स्वीकृताः। मन्त्रिमण्डलीय सभायाः अनन्तरं नवदिल्ल्यां प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्रिणा अश्विनी वैष्णवेन उक्तं यत् प्रस्तावेऽस्मिन् निर्वाचित प्रधानमन्त्रित्वेन राष्ट्राय प्रधानमन्त्रिवर्यस्य निरन्तर सेवायाः ऐतिहासिकं सोपानं चर्चितः अस्ति, तथा च अनेकान् प्रतिबद्धतान् संकल्पांच निरूपयति।
1: जो बहुत ही साधारण परिवार से आए और जिन्होंने अपने कार्य से, अपने विचार से और अपने नेतृत्व के साक्षी रूप से जिस तरह से देश को आगे किया, उनको 140 करोड़ देशवासियों ने उन पर विश्वास जताया और एक ऐसा कीर्तिमान बनाया जो कि भारत के लोकतांत्रिक पैमाने पे एक बहुत बड़ा कीर्तिमान।
0: श्री वैष्णवः अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना भयोत्पादनस्य विरुद्धं कठोर कार्याचरणमपि स्वीकृतम्।
1: माननीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने आतंकवाद के विरोध में कठोर कदम उठाए, सीमा पार आतंकवाद के कैंपों पर सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की और ऑपरेशन सिंदूर के रूप में पाकिस्तान के उन क्षेत्रों को भी टारगेट किया जो पहले अकल्पनीय थे और पाकिस्तान के साथ दशकों पहले किए गए अन्यायपूर्ण सिंधु जल समझौते को भी निलंबित स्थिति में रखा गया।
0: श्री वैष्णवः अवदत् यत् अद्य मन्त्रिमण्डलेन अहमदाबाद मेट्रो फेज 2A इत्यस्य विस्ताराय 179.2 crore व्ययः स्वीकृतः। सः अवदत् यत् अस्मिन् 6 किलोमीटर सुदीर्घः मेट्रो मार्गः 5 स्थानकैः युक्तः अस्ति। मन्त्री अवदत् यत् द्वितीय क चरणस्य कार्यान्वयनेन अहमदाबाद गांधीनगरयोः मध्ये 70 किलोमीटर मितं यावत् सक्रियं मेट्रो रेल जालं भविष्यति।
1: आज कैबिनेट में 3 फैसले लिए गए। एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और 2 फैसले अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके 2 फैसले लिए गए। अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2A कोटेश्वर रोड से

0: एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में।
1: केंद्रीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ईंधन मंत्री हरदीप सिंह पुरी वर्यः अद्य अवदत् यत् देशे संकुचित प्राकृतिक ईंधनस्य सीएनजी इत्यस्य अभावः नास्ति। सः अवदत् यत् सर्वकारः गृहेषु पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी इत्यस्य आपूर्तिं विस्तारयितुं तथा च एलपीजी संपर्कान् पीएनजी संपर्क रूपेण परिवर्तयितुं प्रयत्नाः प्रचलन्ति।
2: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है, तो एकदम हमने उस पर क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना सीएनजी की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं, इनफैक्ट एलपीजी के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू पीएनजी कनेक्शन।
1: अफगानिस्तान देशस्य कुनार खोस्त पट्टिका इत्येतेषु प्रान्तेषु पाकिस्तानी सैन्य वायु आक्रमणे न्यूनातिन्यूनं 13 जनाः मृताः, तेषु 11 बालकाः आसन्। एकस्मिन् वक्तव्ये तालिबान पक्षस्य प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद इत्यनेन आक्रमणस्य निन्दां कृत्वा नागरिक गृहाणि लक्ष्यीकृत्य आक्रमणं ह्यः रात्रौ अभवत् इति उक्तम्। सः अवदत् यत् पाकिस्तानस्य सेना पुनः एकदा अफगानिस्तान देशस्य वायुक्षेत्रस्य उल्लङ्घनं कृतम्, अपि च तत् मानवीय अपराधम् उक्तम्। पाकिस्तान अफगानिस्तान देशयोः मध्ये गत कतिपयेषु मासेषु वर्धमान द्वन्द्वस्य मध्ये एषा नवीनतमा घटना अभवत्, यत्र पुनः पुनः गोलिका प्रहारे नागरिकानां मृत्योः चिन्ता वर्धमाना अस्ति। अन्त्यक्रीडा वार्तायां, ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य पीवी सिंधु तन्वी शर्मा इत्येतयोः युगलं सिडनी नगरे महिला एकल क्रीडायाः द्वितीये चक्रे प्रविष्टम् इति वार्ताः।
3: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय शाम के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है महिलाओं के लिए हमारा कार्यक्रम घर गृहस्थी।

0: घर गृहस्थी कार्यक्रम सुनने वाली आप सभी ग्रामीण बहनों को कृष्णा कावेरी
1: और नीलू का
0: जोहार।
1: कृष्णा, इंतजार की घड़ी बहुत ही लंबी होती है, ऐसा सभी कहते हैं, पर सच में बहनों से मिलने के लिए एक सप्ताह का इंतजार करना, उफ, ऐसा लग रहा था जैसे घड़ी की सुई ही रुक गई हो। क्या तुमने भी ऐसा महसूस किया?
0: हाँ नीलू, मैंने इस खाली समय में सोचा क्यों न बहनों के लिए कुछ खास जानकारी इकट्ठा कर लूं।
1: वाह कृष्णा, तो बताओ आज हमारी बहनों के लिए क्या लेकर आई हो?
0: हाँ नीलू, हमने डॉक्टर अंजू प्रसाद से बातचीत की और जाना कि सर्वाइकल कैंसर के बारे में इनसे क्या बातचीत हुई और ये आपके लिए कितनी फायदेमंद है, ये आप जानेंगी बस थोड़ी देर में।
1: बहनों, आप सभी स्वस्थ रहें और अपने रोजमर्रा की दिनचर्या से थोड़ा समय निकालकर आराम भी कर लें, इसके लिए हमारी सरकार भी प्रयासरत है। आपके रसोई के कामों को आसान करने और आपको स्वस्थ रखने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसमें एक है उज्ज्वला योजना।
0: हाँ नीलू, बिल्कुल ठीक कहा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने हमारी बहनों को चूल्हे के धुएं से आजादी दिलाकर उनके स्वास्थ्य, समय और जीवन स्तर में बहुत ही बदलाव किया है। चूल्हे के धुएं से होने वाली बीमारियों जैसे टीवी, दमा और फेफड़ों की समस्या में काफी कमी आई है, क्योंकि रसोई के अंदर अब वायु प्रदूषण भी कम हुआ है।
1: हाँ कृष्णा, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। जहाँ पहले हमारी बहनों को ईंधन जुटाने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी और धुएं में घंटों खाना पकाना पड़ता था, वहीं LPG का इस्तेमाल करके वे अब समय बचा रही हैं।
0: हाँ नीलू, सबसे अच्छी बात तो ये है कि गैस कनेक्शन सीधे महिलाओं के नाम पर जारी होने से हमारी बहनें घर के आर्थिक और महत्वपूर्ण फैसलों का हिस्सा भी बन रही हैं, यानी वे सशक्त हो रही हैं। सरकार द्वारा इस योजना के लाभार्थी बहनों को प्रति LPG सिलेंडर पर विशेष सब्सिडी भी दी जाती है।
1: कृष्णा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का असर हमारे पर्यावरण पर भी पड़ रहा है। ईंधन में लकड़ी, जीवाश्म और कोयले का

0: माल घटने से जहां एक ओर वायु प्रदूषण कम हो रहा है, वहीं दूसरी ओर पेड़ों की कटाई भी कम हो रही है।
1: हाँ नीलू बहनों, इस योजना के इतने लाभ हैं। अगर अभी तक आपने इस योजना का लाभ नहीं उठाया है तो अवश्य उठाएं। ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं या अपने घर के पास मौजूद एलपीजी डीलर के पास जाकर पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकती हैं।

0: बहनों, आप स्वस्थ रहें, आपके आंखें भी सुरक्षित रहें। इसके लिए ज़रूरी है आंखों की सही देखभाल। बहनों, गर्मी का मौसम है, ऐसे में आंखों को तेज़ धूप से बचाने के लिए धूप चश्मा ज़रूर पहनें और सर को अच्छी तरह से ढक कर रखें। खाना हमेशा गैस चूल्हे पर ही पकाएं ताकि आंखों में धुआं ना जाए।
1: क्या बात है नीलू, आज अचानक तुम्हारा ध्यान आंखों की ओर कैसे चला गया?
0: अरे कृष्णा, क्या तुम्हें पता नहीं आज विश्व नेत्रदान दिवस है? जो
1: हाँ भाई, हाँ नीलू, हर वर्ष आज के ही दिन यानी 10 जून को विश्व नेत्रदान दिवस मनाया जाता है। बहनों इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है कि मृत्यु के बाद अपनी आंखें दान करें ताकि उनके नहीं होने के बाद भी उनकी आंखों से दूसरे दुनिया को देख सकें।
0: बहनों, नेत्रदान करके आप इस रंग बिरंगी दुनिया को तो देख ही सकती हैं और दूसरों को भी दिखा सकती है। बस जरूरत है थोड़ी जागरूकता की। बहनों, सबसे जरूरी बात तो ये है कि मृत्यु के 4 से 6 घंटे के अंदर ही नेत्रदान करना है। इसके लिए नेत्र बैंक को सूचित करना जरूरी है। इसमें पूरी आंख नहीं निकाली जाती बल्कि केवल कॉर्निया यानी पुतली का ही दान होता है।
1: बिल्कुल सही कहा नीलू। आपके मन में अनेक विचार आते होंगे कि कौन नेत्रदान कर सकता है, इसमें कितना समय लगता है और इसके लिए आई हॉस्पिटल जाना होगा, इन सब झंझटों में क्यों पड़ा जाए। तो बहनों, नेत्रदान कोई भी कर सकता है, चाहे डायबिटीज हो या हाई ब्लड प्रेशर हो या मोतियाबिंद का इलाज करवा चुके हों। ये प्रक्रिया इतनी सरल है कि आई बैंक से आकर प्रशिक्षित व्यक्ति केवल 15 से 20 मिनट में आंखों का कॉर्निया निकाल कर ले जाते हैं।
0: हाँ कृष्णा, इसलिए हमारी बहनें भी नेत्रदान करने के लिए पंजीकरण कराए। पंजीकरण और अन्य जानकारियों के लिए आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आधिकारिक पोर्टल की मदद ले सकती हैं।

0: कृष्णा हमारी बहनों के इर्द गिर्द ही सारा घर घूमता है। ऐसे में बेहद जरूरी है कि बहनें स्वस्थ रहे। इसके लिए इन्हें अपने खान पान पर भी ध्यान रखना चाहिए। अपने भोजन में दूध, मांस, मछली, अंडा, हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें और साबुत अनाज जरूर शामिल करें।
1: हाँ नीलू, और बहनें इसके साथ साथ अगर योग भी करें तो क्या ही बात है।
0: हाँ कृष्णा, ये तुमने बिल्कुल सही कहा। हमारी बहनों को अच्छी तरह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग बहुत ही जरूरी है। ये उनके जीवन के हर पड़ाव पर यानी मासिक धर्म, गर्भावस्था और मेनोपॉज के दौरान हार्मोनों को संतुलित करने, तनाव को कम करने, हड्डियों को मजबूत बनाने और ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने में भी मदद करता है।

0: तुमने बिल्कुल सही कहा नीलू, हमारी बहनें नियमित रूप से योग कर मासिक धर्म के दर्द, ऐंठन और पीसीओएस जैसी समस्या, और साथ ही यदि वे गर्भवती हैं तो योग करने से ये स्वस्थ रह सकती हैं। साथ ही रीढ़ की हड्डी को भी सहारा मिलता है, मांसपेशियां लचीली होती हैं और सामान्य प्रसव की संभावना बढ़ती है। शिशु के जन्म के बाद हल्के योगासन करने से तनाव कम होता है और शरीर फिर से वापस पुरानी अवस्था में आ जाती है।
1: कृष्णा, ये तो तुमने बहुत ही अच्छी बात हमारी बहनों को बताई, क्योंकि गर्भावस्था में कमर दर्द और बच्चे के जन्म के बाद बढ़े शरीर का आकार को लेकर हमारी बहनें बहुत ही परेशान रहती है। पर मुझे लगता है इस दौरान कोई भी योग करने से पहले हमारी बहनों को डॉक्टर या योग प्रशिक्षक से सलाह जरूर लेनी चाहिए, क्यों, क्या कहती हो?
0: हाँ नीलू, बहनों जब आप घर और बाहर की दोहरी जिम्मेदारी निभा रही हैं तो ऐसे में मानसिक तनाव होता ही है। आप प्राणायाम और ध्यान यानी मेडिटेशन कर अपने मन को शांत कर सकती हैं, साथ ही अवसाद से भी बच सकती हैं। बहनों, एक स्वस्थ शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग बहुत ही जरूरी है, तो अपने व्यस्त जिंदगी से थोड़ा समय अपने लिए निकालें और योग अवश्य करें।

0: भानु, आइए अब सुने प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंजू प्रसाद से कृष्णा कावेरी की बातचीत।
1: कारण, लक्षण और बचाव। बहनों, इसी विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अंजू प्रसाद, जो टाटा मोटर्स अस्पताल की प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर अंजू प्रसाद, आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार, धन्यवाद कावेरी जी, मुझे आभारी हूँ कि उन्होंने इस अपने माध्यम से मुझे यह मौका दिया कि इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके।
1: जी डॉक्टर, डॉक्टर सबसे पहले आप हमारी बहनों को ये बताइए कि सर्वाइकल कैंसर क्या है और ये महिलाओं में किन कारणों से होता है।
2: सबसे पहले हम यह उनको समझाना चाहेंगे कि सर्विक्स किसे कहते हैं।
1: जी,
2: जो बच्चेदानी होती है उसके नीचे के सबसे नीचे के भाग को सर्विक्स कहा जाता है, या आप यूं समझ सकते हैं कि बच्चेदानी के मुंह को सर्विक्स कहते हैं।
1: जी,
2: और यह कैंसर उसी भाग का कैंसर होता है।
1: जी,
2: और यह कैंसर भारत में महिलाओं में पाया जाने वाला दूसरा सबसे कॉमन कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर के बाद।
1: जी, और ये किस वायरस से फैलता है?
2: इसका सबसे प्रमुख कारण है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस नाम का वायरस, जिसको HPV भी बोलते हैं। 80% केसेस में इसी वायरस की वजह से यह कैंसर होता है।
1: जी,
2: 80,000 लोग प्रतिवर्ष इस कैंसर के शिकार हो रहे हैं, मतलब इस कैंसर की वजह से उनकी जान जा रही है।
1: जी डॉक्टर, मेरा अगला सवाल ये है कि यदि किसी महिला को सर्वाइकल कैंसर हो गया है तो ये कैसे पता चलता है, यानी इसके क्या लक्षण होते हैं?
2: यह कैंसर की सबसे बड़ी बात यह है कि इसके जो लक्षण होते हैं वह बहुत सामान्य लक्षण होते हैं, जिसके लिए बहुत बार महिलाएं जिस पर ध्यान भी नहीं देती हैं और वह अपने डॉक्टर के पास जाती भी नहीं है।
1: जी,
2: वैसे भी एक स्त्री रोग प्रसूति रोग विशेषज्ञ के पास जाने में लोग झिझकते हैं, उनको लगता है कि उनकी अंदरूनी जांच होगी, तो यह झिझक की वजह से भी वो अपने सामान्य लक्षणों को ध्यान नहीं देती है। इस कैंसर की सबसे महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि जो वाइट डिस्चार्ज होता है उसमें बदबू आने लगती है।
1: जी,
2: या फिर संबंध बनाने के बाद, यौन संबंध के बाद ब्लीडिंग होती है, अगर मासिक बंद हो चुकी है जिसे मेनोपॉज कहते हैं,
1: जी,
2: बंद होने के बाद दोबारा से ब्लीडिंग शुरू हो रही है, ये सब सबसे सामान्य लक्षण है सर्वाइकल कैंसर के।
1: जी डॉक्टर, मेरे मन में एक और सवाल आ रहा है कि क्या ये कैंसर सिर्फ महिलाओं में ही होता है या पुरुष भी इस प्रकार की बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं, इसके बारे में भी बताइए।
2: सर्वाइकल कैंसर तो पुरुषों में नहीं होता है क्योंकि यह तो बच्चेदानी का कैंसर है, बच्चेदानी के मुंह का, पर इससे मिलता जुलता जो पुरुषों में लिंग का कैंसर, ये सारे कैंसर भी इसी वायरस के इन्फेक्शन से हो सकते हैं।
1: डॉक्टर, अब बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर से बचाव और रोकथाम के विषय में, तो क्या सर्वाइकल कैंसर से बचाव संभव है? इसके लिए कौन सी जांच की जाती है और कौन सी वैक्सीन कितने उम्र में लगाई जाती है?
2: सर्वाइकल कैंसर के लिए सबसे अच्छी बात है कि इसके लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट जिसे हम बोलते हैं, जो इस कैंसर के बहुत शुरुआत के स्टेज को या फिर इस कैंसर से होने से पहले वाले चेंजेस को भी उसमें पता लगाया जा सकता है। इस स्क्रीनिंग टेस्ट का नाम है पैप स्मियर टेस्ट।
1: जी,
2: और इसके साथ साथ एक HPV वायरस का भी टेस्ट होता है।
1: जी,
2: तो सबसे अच्छी बात है कि ये अस्पताल में हर जगह उपलब्ध है। पैप स्मियर टेस्ट में एक 2 मिनट का टेस्ट है जिसमें आपकी अंदरूनी जांच की जाएगी, और इस टेस्ट में कोई भी दर्द नहीं होता है, कोई भी तकलीफ नहीं होती है, और हर 3 साल पे महिलाएं यह टेस्ट करा सकती हैं।
1: जी डॉक्टर, और वैक्सीन कितने उम्र में लगाई जाती है?
2: हाँ, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस या HPV की वैक्सीन हमारे यहाँ उपलब्ध है, और इसमें 2 तरह की वैक्सीन आपको मार्केट में मिलेगी, एक जिसमें 4 टाइप के HPV वायरस की वैक्सीन होती है और एक 9 टाइप के HPV वायरस की वैक्सीन है। वैक्सीन बहुत ही इफेक्टिव होती है और इसको लगाने का सही समय है 9 से 15 साल की लड़कियां, जिसमें कि इसके 2 डोज दिए जाते हैं 6 महीने के डिफरेंस पर।
1: जी,
2: और यदि 15 साल से ऊपर है तो 15 से 45 साल की महिलाएं भी इस वैक्सीन को लगवा सकती हैं, पर उनमें इसके 3 डोज लगेंगे।
1: जी डॉक्टर, अंत में आप हमारी बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगी ताकि बहनें सर्वाइकल कैंसर से सेफ रहें और सुरक्षित रहें?
2: सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षित रहने के लिए सबसे जरूरी है कि आप किसी भी असामान्य लक्षण को नज़रअंदाज ना करें और अपने डॉक्टर के पास दिखाने के लिए जाएं
3: जी।
2: उसके अलावा आप यह स्क्रीनिंग टेस्ट करवाएं और हर 3 साल में इसे रिपीट करें। अपनी बच्चियों को HPV वैक्सीन जरूर दिलाएं। यह जो वैक्सीन जो है वो लड़कों को भी दी जा सकती है, इसका भी प्रावधान हो रहा है
3: जी,
2: तो उनको भी उस तरह के कैंसर से सुरक्षा दे सकता है। एक खुशी की बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस साल फरवरी 2026 से इस वैक्सीन का पहला डोज फ्री किया है, जो 14 साल की लड़कियों को पहला डोज गवर्नमेंट फ्री दे रही है,
3: तो बहुत अच्छी बात है।
2: हाँ, ये एक नया बदलाव आया है, तो यह बहुत जरूरी है कि महिलाएं किसी भी तरह की लक्षण को अपने डॉक्टर को जरूर बताएं।
3: बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने। सर्वाइकल कैंसर कारण, लक्षण और बचाव, इस विषय पर आपने हमारी बहनों को बहुत ही अच्छे से और विस्तार से पूरी जानकारी दी। आशा करते हैं कि हमारी बहनें भी इन महत्वपूर्ण जानकारियों से भरपूर लाभ अवश्य उठाएंगी। डॉक्टर अंजू प्रसाद, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद कावेरी जी।
0: अभी आप डॉक्टर अंजू प्रसाद से जान रही थी सर्वाइकल कैंसर के बारे में, कारण, लक्षण और बचाव। उनसे बातचीत कर रही थी हमारी सहयोगी कृष्णा कावेरी।

0: इस जानकारी के बाद बनवाई अब एक नज़र डाले कल के मौसम पर। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, क्षेत्रीय प्रभाग रांची और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार कल यानी 11 जून दिन गुरुवार को जिला पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा और इसके आसपास के क्षेत्रों का मौसम कुछ इस प्रकार होगा। अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 87% और न्यूनतम 47%। हवा उत्तर से पूर्व 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी और 0.6 मिलीमीटर तक बारिश होने की भी संभावना है।
1: बहनों, इस समय आप धान की नर्सरी तैयार कर सकती हैं। अगर आप अरहर की बुआई करना चाहती हैं तो बीज किसी प्रमाणित स्रोत से ही खरीदें और बीजों को बोने से पहले राइजोबियम और फास्फोरस की घुलनशील बनाने वाले घोल तथा जीवाणुओं फफूंद के टीकों से भी उपचारित करें और खेतों में बुआई से पहले इस बात का ध्यान रखें कि खेत में पर्याप्त नमी हो, इससे अंकुरण अच्छा होता है। अरहर की उन्नत किस्में पूसा अरहर 16, पूसा 2001, पूसा 2002, पूसा 991, पूसा 992, पारस और मानक।

बनो, इस समय आप गर्मा धान की कटाई कर रही हैं, तो क्यों ना एक भोजपुरी धन कटनी गीत ही सुना जाए। कलाकार है नरेश कुमार सिन्हा।

0: अरे नीलू, तुमने हमारी बहनों को इतना प्यारा सा गीत सुनवाया, हमारी बहनों को खूब पसंद आया होगा, क्यों बहनों?
1: हाँ कृष्णा, तुमने सही कहा। बहनों एकता में बल होता है, ये तो हम सभी मानते हैं। पर क्या आप सब बहनें एकजुट होकर आत्मनिर्भर भी बन सकती हैं, ये आप जानती हैं क्या?
0: क्या बात कर रही हो नीलू?
1: अरे कृष्णा, तुम्हें पता है हमारी बहनें एक अगर समूह बना लें तो वे अपने हुनर को निखार करके आत्मनिर्भर बन सकती है। वे सामूहिक रूप से सिलाई, कढ़ाई, अचार और हस्तशिल्प जैसे स्वरोजगार शुरू कर सकती है। हमारी 10 से 20 बहनें अगर चाहें तो एक समूह बना सकती हैं और हर महीने अपनी बचत की छोटी सी राशि इस स्वयं सहायता समूह के बैंक खाते में जमा भी कर सकती है। जब समूह के पास पर्याप्त बचत जमा हो जाए तो वे अपनी किसी सदस्य को घर बनाने या कोई अन्य काम करने के लिए भी लोन भी दे सकती हैं, और अगर वो कोई छोटा व्यापार शुरू करना चाहे तो इसमें भी मदद कर सकती हैं। और लोन के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत ही कम ब्याज दर पर यह लोन मिलती है।
0: हाँ नीलू, समूह में काम करने से महिलाओं में निर्णय लेने की क्षमता और आत्मविश्वास बढ़ता है। कुछ महीने के बेहतर कामकाज के बाद सरकारी योजनाओं के तहत बहनों के समूहों को सीधे बैंकों से बड़ा ऋण भी मिल सकता है। सरकार समय समय पर समूहों की महिलाओं को विभिन्न प्रकार की प्रशिक्षण भी देती है, जैसे सिलाई कढ़ाई, जैविक खेती, मोमबत्ती बनाना, अगरबत्ती बनाना, पशुपालन। इससे हमारी बहनें नए नए काम सीखकर न केवल आत्मनिर्भर होती हैं बल्कि समूह के माध्यम से अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक होती हैं और एक दूसरे के सुख दुख में खड़ी रहती हैं। अकेले उत्पाद बेचने की तुलना में समूह में काम करने से मार्केटिंग आसान हो जाती है और उन्हें अपने उत्पाद का उचित मूल्य भी मिल जाता है।
1: बहनों, हमारे यहाँ सदियों से महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता रहा है और आज भी पूजा जाता है, पर यह बड़े ही विडम्बना है कि जब हम शक्ति का रूप इन्हें मानते हैं वहीं हमारे घरों में इन्हें प्रताड़ित किया जाता है, उनके साथ हिंसा की जाती है, उन्हें कई बार शारीरिक और मानसिक कष्ट भी दिया जाता है।
0: हाँ नीलू, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये हर स्तर पर होता है, चाहे समाज का कोई भी वर्ग हो, आर्थिक स्थिति अलग हो, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, घरेलू हिंसा होता ही है। खासकर छोटे बच्चों और महिलाओं के साथ ये ज्यादा होता है।
1: बहनों, कोई भी ऐसा काम जो किसी महिला या 18 वर्ष से छोटे लड़के लड़कियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन पर संकट, आर्थिक क्षति, जिससे महिला और बच्चों को दुख और अपमान सहना कर पड़े, ये सब घरेलू हिंसा कहा जाता है।
0: हाँ नीलू, इतना ही नहीं, किसी महिला का विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध करना, उसके चरित्र पर दोषारोपण, उसे जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना, भले ही वो व्यक्ति उसका पति ही क्यों न हो, महिला की पारिवारिक और सामाजिक प्रतिष्ठा को आहत करना भी घरेलू हिंसा ही है।
1: बहनों, हमारी आपस की ढेर सारी बातचीतें हो गई और मनोरंजन भी,

0: पर घड़ी की सुई बता रही है कि अब कार्यक्रम संपन्न होने का समय हो गया है। तो आज का साथ बस इतना ही। नीलू
1: कृष्णा को दीजिए इजाजत।
0: जोहार।

घर गृहस्थी, ये था ग्रामीण महिलाओं के लिए हमारा कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय शाम के 6:55 हुए हैं। हमारा अगला प्रसारण कुछ ही पलों में आकाशवाणी के रांची केंद्र से, जहां से 7 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 7:10 पर जिले में आज कल।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों को दिया जनसेवा और जन आकांक्षाओं पर ध्यान देने का मंत्र, 3 प्रस्ताव स्वीकृत। राज्यपाल ने शर्तों के साथ राज्य सूचना आयोग में 4 सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को दी मंजूरी, मुख्य सूचना आयुक्त की शीघ्र नियुक्ति पर बल। राज्यसभा चुनाव में एनडीए समर्थित परिमल नाथ वाणी का नामांकन वैध घोषित, नाम वापसी का कल आखिरी दिन, जरूरत पड़ने पर 18 जून को मतदान। राज्य में 3-4 दिनों में मॉनसून के प्रवेश करने की संभावना, कई इलाकों में 16 जून तक बारिश के आसार। और रांची के जेएससीए स्टेडियम में आयोजित जेपीएल के पहले मुकाबले में रांची टाइटंस ने छोटा नागपुर रॉयल्स को 5 रनों से हराया। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार 2 कार्यकाल तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी। मंत्रिमंडल की बैठक में विकास और जन कल्याण के 3 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों को जनसेवा और जन आकांक्षाओं पर ध्यान देने का मंत्र दिया।
5: प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने गरीब कल्याण को शासन के केंद्र में स्थापित किया है। युवा शक्ति को भारत की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं, और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कौशल विकास, स्टार्टअप इंडिया, इनोवेशन, डिजिटल इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, उद्यमियता और फिटनेस को बहुत एक एम्फेसिस के साथ कई तरह के प्रोग्राम्स बनाए। बीते 12 वर्षों में वुमेन लेड एम्पावरमेंट, वुमेन लेड डेवलपमेंट का एक नया अध्याय भारत की विकास यात्रा से जुड़ा है। आपने देखा, करीब करीब हर कैबिनेट मीटिंग में हमारे अन्नदाताओं के लिए कुछ न कुछ प्रोग्राम होता ही होता है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में निरंतर सेवा, समर्पण और सुशासन का ऐतिहासिक कीर्तिमान बनाया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने श्री मोदी को इस ऐतिहासिक कीर्तिमान के लिए बधाई दी है। उन्होंने रांची में प्रेस वार्ता में कहा कि पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने हर मोर्चे पर सफलता पाई है।
6: मुद्रा लोन योजना के माध्यम से 25 करोड़ युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया है। एक गरीब माँ बाप का बेटा प्रधानमंत्री बना है, जो गरीबों की चिंता करने का काम विगत 12 वर्षों से किया है। जो व्यक्ति इलाज के अभाव में तड़प तड़प के गाँव में मर जाता था, जो भूखा व्यक्ति पेट में खर्चा बांध करके पेट के बल 100 रुपए भूख मिटाता था, आज किसानों से पूछे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके साथ नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है।
4: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। अनुज कुमार सिन्हा, तनुज खत्री, अमूल्य नीरज खलखो और शिवपूजन पाठक की सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति हुई है। राज्यपाल ने इन नियुक्तियों को कुछ शर्तों के साथ अनुमोदित किया है। श्री गंगवार ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि झारखंड राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति

0: शीघ्र सुनिश्चित की जाए ताकि आयोग का कार्य सुचारू तरीके से संचालित हो सके। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं बल्कि चरित्र निर्माण, सामाजिक चेतना तथा राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना भी है। राज्यसभा चुनाव में एनडीए समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी का नामांकन स्वीकार कर लिया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर ने दो दिनों तक चली जांच और आपत्तियों के बाद श्री नाथवानी के नामांकन को वैध मानते हुए उसे मंजूरी दे दी है। इससे राज्यसभा चुनाव में उनके उम्मीदवार बने रहने का रास्ता साफ हो गया है। गौरतलब है कि झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव कराए जा रहे हैं जिसके लिए कुल 3 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार प्रत्याशी कल तक नाम वापस ले सकते हैं जबकि आवश्यकता पड़ने पर 18 जून को मतदान कराया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्के ने कहा है कि किसानों को उर्वरकों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। खाद की कालाबाजारी को रोकने के लिए विभाग कड़े कदम उठा रहा है। केंद्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर राज्य सरकार कृषि विकास और किसान कल्याण पर जोर दे रही है।
1: यूरिया डीएपी जो है और फर्टिलाइजर्स जो है वो केंद्र सरकार से ही हम लोगों को अलॉटमेंट प्राप्त होता है। वैश्विक स्तर पे युद्ध चलने के कारण भी इन चीजों का निर्यात में कमी आया है। राज्य के किसानों को भी अपेक्षाएं हैं, केंद्र सरकार को किसी न किसी रूप से इन अपेक्षाओं को पूरा करना चाहिए। राज्य सरकार पूरा सहयोग करेगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री के टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष का विषय 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास है। बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख शामिल होंगे। बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दिल्ली रवाना हुए। राज्य भर में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया है कि राजनीतिक दलों ने विभिन्न मतदान केंद्रों के लिए 59,340 बूथ लेवल एजेंट BLA-2 की नियुक्ति की है। इधर झामुमो की ओर से बोकारो में BLA के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे ने एसआईआर से संबंधित जानकारी दी।
2: अगर किसी भी तरह का उनको परेशानी हो तो उनको सहयोग करने के लिए पंचायत कमेटी, बूथ कमेटी और BLA-2 के साथ में कदम से कदम मिला के चलने का काम करेगी। पंचायत कमेटी को सहयोग करने के लिए प्रखंड कमेटी को सहयोग करने के लिए जिला कमेटी और जिला कमेटी को सहयोग करने के लिए केंद्रीय समिति के लोग रहेंगे।
0: हजारीबाग जिले के इचाक प्रखंड का आरा गांव आजादी के 78 वर्ष बीत जाने के बाद भी कनेक्टिविटी से दूर है। गांव की मुखिया सुनीता देवी का कहना है कि 2 वर्ष पहले पुल निर्माण को लेकर निविदा हुई थी लेकिन राज्य सरकार की विफलता के कारण काम शुरू नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि पुल और पक्की सड़क के लिए क्षेत्र के लोग तरस रहे हैं।
3: पोखरिया से आरा जाने के लिए रास्ता बहुत ही खराब है जिसमें लकड़ी का पुल बनाया गया है उसी से आवागमन अभी हो रहा है। यहाँ पे टेंडर लगभग 2 साल पहले हो चुकी है जो अभी तक कार्य स्टार्ट भी नहीं किया गया है। यह कार्य को तो 2 साल पहले ही शुरू कर देना चाहिए जो अभी बहुत विलम्ब हो रहा है और वहाँ के जनता को काफी परेशानी झेलना पड़ रहा है।
0: और अब मौसम का हाल। दक्षिण पश्चिम मानसून झारखंड की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार मानसून के अगले 3-4 दिनों में राज्य में प्रवेश करने की संभावना है। केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक

रांची समेत राज्य के कई क्षेत्रों में 16 जून तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं। इस अवधि में कई जिलों में आंधी और वज्रपात की आशंका है, जिसे लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड T20 प्रीमियर लीग का आज से आगाज हो गया। रांची के JSCA स्टेडियम में आज खेले गए पहले मुकाबले में रांची टाइटंस ने छोटा नागपुर रॉयल्स को 5 रनों से पराजित कर दिया। रांची टाइटंस की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 155 रन बनाए, लक्ष्य हासिल करने उतरी छोटा नागपुर रॉयल्स की टीम 150 रन ही बना सकी। लीग का दूसरा मुकाबला रात 8 बजे से कोयलांचल सुपर किंग्स और जमशेदपुर स्टीलर्स के बीच होगा। अब से थोड़ी देर में JPL का औपचारिक उद्घाटन होगा, जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी मौजूद रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों को दिया जनसेवा और जन आकांक्षाओं पर ध्यान देने का मंत्र, 3 प्रस्ताव स्वीकृत। राज्यपाल ने शर्तों के साथ राज्य सूचना आयोग में 4 सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को दी मंजूरी, मुख्य सूचना आयुक्त की शीघ्र नियुक्ति पर बल। राज्यसभा चुनाव में NDA समर्थित परिमल नाथवानी का नामांकन वैध घोषित, नाम वापसी का कल आखिरी दिन, जरूरत पड़ने पर 18 जून को मतदान। राज्य में 3-4 दिनों में मॉनसून के प्रवेश करने की संभावना, कई इलाकों में 16 जून तक बारिश के आसार। और रांची के JSCA स्टेडियम में आयोजित JPL के पहले मुकाबले में रांची टाइटंस ने छोटा नागपुर रॉयल्स को 5 रनों से हराया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: आप सुनेंगे गिरिडीह जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे गिरिडीह संवाददाता।
1: गिरिडीह जिले में गरीबों को प्रधानमंत्री आवास देकर उनके जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास जारी है। गिरिडीह के उप विकास आयुक्त अस्मिता कुमारी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में 1,09,000 से अधिक लाभुकों का गृह प्रवेश कराया गया है।
2: गिरिडीह जिला अंतर्गत अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत कुल 1,09,410 आवास पूर्ण करा करके उन सभी लाभुकों को गृह प्रवेश करवा दिया गया है। शेष हमारे जिले में 18,150 आवास का कार्य निर्माणाधीन है, जिसे निकट भविष्य में शीघ्र कराते हुए उनको भी गृह प्रवेश कराया जाएगा।
1: गिरिडीह शहर को महानगरीय सुविधा देने के लिए नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने कई योजनाओं की स्वीकृति दी है। नगर निगम के उप नगर आयुक्त प्रशांत लायक ने बताया कि उसरी नदी में अब शहर का नाली का गंदा पानी नहीं जाएगा, साथ ही उसरी नदी के किनारे रिवर फ्रंट बनेगा।
3: हमारे नगर विकास विभाग के द्वारा जो था पूर्व में गिरिडीह नगर निगम को उसरी नदी संरक्षण और पर्यावरण का जो उसमें देख रहे होंगे स्वच्छता बनाने के लिए 6 करोड़ रुपये राशि उपलब्ध थी, लेकिन वर्तमान में हमारे मंत्री जी के यहाँ रहने से एक दिन उनका दिशा निर्देश था कि इसको स्वच्छ बनाने को लेकर कार्य योजना तैयार करने के लिए, तो उसको लेके हम लोगों ने एक DPR बनवाया एक एजेंसी के माध्यम से, और उसमें जैसे एक है कि रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, उसमें 15 करोड़ की राशि स्वीकृत हो चुकी है, और दूसरा है हम लोग को दिया गया है STP सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिससे नदी का पानी जो शहर से नदी में पानी जो गंदा जा रहा था उसको हम लोग अब उसका एक तरह से कहिएगा कि STP जो ये निर्माण हो रहा है उसे शुद्ध कर सके उस पानी को और नदी में प्रभावित कर सके। दो योजना झारखंड सरकार का जो हमारे माननीय मंत्री जी के पहल से ये चल रहा और ये पाइपलाइन में ये योजना अभी समझ लीजिए कि फाइनल स्टेज पर।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष पूरा होने पर गिरिडीह की महिलाएं खुश हैं। डुमरी की लिलुआ देवी

0: का कहना है कि सरकार ने गैस राशन से लेकर के उन्हें कई योजनाओं का लाभ दिया है।
1: हमार नाम लीलवा देवी लगो, घर डुमरी, जिला गिरिडीह। हमनी मोदी सरकार गैस दलियो बहुत दिक्कत है बोलो हमनी के, तो हमनी के लकड़ी पत्थर सब मतलब कि भीन जालो, खाना पीना बने ही ना पारो लियो। मोदी सरकार हमनी के गैस दलियो हो तो बड़ी सुविधा कर लियो, हमनी खाना भी बना लियो, अपना काम में भी निकल जाए, बच्चा स्कूल भेज लियो। अब प्लस में हमनी मोदी सरकार दलियो हो राशन दे लो, कम से कम 5-6 साल से बेसी भे गलो, फ्री राशन भी हमनी खिलाए रहो, पैसा भी दे रहा हमने के।
0: प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना पीएम अजय के तहत गिरिडीह जिले के 99 गांवों का समग्र विकास के लिए सर्वे चल रहा है। जिला कल्याण पदाधिकारी जयप्रकाश मेहरा ने बताया कि इस योजना के तहत जिले के अनुसूचित जाति से आच्छादित गांवों का विकास करना है। जिले के सरिया और डुमरी प्रखंड के एक एक गांव को शामिल किया जा रहा है। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह।
2: अभी आप सुन रहे थे गिरिडीह जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

एफ एम 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जमशेदपुर। प्रस्तुत है बंगला प्रेमी श्रोताओं के लिए हमारा दैनिक बंगला कार्यक्रम।

ये था बंगला प्रेमी श्रोताओं के लिए हमारा दैनिक बंगला कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 102.4 मेगा हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है साप्ताहिक विज्ञान पत्रिका जिज्ञासा।

कार्यक्रम जिज्ञासा के सभी श्रोता दोस्तों को संतोषी का नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी श्रोता दोस्तों का। दोस्तों, नए वेदर रिपोर्ट के अनुसार प्रशांत महासागर के तापमान में जबरदस्त उछाल आने वाला है, क्योंकि वहां बेहद ताकतवर अल नीनो आकार ले रहा है। भूमध्य रेखा के पास समुद्र का तापमान औसत से 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ज्यादा हो सकता है। यह आंकड़ा नवंबर तक छूने की उम्मीद है। अगर यह आशंका सच होती है तो यह अब तक का सबसे भयंकर अल नीनो इवेंट होगा। इतिहास के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। दोस्तों, अल नीनो का बड़े पैमाने पर असर जलवायु परिवर्तन के तौर पर होगा। भयानक गर्मी और सूखे जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। मौसम का ये बदला मिजाज खेती और आम जीवन को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। इससे कई देशों की इकोनॉमी को भारी नुकसान पहुंच सकता है। अल नीनो एक नेचुरल क्लाइमेट पैटर्न है। ये तब बनता है जब सेंट्रल और ईस्टर्न ट्रॉपिकल प्रशांत महासागर की सतह असामान्य रूप से गर्म होती है। हालांकि ये वार्मिंग दुनिया के कई देशों से बहुत दूर होती है, फिर भी ये ग्लोबल वेदर पैटर्न को पूरी तरह बदल कर रख देती है। समुद्र के तापमान में होने वाला बदलाव हवाओं के सर्कुलेशन को प्रभावित करता है। इससे कहीं बारिश और तापमान का बैलेंस बिगड़ जाता है, कहीं भयंकर सूखा तो कहीं विनाशकारी बाढ़ का सामना करना पड़ता है। भारत के लिए भी ये प्रभावकारी होगा, क्योंकि ये साउथ वेस्ट मानसून को प्रभावित करता है और भारत की सालाना बारिश का 70% इसी मानसून से आता है। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि इसकी वजह से मानसून कमजोर हो, फिर भी भारत में सूखे वाले कई साल मजबूत अल नीनो से जुड़े हुए हैं, इसलिए ऐसा माना जा सकता है। दोस्तों, इस साल के आखिर और अगले साल के शुरुआत के मौसम का मिजाज काफी बदल सकता है। इससे खरीफ और रबी दोनों फसल प्रभावित होने की आशंका है। पिछले कुछ सालों में अल नीनो का प्रभाव फसलों पर देखा गया है। आने वाले सालों में हीट वेव का खतरा भी ज्यादा बढ़ सकता है। गर्मी अगर इसी तरह बढ़ती रही तो पीने के पानी का संकट भी बढ़ जाएगा। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले महीनों में सीजनल फोरकास्ट में कुछ बदलाव हो सकते हैं। दुनिया भर की क्लाइमेट एजेंसियां प्रशांत महासागर और वायुमंडल की हालत की लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। आने वाले महीनों की वेदर अपडेट की तस्वीर और ज्यादा साफ होगी। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग पहले से ही एक बड़ी समस्या है। ऐसे में 3.5

का सबसे बड़ा खतरा बताया जा रहा है। यह खतरा तृतीय विश्व युद्ध या किसी क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी से टकराने से भी बड़ा माना जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग अर्थात भूमंडलीय तापन के लिए सबसे जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैस है, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन तथा नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसें प्रमुख हैं। ग्रीन हाउस गैसों का इस्तेमाल सामान्यतः अत्यधिक सर्द इलाकों में उन पौधों को गर्म रखने के लिए किया जाता है जो अत्यधिक सर्द मौसम में खराब हो जाते हैं। ऐसे में इन पौधों को कांच के बंद घर में रखा जाता है और कांच के घर में ग्रीन हाउस गैस भर दी जाती है। यह गैस सूरज से आने वाली किरणों की गर्मी को सोख लेती है और पौधों को गर्म रखती है। ठीक यही प्रक्रिया पृथ्वी के साथ भी होती है। पृथ्वी की सतह पर मौजूद ग्रीन हाउस गैसें सूरज की गर्मी को अवशोषित कर पृथ्वी के तापमान बढ़ाने का कार्य करती है। ग्रीन हाउस गैसें वो गैस होती है जो पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर यहाँ का तापमान बढ़ाने में कारक बनती है। पर्यावरण वैज्ञानिकों के अनुसार इन गैसों का उत्सर्जन अगर किसी प्रकार से चलता रहा तो 21वीं सदी में पृथ्वी का तापमान 3 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इसके परिणाम बहुत घातक होंगे। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी का तापमान बढ़ने से विश्व भर में जलवायु का मिजाज बदल रहा है। प्राकृतिक वातावरण में लगातार परिवर्तन होने से पशु पक्षियों और पेड़ पौधों की 50 से 80% प्रजातियाँ नष्ट हो चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार समुद्र क्षेत्र में तापमान में वृद्धि होने से हिंद महासागर में प्रवाल भीति नष्ट हो गई है। ग्लोबल वार्मिंग का यह असर मौसम पर सर्वाधिक पड़ा है। रिपोर्ट में सबसे चौंकाने वाला पहलू है समुद्र के किनारे बसे हुए शहरों के डूबने का खतरा। दुनिया की कई हिस्सों में बर्फ की बिछी चादरें पिघलने से समुद्र का जलस्तर कई फीट ऊपर तक बढ़ जाएगा। समुद्र के इस वर्ताव से दुनिया के कई हिस्से जलमग्न हो जाएंगे, भारी तबाही मचेगी। जलवायु परिवर्तन से पृथ्वी के कुछ भागों में भयंकर सूखा पड़ेगा, वहीं अन्य भूभागों पर भयंकर बाढ़ें आएगी। पृथ्वी के औसत तापमानों में वृद्धि होने के फलस्वरूप मौसमीय बदलाव का सीधा प्रभाव कृषि उत्पादन पर पड़ेगा। पृथ्वी पर वर्तमान में महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र रेगिस्तानी भागों में परिवर्तित हो जाएंगे। ग्रीन हाउस प्रभाव से मानव के शरीर में अनेक शारीरिक विकार उत्पन्न होंगे। वर्तमान में सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करने वालों में प्रथम स्थान चीन का है, जो विश्व का 24% गैस उत्सर्जित करता है। दूसरा स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका का है, जो 19% गैस उत्सर्जित करता है। अपना देश भारत तृतीय स्थान पर है, जो 6.1% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करता है, जबकि रूस 5.6% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित कर चौथे स्थान पर है। सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र से होता है, जबकि उद्योग, वानिकी तथा परिवहन भी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने वाले अन्य क्षेत्र हैं। ग्लोबल कार्बन बजट के वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार सन 2013 में विश्व में जीवाश्म ईंधन का उत्सर्जन 40 अरब टन हुआ, जो तय मानक स्तर से 65% अधिक है। अधिकतर राष्ट्र यह मानते हैं कि उनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रही है, लेकिन सच है कि इसके लिए कोई भी जिम्मेवार हो, भुगतना सबको है। अतएव इससे बचने के लिए भी वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयास की जरूरत है। इस वैश्विक संकट से निपटने के लिए अब वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ी है और पहल भी किए जाने लगे हैं। 28 नवंबर से 2 दिसंबर 2006 कनाडा की राजधानी मॉन्ट्रियल में संयुक्त राष्ट्र का 11वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुए। 30 अप्रैल से 4 मई 2007 थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन हुए। दिसंबर 2009 डेनमार्क के कोपेनहेगन में अमेरिका और ब्रिक्स देशों के बीच गैर बाह्यकारी राजनीतिक समझौता। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त

0: राष्ट्र के अभी समय द्वारा समय समय पर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस पारिस्थितिक संकट से निपटने के लिए मानव को सचेत रहने की जरूरत है। दुनिया भर की राजनीतिक शक्तियां इस बहस में उलझी है कि गर्माती धरती के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाए। यह बहस जारी रहेगी, लेकिन ऐसी कई छोटी पहल है जिनसे हम शुरू करें तो धरती को बचाने में अपना योगदान कर सकते हैं। भूमंडलीय तापन या ग्रीन हाउस गैस के विनाशकारी प्रभाव से बचने का उपाय यह है कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैसों कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन दर को धीमा किया। वैज्ञानिकों का मानना है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन में प्रतिवर्ष 5% की कटौती करनी होगी। फ्रीज, एयर कंडीशनर, कूलिंग मशीनों का उपयोग कम किया जाए अथवा ऐसी मशीनों का उपयोग किया जाए जिससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस कम निकलती हो। जीवाश्म ईंधन के स्थान पर सौर ऊर्जा, जैव ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अधिकाधिक उपयोग को बल प्रदान किया जाए। जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए। कृषि क्षेत्रों में रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का सीमित उपभोग कर जैविक खाद का अत्यधिक उपयोग किया जाए। विश्व स्तर पर ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैसों के उत्पादन तथा उपभोग पर रोक लगाने वाले अंतर्राष्ट्रीय संधियों तथा कानूनों का अनुपालन करने हेतु प्रभावी उपाय किए जाए। औद्योगिक इकाइयों में चिमनियों से निकलने वाले धुआं से प्रदूषण रोकने का तकनीक लगाया जाए। उद्योगों और खासकर रासायनिक इकाइयों से निकलने वाले कचरे को पुनः उपयोग की तकनीक लगाया जाए। वाहनों से निकलने वाले धुएं का प्रभाव कम करने के लिए पर्यावरण मानकों का सख्ती से पालन किया जाए। वनों का संरक्षण, वृक्षारोपण को बढ़ावा एवं जंगलों को आग लगने से बचाया जाए। अब औद्योगिक घरानों ने भी इस दिशा में पहल शुरू कर दी है। ग्लोबल वार्मिंग रोकने का कोई इलाज नहीं है। हम इसके बारे में सिर्फ जागरूकता फैलाकर ही इससे लड़ सकते हैं। हमें अपनी पृथ्वी को सही मायने में ग्रीन बनाना होगा। अपने कार्बन फुटप्रिंट्स अर्थात प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन को कम करना होगा। हम अपने आसपास के वातावरण को प्रदूषण से जितना मुक्त रखेंगे, इस पृथ्वी को बचाने में उतनी ही बड़ी भूमिका निभाएंगे।
1: ग्लोबल वार्मिंग, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे विनोद कुमार। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना संतोषी झा के साथ। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक विज्ञान पत्रिका जिज्ञासा।
1: हेलो डॉक्टर,
2: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
1: हेलो डॉक्टर,
2: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
1: हेलो डॉक्टर,
3: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
4: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे तो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा, मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
3: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
4: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
0: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

रहना है तेरे दिल में। अभी आपने इस फिल्म का गीत सुना, आवाज रूप कुमार राठौर की थी, गीतकार थे समीर, संगीत था हरीश जयराज का।

0: अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में अभी आपने सुना फिल्म हासिल का गीत। गीतकार थे इसरार अंसारी, संगीत था जतिन ललित का।
1: हेलो मन भावन, आप सुनेंगे नए अंदाज में मेरे यानी निमिषा के साथ। प्रत्येक रविवार दिन के 11 बजे आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से 100.8 मेगाहर्ट्ज पर। आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक बुधवार दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच। हमारा टेलीफोन नंबर है 2960445 और कोड है 0657। तो आप भी जुड़ जाइए हेलो मन भावन कार्यक्रम से।

0: कुमार सानू और आशा भोसले की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म बलमा का गीत। शब्द रचना समीर के थे, धुन बनाई थी नदीम श्रवण ने।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: तेजाब फिल्म का गीत अभी आपने सुना अमित कुमार और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में। गीतकार थे जावेद अख्तर, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।
1: नमस्कार जमशेदपुर। नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
0: ज्ञान विज्ञान
2: इतिहास के पन्नों से,
0: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
1: मौसम का मिजाज,
0: अपने शहर की खबरें,
2: बातों मुलाकातों के साथ
1: सुरीला मनोरंजन
0: और भी बहुत कुछ।
1: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में दिन के 11:05 से 12 बजे तक
2: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
3: नमस्कार जमशेदपुर।

0: खामोशी। अभी आपने इस फिल्म का गीत सुना, कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू की आवाजों में। शब्द रचना मजरू के थे, धुन बनाई थी जतिन ललित ने। और इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यही समाप्त होता है।
1: हेलो डॉक्टर,
2: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
1: हेलो डॉक्टर,
2: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।

श्रोताओं, अब से कुछ ही पलों में यानी 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या। रात्रि 9 बजे न्यूज एट 9, 9:15 पर स्पॉटलाइट कार्यक्रम चर्चा का विषय है। आप सुनेंगे 9:30 पर। ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे उड़िया कार्यक्रम। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा। इसके तहत आज आप सुनेंगे गोकुलोत्सव महाराष्ट्र का ख्याल गायन। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 MHz पर। 8:45 हुए हैं। समाचार संध्या आप सुनेंगे कुछ ही पलों में।

0: समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होने का आश्वासन दिया। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने श्री मोदी को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। और ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में PV सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में NDA की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने NDA सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि 2014 में आशा की जो किरण जगी थी, वे आज नए आत्मविश्वास की किरण में बदल गई है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: NDA सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश लगातार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
1: NDA के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है। और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ, उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक स्थिरता के महत्व को समझ लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए।
1: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। NDA के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
0: श्री मोदी ने कहा कि NDA राष्ट्र की सेवा और विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए नए जोश के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा।
1: महिलाओं को आरक्षण, 3 तलाक के खिलाफ कानून, CAA का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन, NDA सरकार राष्ट्र हित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही। और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का यह सिलसिला और भी तेज होगा।
0: इससे पहले राष्ट्रीय

0: मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और केंद्रीय मंत्रियों ने इस उपलब्धि पर श्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन ने कहा है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वह आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ काम जारी रखने की इच्छा व्यक्त की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्षों से आर्थिक और विकासात्मक प्रगति का मार्गदर्शन किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे और त्रिनिदाद तथा टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने ग्लोबल साउथ के लिए श्री मोदी के प्रयासों की सराहना की। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में कई प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को भी मंजूरी दे दी। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के बारे में एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
4: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी। अब थोड़ा रिसर्च करो, जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
3: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इनमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए दूसरे चरण की ऋण गारंटी योजना की वैधता को इस वर्ष 31 अगस्त तक या 20,000 करोड़ रुपए की गारंटी जारी होने तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब तक कुल 770 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से ऋण गारंटी सहायता प्रदान करना है। भारत में वर्ष 2014-15 से 2025-26 के बीच 843 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है, जो इस अवधि से पिछले 12 वर्ष की तुलना में 169% अधिक है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अनुसार वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत में 2025-26 में 94 अरब डॉलर से अधिक का ऐतिहासिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत विश्व की सबसे महत्वपूर्ण सफलताओं में से एक है। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से लगभग 42 लाख परिवारों को लाभ हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भारत में तेज वर्षा का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ बारिश होने की संभावना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपी की चियो पिनचियान को मात दी। उधर कार्डिफ में महिला T20 विश्व कप के वार्म अप मैच में इंग्लैंड ने भारत को 5 रन से हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने प्रधानमंत्री को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening.

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक कार्यकाल, प्रभावशाली नेतृत्व और परिवर्तनकारी नीतियों से आकार लेते नए भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और केजी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: सदियों पुराना इतिहास और उस इतिहास के पन्नों पर करवट लेता एक आधुनिक महाशक्ति का संकल्प। साल 2014 से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसने देश को सिर्फ नीतियां नहीं दी बल्कि एक नया आत्मविश्वास दिया। आज का भारत थमने वाला भारत नहीं है। गांव से लेकर वैश्विक मंच तक, खेतों से लेकर अंतरिक्ष तक, सीमाओं की सुरक्षा से लेकर नारी सशक्तिकरण तक, भारत ने बदलाव की एक ऐसी कहानी लिखी जिसे दुनिया ने भी गौर से देखा और महसूस किया। आज का भारत केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं है बल्कि तेजी से उभरती हुई एक वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, G20 की सफल अध्यक्षता, रक्षा उत्पादन में नई उपलब्धियां, ऑपरेशन सिंदूर जैसे निर्णायक कदम, डिजिटल इंडिया की क्रांति, किसानों और गरीबों के जीवन में बदलाव लाने वाली योजनाएं, इन सब ने एक नए भारत की तस्वीर गढ़ी है। ये है बदलता हुआ भारत, ये है निखरता हुआ भारत। साल 2014 से लेकर अब तक विकास के इस महायज्ञ में भारत ने हर क्षेत्र में जो लंबी छलांग लगाई है, आज हम उसका विश्लेषण करेंगे। और इस बेहद महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ दो बेहद प्रतिष्ठित और वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर और देश के जाने माने मीडिया विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर केजी सुरेश। आप दोनों का आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार।
3: नमस्कार।
1: सबसे पहले शेखर जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। अगर चर्चा की शुरुआत हम विदेश नीति से करें, एक ऐसा विषय जहां भारत ने पिछले एक दशक में बहुत प्रगति की है, भारत की विदेश नीति में एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिला है पिछले एक दशकों में। आज का भारत संकट के समय मूक दर्शक नहीं रहता बल्कि यूक्रेन संकट से लेकर पश्चिम एशिया के तनाव तक अपना स्वतंत्र रुख रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की इस स्वतंत्र और मुखर विदेश नीति को कैसे देखते हैं?
3: बिल्कुल आनंद जी, ये पिछले 12 साल में भारत की जो लीडरशिप रही है, नेतृत्व कहा जाए, बड़े बड़े क्राइसिस में भारत की आवाज, भारत की अर्थशेप, भारत की कूटनीति, ये बहुत बदलाव आया है। वो रशिया यूक्रेन युद्ध हो या अभी जो चल रही है ईरान के युद्ध हो, जहां भारत की आवाज, भारत की कोशिश किसी तरह विश्व शांति लाने की बड़ी पैगाम लगी, इसीलिए हो रहा है कि आज की जो भारत है, ये भारत जो विश्व भर में एक प्रकार से देखा जाता है कि ये देश जो लोक कल्याण की बात करती है, केवल भारतीय लोगों की कल्याण नहीं है, विश्व कल्याण और विश्व शांति की हमेशा कोशिश रहती है। कई जगह पर हमने देखा है कि भारत की जो विचार, भारत की जो दृष्टिकोण, ये सारे वर्ल्ड के जितने लीडर्स हैं बहुत गंभीरता से सुनते हैं। वो आपके G7 के एक्सटेंडेड समिट हो, G23 की समिट हो, या जहां पे भी भारत UN जनरल असेंबली की प्रधानमंत्री की भाषण हो, या कोई बायलेटरल समिट हो जहां दोनों देशों के बीच में नेताओं की परस्पर जो बातचीत हो, हर जगह पर भारत की बात सुनने के लिए वर्ल्ड के जो प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट भारत आए, और हमारे प्रधानमंत्री जब भी बाहर जाते हैं, और भारत की जो आर्थिक चेंज जो हो रहा है, एक प्रकार से सबके सामने एक एग्जाम्पल बन गया है। उदाहरण के लिए जिस तरह हमारी डिजिटल मिशन रहा है, डिजिटल पेमेंट की जो बात, ये G23 में सब नेताओं ने इसको एक मॉडल के रूप में देखा कि विश्व भर में कैसे गरीबों के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए कैसे हम इसको अपना सकते हैं। इस तरह कई चीजें जो है आप देख रहे हैं कि जहाँ पे स्ट्रेटेजिक विषय हो, जहाँ पे आपको लग रहा है कि भारत का भूमिका कि विश्व शांति के लिए, उसके लिए जो भूमिका कर सकते हैं, वो सारे देश भारत की ओर देख रहे हैं। ये नहीं कह रहा हूँ कि पहले इस तरह की भारत की भूमिका नहीं रही हो, लेकिन आज जिस गंभीरता से भारत की भूमिका ली जाती है, ये पहले कभी नहीं हुआ। उसका ज्यादा कारण हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व।
1: सुरेश जी, एक और क्षेत्र पिछले, अगर हम कहें कि 12 वर्षों में बहुत बदलाव के सफर पर आगे बढ़ा, वो है रक्षा क्षेत्र। रक्षा क्षेत्र में भारत कभी दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों में गिना जाता था, लेकिन आज हम डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं। तेजस, ब्रह्मोस और INS विक्रांत जैसे गौरव हमारे पास हैं और दुनिया के कई देशों में हम निर्यात भी कर रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के सफर को आप कितनी बड़ी रणनीतिक जीत मानते हैं?
2: मैं तो समझता हूं कि अगर इस 12 वर्षों का माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल को देखेंगे तो मैं इसमें 2-3 महत्वपूर्ण आयाम इसमें देखता हूं। जो एक आजादी, एक खुली छूट, या आप इसको कहें कि एक ऑटोनॉमी, स्वायत्तता जो हमारे सेनाओं को दी गई है कि वो विकट परिस्थितियों में उनका हाथ खोल दिए गए हैं, ये चाहे आपने गालवान में देखा हो या पाकिस्तान की तरफ जो सरहदें हैं वहां हमने देखी हो कि हमने हमारे फौजियों के जो हाथ बांधकर हमने उन सरहदों पर खड़ा किया था उनके हाथ खोल दिए हैं, उनको ये अधिकार दिया है कि वो बीफिटिंग मैनर में जो है वो जवाब दे सकते हैं दुश्मन को, उनको कहीं भी हर एक जगह अनुमति लेने के चक्कर में कई दिनों तक आप जो है लोग इंतजार में रहते हैं और तब जाके निर्णय लिया जाता था। आज उनको ये हमारे आत्मरक्षा में कदम उठाने का उनको स्वायत्तता दी गई है, पहली बात। दूसरा, पूरा स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो उसमें सीडीएस जैसे इंस्टीट्यूशन, वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का इंस्टीट्यूशन बना दिया गया है ताकि एक बेहतर समन्वय तीनों सेनाओं में, थल सेना, वायु सेना, नौसेना, इन सब में जो है एक कोऑर्डिनेशन बेहतर हो, इसके लिए जो है इंटीग्रेटेड जो कमांड की पूरी एक व्यवस्था की गई है, ये मैं समझता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि आज जिस तरीके से बहुत सारे हमने यहाँ, आपने भी उसका जिक्र किया कि विदेशों में आज कई देश, मैं भी अभी एक हाल ही में एक विदेशी मुल्क का देख रहा था कि वो किस तरीके से उनके परेड में आकाश के मिसाइल्स चल रहे हैं, पृथ्वी चल रहा है, पिनाका चल रहा है, जो पहले हम देखते थे कि हम जो बेचते थे वो सिर्फ एम्यूनिशन, गोलियां बेचते थे, और उसके जगह आज हम अपने एयरक्राफ्ट बेच रहे हैं। खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे हथियारों की डिमांड पूरे विश्व में बढ़ गई है, और यही नहीं, हमने महिलाओं को जो महत्व दिया है उनके भागीदारी, बराबर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दोनों अफसर जो वायुसेना और थल सेना के जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे पूरे विश्व के सामने, भारत का प्रवक्ता बनकर खड़े हुए थे, वो हमारे महिला सेना के अधिकारी थे। तो महिलाओं को जो महत्व दिया गया है 26 जनवरी में, तो हमने सिर्फ महिलाओं को ही जो है सारा कमांड का नेतृत्व प्रदान करते हुए देखा, ये बहुत जरूरी था। तो मैं समझता हूं कि आमूलचूल परिवर्तन। आप अंत में ये भी मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत डिफेंस के महत्वपूर्ण विषयों को पर्यावरण के नाम पर रोक दिया गया था सरहदों में, खासकर जो उत्तर पूर्व में चीन के साथ जो सरहद है, इन सब इलाकों में जो बहुत ही दूर दराज के क्षेत्र थे वहां हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने काफी कम कर दिया था कि पर्यावरण के दृष्टि से, पर्यावरण को बचाते हुए भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर को सरहद तक अपने सप्लाई लाइन्स खुली रहे। अभी परसों ही हमने देखा कि जो जिला का जो आखिरी पॉइंट था उसको भी खोल दिया है, अब वो विश्व का सबसे बड़ा टनल होगा और निश्चित ही वो ऑल वेदर टनल होगा, चाहे कितनी भी सर्दी हो, बर्फबारी हो, आप देखेंगे कि उस टनल से हमारी फौज की सप्लाई बॉर्डर लाइन तक जाएगी। तो किसी भी तरीके से फौज के साथ, हमारे सेना के साथ, उनके जो हथियार है उसके साथ कहीं कोई समझौता नहीं किया गया है। बहुत जगह बहुत सारा अनुसंधान हो रहा है, शोध हो रहा है, नए नए हथियार डेवलप किए जा रहे हैं, मेक इन इंडिया पर बहुत जोर दिया गया है, निजी क्षेत्र को बहुत आगे बढ़ावा दिया गया है। तो मैं एक पूरे दृष्टिकोण में एक परिवर्तन पिछले 12 साल में मैं देखता हूँ।
1: शिखर जी, अगर हम बात भारत के बदलाव की करें और बात हम नए भारत की करें तो इसमें सबसे अहम कड़ियों में से एक है अन्नदाता किसान। कृषि क्षेत्र में पारंपरिक तौर तरीकों को बदलकर, चाहे सॉइल हेल्थ कार्ड की बात करें, फसल बीमा योजना की बात करें, पीएम किसान सम्मान निधि की बात करें, या फिर जो ड्रोन तकनीक है, जो नमो ड्रोन दीदी जैसी योजनाएं हैं, उससे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिली है, कितना बदलता हुआ किसान को आप देखते हैं पिछले 12 वर्षों में, किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव को?
3: देखिए, जो केंद्र सरकार की जो ये रवैया रही है किसान को लेकर, कि कैसे धीरे धीरे करके अपने किसान को कैसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो कोशिश है उसी का एक अच्छा कह सकते हैं कि इनिशिएटिव जो रहा है, यानी सरकार की जो पॉलिसी, प्राइम मिनिस्टर की जो पॉलिसी रही है, बीज से लेकर मार्केट तक जो शुरू होती है, सीड मार्केट से लेकर, मतलब कैसे बीज से लेकर, तो उसके बाद किस तरह किसान को हाथ पकड़ के, उनके पैर में

0: खड़े होने के लिए जो कोशिश सरकार की तरफ से जो हेल्प, आपने किसान सम्मान निधि की बात की, किसान क्रेडिट कार्ड है, फिर दूसरी बात फर्टिलाइजर की जो आवश्यकता, और उसके साथ साथ नेचुरल फार्मिंग की भी बात हो रही है, और सबसे बड़ी बात है मार्केट एक्सेस, यानी नेट के जरिए मार्केट एक्सेस करना। अब जो शुरू अभी जो आत्मनिर्भर भारत के जो बड़े कार्यक्रम में आप देख रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेज के एक नेटवर्क बन रही है, उसके साथ साथ आपकी ग्रीन ट्रेन बनी है, यानी उनकी पैदावार को सीधा मार्केट पहुंचाने के लिए, वो कर्नाटक से दिल्ली हो या नासिक से कर्नाटक हो या उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक या पूर्व भारत से या पूर्व उत्तर पूर्व भारत से मुंबई तक, इस तरह की जो नेटवर्क बनी है केवल फार्मर की जो पैदावार को ले जाने की। और सबसे बड़ी बात जो इस बार प्रधानमंत्री बहुत जोर दे रहे हैं कि हाई वैल्यू क्रॉप, यानी जिसका मूल्य मार्केट में ज्यादा है, उसमें कई कई नए नए चीजों की बात हो रही है, साथ में दाल वगैरह का यानी पल्सेस का प्रोडक्शन किस तरह बढ़ाया जाए उसकी भी बड़ी कोशिश हो रही है, और MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सरकार की हमेशा यही रहे कि जो कॉस्ट है उसे 150% ज्यादा उसको मिनिमम सपोर्ट देने की, यानी किसान को मार्केट दर मिल जाए तो बहुत बढ़िया, अगर ना मिले उनके लिए एक सेफ्टी मैकेनिज्म MSP रही है। हर हम देख रहे हैं कि हर साल जैसे इनपुट की कॉस्ट बढ़ती जाती है, सरकार ने MSP को हमेशा रिवाइज करके बदला है। इस तरह की आप देखेंगे कि सॉइल कार्ड जिसकी बात आपने की, उसके साथ साथ जो नई टेक्निक है जिन्हें आपने ड्रोन की बात की, ये जो सरकार का एक कार्यक्रम रहा है महिलाओं की सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ड्रोन ऑपरेट करने की जो ट्रेनिंग देकर, ड्रोन दीदी जिस तरह की लाखों संख्या में आज ड्रोन दीदियां गांव में कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसमें पेस्टिसाइड की स्प्रे करना हो या जितनी फसल हुई है उसकी एस्टिमेट करना हो, ये सारे में साइंस साथ में लेकर चल रहा है, उसमें अप टू डेट वेदर इन्फॉर्मेशन भी दिया जा रहा है, यानी जो सूचना जो किसान को मिलनी चाहिए कि बारिश की अवस्था क्या है, बारिश होगी कि नहीं होगी, सही समय पर पानी सिंचाई कैसे मिलेगी, मतलब ऐसा कोई एरिया नहीं है जहां प्रधानमंत्री के डायरेक्शन के अनुसार सरकार पॉलिसी ऐसी ट्यून की गई है कि किसान की कहीं भी जो चुनौती आती है वो नेचुरल हो या मार्केट कारण हो उसको सुलझाने में सरकार लगी रही है। और आज हम देख सकते हैं कितने स्कीम्स जो आए हैं, जितने स्कीम्स है वो सारे स्कीम्स में यही कोशिश है कि जो हमारे किसान भाई जो पहले से अभी उनकी जो तकलीफ है एक एक करके दूर करने के लिए बहुत कोशिश की गई है।
1: सुरेश जी, पिछले 12 वर्षों में एक और फॉर्मूला काफी जोर पकड़ता नजर आया, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का मंत्र। प्रधानमंत्री अक्सर मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते हैं। डिजिटल इंडिया से लेकर बुनियादी ढांचे के विकास तक इस नीति ने देश के आम नागरिकों के जीवन और ईज ऑफ लिविंग को जिस तरीके से प्रभावित किया है, आपको लगता है वो एक नए भारत की नई कहानी की तरह है?
2: बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये विदेश से एक राष्ट्राध्यक्ष आए थे और वो साधारण जो बाजार जिसको कहते हैं वहां उतरकर मुंबई में उन्होंने तस्वीरें खींची और उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से कि कम आय वाले लोगों में भी, छोटे से दुकान में भी, यानी कि रेड़ी पटरी जो लगी हुई थी उसमें भी UPI पेमेंट हो रहा है। आज देश के गांव-गांव तक UPI पेमेंट पहुंच चुका है और आप देखेंगे कि आज विदेश में कई मुल्क आज इसमें इस विषय में रुचि ले रहे हैं कि वे अपने देश में इस तरीके से कैसे कर सकते हैं। अन्य मुल्कों में पेमेंट ट्रांसफर का बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता है और भारत में UPI और भीम ऐप वगैरह की अपेक्षा से आज अगर देखेंगे तो जीवन कितना सरल हो गया है। खुले पैसे के लिए, पेमेंट के लिए किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। स्टार्टअप्स को इतना महत्व दिया गया है जो आप सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। जीवन इतना आसान, हम कभी हमारे यहाँ से भारतीय मूल के लोग विदेशों में जाके बसते थे तो एक कारण बताते थे कि भाई ईज ऑफ लिविंग है यहाँ। भारत में आज गांव-गांव में वही स्थिति है। सब कुछ जो है ई गवर्नेंस को इतना प्रमोट किया गया है, हर राज्य में आज हर तरह के स्टार्टअप्स घर तक आज खाना से लेकर क्या नहीं पहुंचता है, आज DBT के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे एक एक व्यक्ति के और शायद विश्व का सबसे बड़ा 80 करोड़ के करीब लोगों को जो है आज हम सब्सिडाइज्ड रेशन दे रहे हैं। आज जो है सोशल सिक्योरिटी नाम का चीज इस देश में कभी नहीं हुआ करती थी। आम व्यक्ति अगर बीमार पड़ गया तो वो सिर्फ सरकारी अस्पतालों के पर टोटली निर्भर होता था, न जहां उसे सहूलियत मिलती थी कुछ नहीं। आज आयुष्मान भारत जैसे योजनाएं पूरे देश में लगभग लागू हो गई है। बंगाल में कई वर्षों से नहीं था, अभी बंगाल

0: में सत्ता परिवर्तन के बाद वहां भी लागू हो गई है, जिसके चलते हर व्यक्ति जो है आयुष्मान कार्ड जिसके भी पास है वो किसी भी निजी अस्पताल में जाके अपने कठिन से कठिन समस्याओं का निदान पा सकता है और सीधे सरकार जो है उन अस्पतालों को जो है उसको पेमेंट करते हैं। इससे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। और सबसे बड़ी बात, जो सड़कों का जाल इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैलाया गया उसके चलते आज दूर दराज के क्षेत्रों में कभी सोच नहीं सकते थे, मैं अभी होके आया हूँ, मैं देहरादून कभी 5-6 घंटे लगते थे और आज के तारीख में मैं मात्र 2.5 घंटे में देहरादून और 1.5 घंटे में हरिद्वार होके आया हूँ। आप जरा सोचिए कि ये क्या कभी संभव माना जा सकता था कि आज, लेकिन इतना बड़ा जाल गांव-गांव में जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, एक्सप्रेसवे कि आज पूरा देश और इसका लाभ किसको मिल रहा है, आज निवेश जो है गांव-गांव तक पहुंच रहा है, उद्योगपति जो है आज दूर दराज के क्षेत्रों में भी अपने उद्योग लगा रहे हैं, किसान अपना जो सामग्री है उसको शहरों तक वो जल्दी से जल्दी पहुंचा सकता है, यातायात की सुविधाएं इतनी बेहतर हो गई है। आप देखेंगे कि रेलवे हो, वंदे भारत जैसे कई नए ट्रेन शुरू हुए हैं जिसके चलते बहुत सारे यातायात की सुविधाएं, प्रधानमंत्री ने हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक का जो योजना बनाई, उड़ान स्कीम, छोटे छोटे शहरों को आज जोड़ दिया गया हवाई नेटवर्क के माध्यम से। तो मैं समझता हूँ कि जीवन काफी सरल हो गया है 12 साल में।
1: जी, कुछ और विषय शेखर जी हैं जिस पर हम चर्चा आपसे करना चाहेंगे और एक विषय जो है वैश्विक व्यापार और आर्थिक कूटनीति का है। भारत ने हाल के वर्षों में यूएई, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय यूनियन के साथ जो है वो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किया है। पहले भारत को वैश्विक व्यापार समझौतों में थोड़ा झिझकने वाला देश माना जाता था। आर्थिक कूटनीति में आए इस आक्रामक और रणनीतिक बदलाव को आप नए भारत के नजरिए से कितना अहम मानते हैं?
2: प्रधानमंत्री जब उन्होंने एक आह्वान दिया कि वोकल फॉर ग्लोबल और पहले लोकल फॉर वोकल, यानी पहले लोकल जो हमारी जो एंटरप्रेन्योर्स की जो कोशिश है उसको पहले देश भर के जो मार्केट में पहुंचाना, उसके बाद विश्व भर जो मार्केट है उस पर पहुंचाना है। आपने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात की, अब हर कंट्री के साथ जिस तरह बातचीत हुई, लंबी बातचीत हुई है, यूरोपियन यूनियन हो, यूके हो, इन सब से बात करके कि परस्पर कैसे, देखिए कोई भी ट्रेड अग्रीमेंट की जिक्र होती है तब आपकी ताकत पर होती है, आपके पास क्या है जो विश्व को दे सकते, जिस देश यहाँ सामान बेचना चाहता है उनमें ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है, ऐसी क्या चीज है जो हमारे लिए जरूरत है जो यहाँ पर ना हो। तो ये इस हिसाब से आप देखेंगे जितनी ट्रेड अग्रीमेंट, कम से कम 20 से ज्यादा कंट्री से हमारी अग्रीमेंट हुई है और लगातार हमारी बातचीत जारी है अमेरिका के साथ भी। आपने देखा पिछले एक साल से जिस तरह भारत और अमेरिका बीच में जो बातचीत रही है, पर पहले टैरिफ को लेकर जो एक समस्या खड़ी हुई, उसके बाद लगातार बातचीत, और दूसरी बात ऊर्जा को लेकर भी, देखिये ऊर्जा भी बड़ी चीज है। आज भारत ऊर्जा जितनी इंपोर्ट भी करती है उतनी स्पेशलाइज प्रोडक्ट बाहर बेचती भी है, मतलब यानी कच्चा तेल भारत आता है और स्पेशलाइज प्रोडक्ट्स पेट्रोलियम के बनकर बाहर जा रहा है, क्योंकि हमारी जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है ये कैपेसिटी आज के तारीख में अमेरिका से भी ज्यादा है, इसलिए अब भारतीय कंपनी जाके अमेरिका में रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। ये सारे चीजों देखने से जो ट्रेड की आपने बात किया, ये ट्रेड भारत की जो अंतर शक्ति जो है जिसको कहते हैं इनरेंट स्ट्रेंथ, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी बिजनेस की जो कैपेसिटी, ये सारे सबके लिए एक प्रकार से मौका आ रहा है और इस मौके को आगे बढ़ाने के सरकार की जो कूटनीति रही है उसकी डिप्लोमेसी में आप देखेंगे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रहा है कि किस तरह इकोनॉमिक कैसी हमारी बेनिफिट हो, देश को मिले, और हमारे जो जितने इंडस्ट्रीज है वो आपको कॉटेज इंडस्ट्री से लेकर हैंडलूम तक, टेक्सटाइल से लेकर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स तक, उसको कैसे आगे मार्केट पहुंचाने की काम सरकार लगातार करी आ रही है। उनके लिए कभी भी सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दे सकते में उसमें कोई सीमा ही नहीं है, आपको बैंक लोन हो, बैंक गारंटी हो, ये सारे चीजें देकर आज देखे यूनिकॉर्न की बात हो रही है, बड़े बड़े कंपनी स्टार्टअप बन रहे, ये सारे स्टार्टअप की तो मार्केट तो विश्व मार्केट है। तो इस तरह आप देखेंगे पिछले 12 साल में जो एक कॉन्फिडेंस आई है हमारे इंडस्ट्री में, हमारे बिजनेस कम्युनिटी में कि हम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं और करेंगे भी, ये दोनों मंत्र को लेकर जो आगे चल रहे हमारी इंडस्ट्री, उसका कारण यही है कि आज की जो सरकार, जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार, वो बिल्कुल वो जो नारा है मोदी है तो मुमकिन है, ये वाकई आप देखेंगे ये प्रैक्टिकल हो गया है, ये केवल एक स्लोगन नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल स्लोगन नहीं है, ये वाकई ये सरकार किस तरह

0: देश भी देख रहे हैं। आज की तारीख में आप देखिए, कई बार बाहर होके आइए, आप यूरोप चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, जब वापस आते हैं आपको लग रहा है, जैसे दिल्ली पहुंचेंगे एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तभी आपको लगता है कि जो पहले एक प्रकार से एक इंप्रेशन था, भाई बड़े बड़े देश है, इतने डेवलप्ड है, भारत को कब कब वहां पहुंचेंगे, ये वाले चीजें दूर होती जा रही है आनंद जी। जब भी आप लगता है कि भाई हम कहीं पीछे नहीं है, अब आगे बढ़ रहे हैं। आज के तारीख में 20 से ज्यादा शहरों में हमारी मेट्रो ट्रेन चल रही है, उसकी टेक्नोलॉजी आप देख लीजिए, ये टेक्नोलॉजी जॉइंटली डेवलप्ड हुआ है और ये लेटेस्ट भी है। आज दिल्ली में अगर मेट्रो नेटवर्क इतना बड़ा है, जो मेट्रो डिब्बे जो चल रहे हैं उसमें अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रहा है। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आज लंदन में अवेलेबल नहीं है, पेरिस में नहीं है, न्यूयॉर्क में नहीं है, हमारी यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चलती है। और लगातार जो कोशिश है कि भाई हम जब राष्ट्र निर्माण की बात करेंगे, राष्ट्र स्वाभिमान की बात करेंगे, हम पूरे के पूरे कोशिश, पूरे के पूरे ताकत लगा के, एकजुट होके, सरकार और नागरिक और देश प्रथम, ये मन में रख के काम करने की जो एक माहौल बनी है, उसका कारण है ये 12 साल की प्रधानमंत्री की नेतृत्व।
1: सुरेश जी, एक मीडिया और सांस्कृतिक विश्लेषक के तौर पर आपने देखा होगा कि पिछले दशक में भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर का भरपूर इस्तेमाल किया है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो, वैश्विक मंचों पर आयुर्वेद को बढ़ावा देना हो, या फिर ग्लोबल साउथ की आवाज बनना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास भी और विरासत भी, इस नैरेटिव ने वैश्विक पटल पर भारतीयों की सांस्कृतिक पहचान को किस तरह पुनर्भाषित किया है?
2: देखिए, सबसे पहले तो आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने जब अपना कार्यकाल शुरू हुआ, ज्यादातर देशों में जब वो जाते थे तो वो भगवद गीता की कॉपी देते थे। कुछ भारतीय एक पहचान, भारतीय अस्मिता, भारत की छवि, ये आज इतना भारत सर्वप्रथम हो गया है, भारतीय सर्वप्रथम हो गए हैं। प्रधानमंत्री जिस भी देश में जाते हैं, जो भारतीय मूल के जो लोग हैं, प्रवासी भारतीय हैं, उनसे वो मिलते हैं, उनके उस देश में जो भूमिका है उसके बारे में बात करते हैं। आप देखेंगे कि पूरे विश्व भर में भारतीयों को भी संगठित करके भारत के लिए वे क्या कर सकते हैं, इस दिशा में प्रयास किया है। भारत की संस्कृति को, भारत के संगीत को, भारत के सभ्यता को वैश्विक पटल पर किस तरीके से लाया जाए, आपने जिक्र किया। अभी अगले हफ्ते ही, जल्दी ही हमारे बीच में जून 21 आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और शायद ही विश्व में ऐसा कोई प्रस्ताव है जो सबसे ज्यादा राष्ट्र के लोगों ने एक साथ समर्थन किया और उसको जो है स्वीकार किया। आज पूरे विश्व में जो है योग दिवस मनाया जाता है। भारत जो है अपने पर्यटन के क्षेत्र में, अभी आप देखिए कि चीता जैसे जानवर जो दुर्लभ क्या हमारे देश से बिल्कुल गायब हो गए थे, जिनकी समाप्ति हो गई थी, उनको दोबारा कूनो मध्य प्रदेश में इसको हमने रीइंट्रोड्यूस किया। हमने देश के उस विरासत को, देश के ऐसे कई ग्रंथ, कई मूर्तियां जो पूरे विश्व के म्यूजियम्स में पड़े हुए थे, उनको वापिस ससम्मान, चाहे वो भगवान बुद्ध से संबंधित हो, चाहे देवी देवताओं से संबंधित हो, मंदिरों के, वो उन सब को लेकर आए। और क्या इससे बेहतर काम हो सकता है कि एक बहुत एक विषय जिसको लेकर पूरे समाज में एक तरह से एक कटुता थी, उस विषय को का एक समाधान कोर्ट के जरिए निकालकर उसका शीघ्राधिशीघ्र जो राम मंदिर का अयोध्या में जो निर्माण हुआ वो इसी कार्यकाल में हुआ, जिससे एक बहुत बड़ा लंबित मामला जो समाज और राष्ट्र को और वैश्विक स्तर पर हमारा जो है एक विषय बन चुका था, उसका समाधान, स्थायी समाधान हमने देखा। तो ये मैं समझता हूं कि जिससे भारत की विरासत आज पूरे विश्व में जो है इसको मनाया जा रहा है, पूरे भारत का जो है हम लोग आज भारतीयता पर जो गर्व करते हैं, आज डीकोलोनाइजेशन, औपनिवेशिकतावाद से हटकर आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो कॉलोनियल, जो हमारे यहाँ आप चाहे वो एक वॉर मेमोरियल क्यों ना हो, इंडिया गेट हम सब उसको बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन उसमें विश्व युद्ध के सेनानियों का नाम लगे हुए थे, लेकिन भारत के वो सेनानी जिन्होंने 1947 से लेकर और सब युद्धों में जिन्होंने अपना बलिदान, सर्वोच्च बलिदान दिया, उनके लिए एक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक वो हमने बनाया। इसी प्रकार हमने जो पुराने कॉलोनियल इस शहर को जो कि भी पहचान थी, वो ज्यादातर आक्रांताओं द्वारा जो दी गई, जो भवन थे या बिल्डिंग थे, उन्हीं पर हम लोग

0: जो है हमारे दिल्ली में हमारी अपनी विरासत क्या थी। तो इसलिए सेंट्रल विस्टा जैसे जहां नया संसद भवन बना, जहां नया सेवा तीर्थ प्रधानमंत्री का ये बना, और कितने सड़कों का जो हमारे गुलामी के प्रतीक थे उनका नाम बदल कर जो है हमको जो है हमने देखा कि राजपथ को जो है हमने उसको, चाहे वो प्रधानमंत्री का लोक कल्याण मार्ग हो या हमने जो है सेवा तीर्थ की स्थापना किया हो, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से भारत के अपने पहचान, अपना जो विरासत है
1: जी,
0: उसको जो है पुनः स्थापित करने का एक प्रयास किया गया। तो मैं समझता हूं कि आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी, क्योंकि मैं एक शिक्षाविद भी हूं और शिक्षा से जुड़ा रहा हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू हुई है उसके तहत भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से हम सबको अवगत कराने का प्रयास किया जा रहा है कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को गर्व रहे कि हर विषय को लेकर उसमें भारत का क्या योगदान रहा, जिसको भूला जा चुका था, जिसको ये बताया जा रहा था कि सारा ज्ञान पश्चिम से आया है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है।
1: आखिर में एक बहुत छोटा सवाल शेखर जी आपसे समझना चाहेंगे, जब भी हम स्वर्णिम अतीत की बात करते हैं तो वो मजबूत वर्तमान की तरफ आगे बढ़ता है, जब वर्तमान मजबूत होता है तो हम एक सुनहरे भविष्य की परिकल्पना करते हैं, और यहाँ परिकल्पना 2047 के विकसित भारत की है। इस नए भारत की मजबूत नींव पर, विकसित भारत की बुलंद इमारत को आप किस तरह देखते हैं? कार्यक्रम में समय कम है, बहुत संक्षेप में।
2: बिल्कुल, विकसित भाव ने सही कहा कि जो भी फैसले आज लिए जा रहे हैं, जो भी कार्यक्रम आज लागू किया जा रहा है, जो भी नए इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, वो केवल यही दृष्टि से कि आज की कदम कल की जो दिशा है, जहां मंजिल है वहां पहुंचने की बात है। और सारी चीजें जो बड़ी बात है, आनंद जी मैं मानता हूं प्रधानमंत्री की कोशिश हर पहलू पे एक ईमानदारी से जुड़ा हुआ है, एक सिंसियर एफर्ट है कि भारत कैसे आगे बढ़े, भारतीयों की जीवन कैसे और सरल हो जाए, और भारतीय भविष्य, हर नागरिक का भविष्य कैसे उज्जवल हो, इसकी कोशिश पर सरकार लगा हुआ है बिना एक दिन छुट्टी के।
1: जी, हर युग की अपनी एक पहचान होती है, कुछ युग परिवर्तन के साक्षी बनते हैं और कुछ परिवर्तन के निर्माता। पिछले एक दशक में भारत ने अनेक क्षेत्रों में नई उपलब्धियों के आयाम स्थापित किए हैं, वैश्विक कूटनीति से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा तक, डिजिटल क्रांति से लेकर बुनियादी ढांचे के विस्तार तक, आत्मनिर्भरता से लेकर विकसित भारत के संकल्प तक, देश ने एक नई ऊर्जा और एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए केजी सुरेश जी आपका और शेखर अय्यर आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक कार्यकाल, प्रभावशाली नेतृत्व और परिवर्तनकारी नीतियों से आकार लेते नए भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और केजी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है उड़िया कार्यक्रम।

0: मासिक उड़िया कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे जयराम दास पात्रा से स्वरचित कविताएं। लेकिन करते हैं शुरुआत रजो पर्व पर आधारित इस वार्ता से। वार्ताकार हैं मोनालिसा धर।
1: नमस्कार श्रोता बंधुगण, मु मोनालिसा धर आपण मानक पाखरे आज रज संक्रांतिर किछि अनुभूति प्रस्तुत करबाकु जाउछि। ओडियारे गोटे कथा अछि, बार मासरे तेर पर्व। ओडिशा माटीर बेळकाळ तुलनारे बहुत गुड़िए पर्व पालन करा जाए। एही सबु पर्व उत्कळीय मानंकु आनंद दिए, ता सहित आदर्शर सूचना मध्य देइथाय। एही सबु पर्व मानंकर मध्यरु रज पर्व टिके नियारा। बर्षकरे थरे रज आसे गाँ दाण्डरे, एवं रज मध्य आसे सहररे, आउ रज आसे बजाररे। एही रज आसिले कुआरेर मन चळचंचळ होइ उठे। रज आसे बर्षा भिजा माटीर सुगंधरे, पुणी रज आसे कुआरी मानंक पादर अळतारे। रज आसे नुआ पोषाकरे पानरे, आउ रज आसे सजबाजरे, एवं रज आसे पोड़पिठा आउ दोलीर कटमट शब्दरे। श्रोता बंधु, रज हेउची आनंदर ओ सिंगारर पर्व। धनी दरिद्र एही पर्व को पालन करंती। एही पर्व तीन दिन धरी चले। ग्रीष्म ऋतु सरी जाय थाए, वर्षा ऋतु आरंभरे रज पर्वटी पड़े। मिथुन संक्रांति को रज संक्रांति मध्य कुहा जाए। रज पर्व पालन पूर्वरु लोक माने प्रस्तुत होई थांती। घर द्वार लिपा पोछा करी परिष्कार परिच्छन्न करी थांती। रज पर्व पाई चाउल पनीपरिबा तेल मसला पाचिला आंब पणस बड़ी प्रस्तुति रखी थांती। दांत काठी भंगा गुआ मसला प्रभृति रखी थांती। रज तीन दिन कामधंदा सब बंद हुए। पिला माने रजरे दोली खेलिबा पाई दोली प्रस्तुत करी थांती। एही समय रे बहु जगारे जात्रा पाला दासकाठी आयोजन होइथाय। घरे घरे पिठा आंब पणस सपुरी हेला एही तीन दिनर खाद्य। एहा साई पड़िसारे मध्य बंटा जाए। श्रोता बंधुगण, आजिर व्यस्त जीवन रे रज केमिति पालन करा जाए खाली जानिले तो हबनी। आसंतु किछि कथा जेमिति रज काहेकि पालन करा जाए तहार किछि पौराणिक कथा विषय रे जानिबा। रज पर्व बा मिथुन संक्रांति तीन दिनर एक पर्व, जहार द्वितीय दिन मिथुनर सौरमास आरंभ हेबाकु सूचित कराइथाय। आउ एही दिनकु वर्षा ऋतु आरंभ होइथाय। रजर पौराणिक आधार एहा विश्वास करा जाय कि वसुधा मा जिए कि भगवान विष्णुंक पत्नी अटंती एही तीन दिन निजर मासिक धर्म पालन करंती। चतुर्थ दिनकु बसुमती गाधुआ बोली कुहा जाय थाय, जेउथिरे भूदेवींकु स्नान करा जाय। रज शब्दटी रजस्वाला शब्दरु आसी अछि, जाहार माने मासिक धर्म देई गति करथुबा महिला माने मध्य जुगरे एही पर्वटी गोटे कृषि भित्तिक छुट्टी रूपे विख्यात होइ जायथिला, जेउथिरे माता भूदेवींकु पूजा करा जाउथिला, जहांकु भगवान जगन्नाथंक पत्नी मना जाउथिला। श्रोता बंधुगण, आपण जानिछन्ति कि भगवान भूदेवींक रूपरे एक मूर्ति भगवान जगन्नाथंक पार्श्वरे देखिबाकु मिले एबे बि पुरीर जगन्नाथ मन्दिररे। रज पर्व जून मासरे मध्यभागरे पडिथाय। रजर पूर्व दिन सजबाज, रजर प्रथम दिनकु पहिली रज, द्वितीय दिनकु मिथुन संक्रांति एवं तृतीय दिनकु भूदाह कहन्ति, चतुर्थ दिनकु बसुमती स्नान कहिथान्ति। मौसुमीर शुभ आगमन माटी भिजिबार अयुत सपन गाँ दोली पोड़पिठा रजपान रजसज पाई कुमारी मन आनंद अनुभव करिथान्ति। रज कहिले दोली खेल कथा मनकु आसे। श्रोता बंधुगण, रजपान खाई दोली खेलिबार मजा ही अलगा। रजपान खाई घरे घरे रजर शुभेच्छा जणाइथान्ति। एहा छोड़ा लुडु पुची तास बहु चोरी खेल एमिति झियो माने सबु खेलंती। पुरुष माने मध्य कबाडी खेलर ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ରଜ ପର୍ବ ଏକ ସାମାଜିକ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣର ପର୍ବ ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଏହି ପର୍ବକୁ ମନ ଭରି ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ଆମ ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ ସରସ ଓ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ରଜ ପର୍ବର ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସହରରେ ରଜ ପର୍ବ ଗାଁ ଠାରୁ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ। ସହରର ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରଜ ପାର୍ଟି ହୁଏ।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय रात्रि के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इसमें आज सुनिए पंडित गोकुलोत्सव महाराज का ख्याल गायन। राग है पुड़िया घनश्री, विलंबित झूमर झुमरा ताल में।

अभी आप सुन रहे थे पंडित गोकुलोत्सव महाराज का ख्याल गायन। राग था पुरिया धनश्री। और इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 MHz पर। इस समय रात्रि के 11 बजे हैं। कुछ ही पलों में समाचार प्रसारित होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन ने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वे आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहे हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के वास्ते प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। श्री मोदी ने उनके सोशल मीडिया संदेश का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत इसराइल संबंध आने वाले वर्षों में और मजबूत होगा। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली यानी GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए का अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली NCR क्षेत्र में अगले 3 दिनों में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की आशंका है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को हराया जबकि तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियू पिंचियान को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. Prime Minister Narendra Modi today assured that the aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized that the National Democratic Alliance, that is NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi this evening. He said, the people of the country entrusted the NDA government with their trust after the betrayal of the Congress. He said, for the first time, the people of the country have seen that when a government is run with a right intention, development also takes place at a rapid pace. He said, the lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government reflects that its policies are correct and its direction is right.
1: Bharat ke logon ne pehli baar ye dekha hai ki jab sahi niyat se sarkar chalti hai to tez gati se vikas bhi hota hai. NDA sarkar ke in 12 varshon mein 25 crore se zyada logon ka garibi se bahar nikalna ye dikhata hai ki hamari neetiyan sahi hain, hamari disha sahi hai. Ye safalta aaj desh ke har us vyakti ko